0: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का नागपुर केंद्र FM 100.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओ, सुबह के 6 बजे चाहते हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा। ये आयोजन वस्त्र, फैशन, स्थिरता, प्रौद्योगिकी, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये और घायलों को 50,000 रूपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। इस दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत हो गई और 6 लापता हैं। ये नाव 2 जुलाई को शंकरपुर समुद्री बंदरगाह से 15 मछुआरों के साथ रवाना हुई थी।

5 जुलाई से नाव से संपर्क टूट गया था। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शव स्वदेश लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की सरकारें इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेंगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू क्वॉक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मुज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान

0: पर्यटकों और चार स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फूकवोक द्वीप पर में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से हॉर्मूज जल डमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हॉर्मूज जल डमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर अपनी ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। यदि कोई उत्तर मेल नहीं खाता है तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन कर अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान कर चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है कि दिन में एक बार खुद से बात जरूर करें, वरना आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से आप मिलने से चूक जाएंगे। यानी हमें समय निकालकर अपने मन की बात को सुनना चाहिए, अपने मन से बातें करना चाहिए। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का में ये भक्ति रचनाएं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:35 पर सुनेगा श्री रामचरित मानस गान भाग 249। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम सुनिएगा श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग। कलाकार हैं गायिका विदुषी आरती अंकलीकर। भाग दूसरा। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:00 से 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी। 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर सुनिए आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार रोशन पर। सुबह 10:00 पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा। इसके अंतर्गत सुनेगा प्रोस्टेट और अन्य बीमारियां। इस विषय पर डॉक्टर उमेश ओझा से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग प्रस्तुत करता है सुबैर खान। ग्यारह बजे से रंग तरंग और 12:05 पर यादों की महफिल। 1:00 सुरीला सफर। 2:00 त्रिवेणी।

2:30 पर सदाबहार नगमे, 3 बजे सखी सहेली, इसके अंतर्गत सुनेगा डिजिटल होते रिश्ते मुहावरों की दुनिया, मुंह में राम बगल में छुरी, सखी विशेष के अंतर्गत उपासना टाकू, फिनटेक कंपनी मोबीक्विक की सह संस्थापक और मुख्य वित्तीय अधिकारी से बातचीत और हल्की फुल्की बातें, सेहतमंद भोजन सुनिएगा। प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे पिटारा में सेल्यूलॉइड के सितारे, अभिनेता विपुल देश पांडे से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग सुनिएगा। प्रस्तुतकर्ता सुबैर खान। शाम 5:30 पर तारानी नए पुराने। शाम 6:35 पर संध्या रंजन। 6:45 शाम सुनेगा संगीत सरिता कार्यक्रम। आपको फिर से बता दें, श्रृंखला सायंकालीन संध्या प्रकाश राग, कलाकार गायिका विदुषी आरती अंगलीकर का भाग दूसरा, प्रस्तुति रूपाली रूपक्खी। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए प्रहसन, बाज आए ऐसे फैशन से, लेखन नाजनीन का, निर्देशन है जयदेव शर्मा कमल का। ₹8:15 पर चित्रलोक। 9 बजे कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार, रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार रोशन पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। 10 बजे छाएगी, 10:30 पर ढलती जाए रात, और रात 11 बजे रंग तरंग। आप सुन रहे थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण झरोखा के अंतर्गत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान भाग 249।

पंचवटी पहुंचकर श्री राम सीता तथा लक्ष्मण ने पर्णकुटी छवाई और एक बार पुनः सुख शांति पूर्वक निवास करने लगे। लक्ष्मण जी ने अग्रज को अपना स्वामी जानकर उनसे ज्ञान, वैराग्य और उस माया का वृत्तांत पूछा जिसके वश में होकर प्रभु भक्तों पर दया करते हैं।

0: संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आजकल आप सुन रहे हैं सायंकालीन संधि प्रकाश रागों की चर्चा। आज इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी में सुनिए राग पूर्वी। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं प्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर।
1: संगीत सरिता के श्रोताओं को आरती अंकलीकर का नमस्कार। पिछली बार हमने देखा था पूर्या दनाश्री, बहुत ही खूबसूरत राग है। आज उन्हीं स्वरों में हम शुद्ध मध्यम को जोड़ देंगे तो बन जाएगा राग पूर्वी का सप्तक। देखिए कितनी खूबसूरती से बनाया है, स्वर वही है पूर्या धनाश्री के, उसमें हमने सिर्फ शुद्ध मध्यम को जोड़ देने से कितनी खूबसूरत कलाकृति बन रही है। इसमें रिखब और धैवत कोमल हैं, दोनों मध्यम हैं, तीव्र और शुद्ध।

जैसा कि हम जानते हैं ये संधि प्रकाश राग है। इसमें अन्य सभी जो स्वर हैं शुद्ध हैं, वर्जित स्वर कोई भी नहीं। इसकी जाति संपूर्ण है, वादी स्वर गंधार और संवादी निखात। गायन का समय वही जो संधि प्रकाश रागों का होता है। राग पूर्याधनाश्री से इसको इस तरह से हम अलग रख सकते हैं कि पूर्याधनाश्री का जो सप्तक है वो नीरेगा जाता है और राग पूर्वी का जाता है नीसारेगा।

राग पूर्वी का जो चलन है वो पूर्या धनाश्री से किस तरह अलग है ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हालांकि इसमें शुद्ध मध्यम के होने के कारण इसकी एक अलग छवि बनती जरूर है, लेकिन इसका जो चलन जाता है

श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, किसी फिल्मी गीत की रचना एक राग को आधार बनाकर की जाती है, मगर उसमें अन्य रागों की छाया भी अक्सर दिखती है। आइए सुने ये गीत जो हमने फिल्म कोतवाल साहब से चुना है। इस गीत में संगीतकार रविंद्र जैन ने राग पूर्वी को आधार बनाकर किस खूबसूरती से अन्य रागों का भी सम्मिश्रण किया है। श्रोताओं, आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, आवाज है आशा भोसले की। लीजिए गीत सुनिए।

0: सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में राग पूर्वी पर आधारित संगीतकार रविंद्र जैन की ये सुमधुर रचना। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही थी सुप्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूप

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा थोड़ी ही देर में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक वीको वजदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। शुरुआत कर रहे हैं छोटी छोटे बाबू फिल्म के इस गीत से।

गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। इस गीत को राजेंद्र कृष्ण ने लिखा था और इस गीत को संगीत से संवारा था मदन मोहन ने। और इस गीत के पहले जो गीत आपने सुना उसे हमने छोटे बाबू फिल्म से लिया था। लता मंगेशकर तलत महमूद की आवाज़ें थीं, इंदिवर की रचना थी और मदन मोहन का संगीत था। अभी आपने गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म का गीत सुना। आज हम याद कर रहे हैं संगीतकार मदन मोहन को। उनकी भावपूर्ण और मधुर धुनें हमारे दिलों को सदैव हमेशा आकर्षित करती हैं। ये कर्णप्रिय संगीत हमारी अमूल्य धरोहर है। सुनते हैं।

0: भाई भाई फिल्म का गीत अभी आपने सुना, गीता दत्त की आवाज थी। राजेंद्र कृष्ण ने इस गीत को लिखा था, मदन मोहन ने धुन बनाई थी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: विविध भारती से, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में अब एक बहुत छोटा सा विराम लेते हैं, इसके बाद फिर से हाजिर होंगे।

बैंक मैनेजर फिल्म का गीत आपने सुना। मन्ना डे के स्वर में अनवर फरूखाबादी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती से। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग मुहब्बत करते
0: हैं। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

0: संगीतकार रोशन के सजाए संगीत से ये गीत अभी आपने सुना। इसे लिखा था प्रेम धवन ने और हीरा मोती फिल्म का ये गीत था। आवाजें सुमन कल्याणपुर और सुधा मल्होत्रा की थी। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार रोशन को। संगीतकार रोशन अपनी मधुर शास्त्रीयता, सरलता से परिपूर्ण धुनों से संगीत जगत को उन्होंने अमूल्य विरासत दी है। एक और मीठा सा गीत आइए सुनते हैं।
1: मैं झोला, आप भोला, अरे तू क्या है? मैं

मैंने जीना सीख लिया। इस फिल्म का गीत अभी आप मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में सुन रहे थे। रचना आनंद बख्शी थी। इस गीत को संगीतकार रोशन ने संगीत से सजाया था। और इस गाने के पहले जो गाना आपने सुना था रंगीन रातें फिल्म से था। शमशाद बेगम और गीता बाली की आवाजें थी। केदार शर्मा के बोल थे और रोशन का संगीत था। इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी सुनने वालों को नमस्कार। सविता सिंह का शुरुआत इस गीत से।

कहाँ हो तुम, जरा आवाज दो, हम याद करते हैं। मल्हार फिल्म का ये बहुत ही मीठा सा गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। कैफी आजमी ने बोल लिखे थे और रोशन ने इस गीत को संगीत से संवारा था। नमन है संगीतकार रोशन को, जिनके गीतों की ताजगी, भाव और मिठास दिल को छू लेते हैं। अगला गाना बरसात की रात फिल्म से, लीजिए सुनिए।

जिंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में बरसात की रात फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। गीतकार साहिल लुधियानवी थे और संगीतकार थे रोशन। लीजिए अब सुनिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में चित्रलेखा फिल्म का गीत। शब्दकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार हैं रोशन।

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था चित्रलेखा, साहिल लुधियानवी के बोल थे और रोशन का संगीत था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
6: सुनिए।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम में अब समय है एक बहुत छोटे से अंतराल का।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ोगी?
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

संगीतकार मदन मोहन के संगीत से सजा ये हीर रांझा फिल्म का गीत अभी आपने सुना। कैफी आजमी ने बोल लिखे थे, आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, लीजिए सुनिए इस फिल्म का ये गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, राजेंद्र कृष्ण की ये रचना सुनिए मदन मोहन के बनाए संगीत पर।

आकाश फिल्म का गीत मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था, मदन मोहन ने तर्ज बनाई थी। इस गीत के पहले जो गीत आपने सुना था उसे हमने हीर राजा फिल्म से लिया था। आवाजें थी मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की, कैफी आजमी के बोल थे मदन मोहन की तर्ज। अब आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत। संगीत से सजाया है इसे मदन मोहन ने। अब आपको ये गीत सुनवा रहे हैं नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे फिल्म का।

0: ये आकाशवाणी है विविध भारती का नागपुर केंद्र एफएम बैंड 100.6 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों कुछ ही पलों में यानी ठीक 8 बजे आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी समाचार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से चुनाव अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हुरमुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
5: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
4: डॉक्टर जयशंकर ने सदस्य देशों से भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करने की अपील की। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया, यूक्रेन और सूडान सहित वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की। उन्होंने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच मजबूत सहयोग को भी स्वीकार किया। वियतनाम के फू कुओक द्वीप

0: पास स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए हैं। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु की सरकार इन शवों को उनके संबंधित राज्यों में उनके आवास पर पहुंचाने में समन्वय करेगी। 32 भारतीय पर्यटकों और 4 स्थानीय क्रू के सदस्यों वाली स्पीड बोट शुक्रवार को वियतनाम में फू कुओक द्वीप में पलट गई। दुर्घटना में बचे 16 पर्यटक भी भारत लौट चुके हैं। एक पर्यटक वियतनाम के अस्पताल में भर्ती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने पश्चिम बंगाल में नाव दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ने वाली ट्रॉलर दुर्घटना में 9 मछुआरों की मौत पर शोक व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने मृतक मछुआरों के परिजन को 2,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव

0: देने की अभी घोषणा की है। एफबी महाकाली नामक ट्रॉलर 2 जुलाई को पूर्व मेदिनीपुर के दीघा संकटपुर मत्स्य बंदरगाह से 15 मछुआरों को लेकर रवाना हुई थी। 5 जुलाई के बाद ट्रॉलर से संपर्क टूट गया था। ट्रॉलर के केबिन से 9 शव बरामद किया गया है, जबकि 6 मछुआरों अभी भी लापता है, उनकी तलाश जारी है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से संदीपन दास गुप्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इस दौरान वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत को निशाना बनाया गया। इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में की गई। उधर ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाया। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों के बारे में नई चिंता पैदा हो गई है। ओमान के पास हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हुर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमेरिका ने आज से हुर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों की नाकेबंदी फिर शुरू करने की घोषणा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए अमेरिका 20% शुल्क लगाएगा। अन्य देशों के व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी। उधर ईरान ने अमरीकी फैसले को खारिज करते हुए कहा है कि वो किसी भी स्थिति में हुर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में अमरीकी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। अमरीकी घोषणा के बाद वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 9.6% बढ़कर $83.30 प्रति बैरल पर पहुंच गई। देश की सबसे बड़ी वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स आज से नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में शुरू हो रही है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन यानी खेत, धागा, कारखाना, फैशन और विदेश से प्रेरित होकर भारत टेक्स वस्त्र मूल्य श्रृंखला में व्यापार, निवेश, नवाचार, नीतिगत संवाद और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रमुख मंच के रूप में विकसित हुआ है। 17 जुलाई तक चलने वाला ये आयोजन देश के वस्त्र उद्योग के संपूर्ण विस्तार को एकीकृत वैश्विक मंच पर लाएगा।
2: 4 दिवसीय इस आयोजन में वस्त्र, फैशन, सतत विकास, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम में निर्माता, निर्यातक, वैश्विक खरीदार, निवेशक, नीति निर्माता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल, शिल्पकार, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी प्रदाता एक मंच पर एकत्र होंगे। इस आयोजन में हजारों प्रदर्शक, 7,000 से अधिक खरीदार तथा 20 से अधिक देशों अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पुर्तगाल, स्पेन, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया सहित अन्य देशों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी शामिल होंगे। सरकार की मजबूत भागीदारी को दर्शाते हुए इस वर्ष 8 राज्य इस आयोजन के साझेदार हैं, जबकि 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रदर्शक के रूप में भाग ले रहे हैं। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में बुधवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सौश्रुतम आयोजित की जाएगी। इस संबंध में आज एक दिन की कार्यशाला होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सौश्रुतम का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव और दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस संगोष्ठी का उद्देश्य आयुर्वेद और आधुनिक शैल्य चिकित्सा के बीच सहयोग बढ़ाना तथा शोध, नवाचार और शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

0: है। ये कार्यक्रम शल्य चिकित्सा के जनक आचार्य सुश्रुत की स्मृति में आयोजित किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, सिक्किम, कर्नाटक और उड़ीसा में तूफान की आशंका है। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 6 जिले शिवसागर, लखीमपुर, दरांग, सोनितपुर, धेमाजी और जोरहाट बाढ़ से प्रभावित हैं। गुवाहाटी और शिवसागर के कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के कारण वाहनों का आवागमन बाधित हो गया है। बिहार के कटिहार जिले के मूसापुर गांव से पुलिस ने पाकिस्तान स्थित आतंकी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। कटिहार के उपमंडलीय पुलिस अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ये युवक राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त था।
1: जांच के क्रम में यह बात ज्ञात हुआ कि ये पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर के संपर्क में था एवं भारत में कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। इस आरोप में इन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई में आईबी, एटीएस एवं एसटीएफ की टीम का भी सहयोग प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में अनुसंधान एवं अन्य सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा की ओएमआर शीट जारी कर दी है। उम्मीदवार एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in पर अपने आवेदन नंबर से लॉगिन कर ओएमआर शीट और उत्तर देख सकते हैं। उम्मीदवार अपने उत्तरों की तुलना स्कैन किए गए उत्तरों से कर सकते हैं। किसी उत्तर का मिलान न हो तो उम्मीदवार प्रश्न का चयन करके अपने चुने हुए विकल्प पर निशान लगा सकते हैं और ₹200 के शुल्क का भुगतान करके चुनौती दे सकते हैं। चुनौती सही पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ओएमआर चुनौती सुविधा 15 जुलाई तक उपलब्ध रहेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐतिहासिक जीत पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई दी है। भारतीय टीम ने पहली बार लॉर्ड्स के मैदान पर टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रचा है। भारत ने इंग्लैंड पर 270 रन से शानदार जीत दर्ज की। श्री मांडविया ने कहा कि खिलाड़ियों ने लॉर्ड्स में यादगार उपलब्धि हासिल कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं इंग्लैंड के लिलिशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इससे पहले अमेरिका ने शूटआउट में भारत को 3-2 से हराया था। उड़ीसा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन होंगे। स्नान पूर्णिमा के बाद पखवाड़े भर चलने वाले अंसार काल के बाद पवित्र त्रिमूर्ति का पहला सार्वजनिक दर्शन होगा। मान्यता है कि स्नान पूर्णिमा के बाद अपनी धार्मिक बीमारी से ठीक होने के बाद पवित्र त्रिमूर्ति देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के समक्ष अपने नए युवा रूप में प्रकट होंगे। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारियों और पुलिस ने सुचारू और व्यवस्थित दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की है। नव यौवन दर्शन के साथ रथ यात्रा के पूर्व सभी अनुष्ठानों का समापन होगा और विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का शुभारंभ होगा। रथ यात्रा गुरुवार को पवित्र त्रिमूर्ति की श्री गुंडिचा मंदिर तक की औपचारिक यात्रा के साथ मनाई जाएगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद फरत। लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला टीम के मैच जीतने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों में छाया हुआ है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, भारतीय बेटियों ने लॉर्ड्स में लहराया तिरंगा, विदेश में सबसे बड़ी जीत। वहीं जनसत्ता ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को सुर्खी बनाया है। पत्र लिखता है, केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस, एसआईटी से स्थिति रिपोर्ट मांगी। अमेरिका ईरान जंग तेज, रूस भी कूदा, अमर उजाला की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रंप ने ईरान की फिर की नाकेबंदी, हॉर्मूज से गुजरने पर 20% टोल मांगा। जगन्नाथ यात्रा में पहली बार देवी सुभद्रा का रथ खींचेंगी महिलाएं, हिंदुस्तान ने बदलाव शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है। अब नहीं सजेगा दिल्ली पुस्तक मेला, 31 साल पुरानी परंपरा हुई खत्म, दैनिक जागरण ने ये खबर प्रमुखता से प्रकाशित की है। अमरीका अंतरिक्ष में दर्पण लगाएगा, रात में भी सूरज चमकेगा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, जब चाहे जहां चाहे मिलेगी रोशनी, इस साल लॉन्च हो सकते हैं 2 सैटेलाइट। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने

0: पर श्रमिकों की सुरक्षा पर एक लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल। पत्र लिखता है, आज भी कई जगहों पर नाले या सेप्टिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है। आखिर कब तक इन मौतों को नजरअंदाज किया जा सकता है? कश्मीर के पहाड़ों पर दो दशकों में लगभग एक डिग्री बढ़ा तापमान हिमालय के नाजुक इकोसिस्टम पर क्लाइमेट चेंज के बढ़ते असर को दिखाती है ये स्टडी, वीर अर्जुन की सुर्खी है।
1: धन्यवाद सर फिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए आधिकारिक रूप से अपना अभियान शुरू किया। वियतनाम में स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर मुंबई लाए गए। पश्चिम बंगाल में नौ दुर्घटना के बाद 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हमले किए। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में तेज वर्षा का अलर्ट जारी किया। और भारत ने लॉर्ड्स में एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों, इस दुनिया में सभी को इंतजार होता है बारिश का। इंसानों से लेकर जानवरों तक, पेड़ पौधे और सूखी जमीन और जमीन के अंदर पनपने वाले जीव भी। बारिश के आते ही सभी को राहत मिलती है।

हालांकि खेत खलिहानों और गांवों में बरसात का मौसम खुशियां लेकर ही आता है, शहरों में रहने वाले कभी कभार लगातार होती बारिश से असुविधा महसूस करते हैं। इन मुश्किलों को अनदेखा करके पानी के महत्व को समझना जरूरी है। इसीलिए पानी बचाना जरूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है।

शहरों में रहने वाले लोग पानी का किफायती इस्तेमाल करके अपने आसपास के जल स्रोतों का स्तर बनाए रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।

ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अपने आसपास की ऊंची जमीन से या पहाड़ों से बहते पानी को छोटे छोटे बांध बनाकर रोक लें तो भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है और तब शहर हो या गांव, पानी की समस्या को लेकर किसी की आंख में पानी नहीं होगा।

राने राने कटिन घोंगडा घेऊन द्या की रामला भी जत्रा लाई।

0: के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सु

0: सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में बंडी और बबली फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे गुलजार और संगीतकार शंकर एहसान लॉय।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती

0: तनु वेड्स मनु फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे राजशेखर और संगीतकार कृष्णा। चित्रलोक कार्यक्रम में एक और ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे। सुनते हैं बाकी गीत।
1: नागपुर महानगर पालिका लेकर आई है प्रॉपर्टी टैक्स पर विशेष छूट। 31 जुलाई 2026 से पहले चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 का प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा करें और पाएं 15% तक की छूट। वहीं वसूली केंद्र पर ऑफलाइन भुगतान करने पर 10% तक की छूट का लाभ उठाएं। घर बैठे ऑनलाइन सुविधा का लाभ लें, समय, ईंधन और परेशानी बचाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए नागपुर महानगर पालिका की वेबसाइट पर विजिट करें। जनहित में जारी।
3: श्रोतेहो हेलो डॉक्टर, फोन इन कार्यक्रमाविषयी निवेदन ऐका। आज मंगळवार दिनांक 14 जुलै 2026 ला सकाळी ठीक 10 वाजता आकाशवाणी नागपूर केंद्र आणि विविध भारती नागपूरवरून एकाच वेळी प्रसारित होणाऱ्या हॅलो डॉक्टर या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमाचा आजचा विषय आहे थायरॉईड कॅन्सर। आपल्या प्रश्नांना उत्तरे देतील तज्ज्ञ डॉक्टर भास्कर सिंग। श्रोत्यांनी थेट प्रश्न विचारण्यासाठी आमचे फोन नंबर कृपया नोट करून घ्या, 6940067 आणि 2560101 आणि 2529266। तेव्हा श्रोते हो, ऐकायला विसरू नका। लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम हॅलो डॉक्टर आज दिनांक 14 जुलै 2026 रोजी सकाळी ठीक 10 वाजता आकाशवाणी नागपूर केंद्र आणि विविध भारतीवरून एकाच वेळी। निवेदन संपलं।
0: आवाज़ें हैं।

रब ने बना दी जोड़ी। इस फिल्म का गीत सुनिधि चौहान, लव जंजुआ की आवाजों में आप सुन रहे थे। बोल जयदीप साहनी ने लिखे थे, तर्ज सलीम सुलेमान ने बनाई थी। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती।

सोल्जर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें जसविंदर नरूला और सोनू निगम की थी, समीर के बोल थे, अनु मलिक का संगीत था। और इसी गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
2: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
4: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

संगीत का रोशन की धुनें वाकई बेमिसाल हैं। मेलोडी उनके संगीत की विशेषता है। भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत से प्रेरित उनकी धुनें बार बार हमें अपने माधुर्य से लुभाती हैं।

संगीत का रोशन नाम है भारतीय सिने संगीत के आकाश के एक रोशन सितारे का, जिनकी कशिश भरी धुनें हमें ठिठकने पर मजबूर कर देती हैं। रोशन साहब की शैली अपने समकालीन सभी संगीतकारों से जुदा थी।

उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सौंदर्य नजर आता है। संगीत में वाद्यों की भीड़ नहीं, बावजूद इसके धुनों में गजब का आकर्षण है, मिठास है।

संगीतकार रोशन का पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। उनका जन्म 14 जुलाई सन 1917 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में हुआ था। अब यह स्थान पाकिस्तान का हिस्सा है। छोटे उम्र में ही रोशन संगीत सीखने लगे थे। उसी दौरान वो लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत का अध्ययन करने लगे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की प्रेरणा से 1940 की शुरुआत में रोशन आकाशवाणी दिल्ली में इसराज वादक की हैसियत से काम करने लगे। उनके भीतर कहीं एक बेचैन संगीतकार भी करवटें ले रहा था, जिसे बाद में भारतीय सिनेमा का अभिन्न अंग बनना था।

0: दुकान में नया स्टॉक आना था पर पैसा अटका हुआ था, लेकिन मैं टेंशन फ्री था क्योंकि मेरे पास गोल्ड था और लायन लेंडर का सपोर्ट भी। लायन लेंडर ने मेरा बिजनेस बचा लिया।
1: लायन लेंडर एक RBI मान्यता प्राप्त NBFC है और आपका भरोसेमंद फाइनेंशियल सपोर्ट है, जहां आप अपने गोल्ड के अगेंस्ट तुरंत लोन ले सकते हैं। फास्ट अप्रूवल, इजी प्रोसेस, इंस्टेंट हेल्प। गोल्ड लोन मतलब लायन लेंडर। For contact, call 709-03-07-307. Visit us, Lakatganj, Nagpur.
2: Catch the rain. बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

मुकेश और रोशन एक दूसरे के पूर्व परिचित थे और परिचय का ये सिलसिला बहुत पुराना तब का था जब दोनों दिल्ली में रहा करते थे। 1950 के दशक के शुरुआती दौर में रोशन के संगीत निर्देशन में मुकेश और तलत महमूद ने कई गीत गाए।

सन 60 का दशक रोशन के लिए बहुत भाग्यशाली रहा और इस दौर में रोशन ने कई सफल फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन किया। इस दौर की मशहूर फिल्म बरसात की रात की ये कव्वाली उनके संगीत से सजी कालजयी फिल्मी रचना है।

संगीतकार रोशन के सुरीले संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं बरसात की रात, आरती, अनोखी रात, दिल ही तो है, बहु बेगम, चित्रलेखा, ममता और ताजमहल।

16 नवंबर सन 1967 को 50 बरस की आयु में अपने सुरीले गीतों की विरासत सौंपकर रोशन इस लौकिक जगत को छोड़कर चले गए। फिल्म जगत और सुरीले संगीत के कद्रदान हमेशा ऋणी रहेंगे महान संगीतकार रोशन के।

0: आप सुन रहे थे महान संगीतकार रोशन पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आकाशवाणी नागपूर केंद्र आणि विविध भारती नागपूरवरून प्रसारित करीत आहोत हॅलो डॉक्टर हा लाईव्ह फोन इन कार्यक्रम. श्रोतेहो नमस्कार. HCG कॅन्सर हॉस्पिटल ऑटोमोटिव्ह चौक नागपूर प्रस्तुत हॅलो डॉक्टर या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात आपलं मनपूर्वक स्वागत. आज या लाईव्ह फोन इन कार्यक्रमात आपण बातचीत करीत आहोत थायरॉईड कॅन्सर याबद्दल आणि आपल्यासोबत आहेत तज्ज्ञ डॉक्टर भास्कर सिंग. आपले प्रश्न आपल्या शंका आपण डॉक्टर भास्कर सिंग यांना विचारू शकता आणि कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकता. त्यासाठी आमचे फोन नंबर्स आहेत 6940067 256 0101 आणि 2529266. आपण जर नागपूरच्या बाहेरून कॉल करणार असाल किंवा आपल्या मोबाईलवरनं कॉल करणार असाल तर या फोन नंबर्सच्या आधी 0712-0712 हा नागपूरचा STD कोड नक्की डायल करा. श्रोताओ आप सुन रहे हैं HCG कैंसर हॉस्पिटल ऑटोमोटिव स्क्वेयर नागपुर हेलो डॉक्टर ये लाइव फोन इन प्रोग्राम. आज हम इस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे थायराइड कैंसर के बारे में. हमारे साथ है तज्ञ डॉक्टर भास्कर सिंह. आप अपने सवाल अपनी शंकाएं डॉक्टर भास्कर सिंह से पूछिए और हमारे इस प्रोग्राम में सहभागी होइए. हमारा प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर और हमारे नंबर्स हैं 6940067 256 0101 और 2529266. नागपुर का STD कोड 0712 ज़रूर डायल कीजिए अगर आप नागपुर के बाहर से कॉल करना चाहते हैं या अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं. डॉक्टर भास्कर सिंह नमस्कार.
1: नमस्कार.
0: आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में. आज हम थायराइड कैंसर के बारे में बातचीत करेंगे. लेकिन डॉक्टर हम पहले तो जानना चाहेंगे कि थायराइड होता क्या है, क्योंकि जिस तरह से BP या शुगर आजकल कॉमनली देखा जाता है उसी तरह से थायराइड भी बहुत कॉमनली पाया जाता है, उसकी दवाइयाँ भी ली जाती हैं. तो ये थायराइड क्या है, कहाँ पर होता है, इसके फंक्शंस क्या क्या क्या कार्य इसके होते हैं, ये हम पहले जानना चाहेंगे.
1: जी नमस्कार. तो थायराइड जो है एक एंडोक्राइन ग्रंथि होती है जो गले के मध्य में स्थित होती है, जो आपका एडम्स एप्पल बोलते हैं उसके जस्ट नीचे इसका स्थान होता है. और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बॉडी में. पहली बात तो ये है कि अपने ये मेटाबॉलिज्म जो अपना होता है शरीर में, उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन है, तो उस मेटाबॉलिज्म को ये इफेक्ट करती है. दूसरी बात आपके जो माइंड का है, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन है, उसमें भी बहुत इफेक्टिव रहती है. हार्ट का फंक्शन है उसमें भी इफेक्ट करती है ये. बाकी आपका स्किन फंक्शन है, मूड चेंजेस हैं, रिप्रोडक्शन है, इस फंक्शन इनमें भी इसका काफी योगदान रहता है.
0: अच्छा, मतलब शरीर के कई सारी अंगों में थायराइड ग्रंथि जो है वो, और कई सारे जो कार्यक्रम होते हैं शरीर में, कई सारी चीजें होती है उनमें थायराइड का कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंक्शन होता है.
1: जी, क्योंकि क्या है ना कि ये बेसिकली वही कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन को मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है.
0: जी,
1: तो
0: जी.
1: इसका हर चीजों में कुछ ना कुछ इफेक्ट रहेगा ही.
0: जी बिल्कुल. तो जब हम सामान्यतः कहते हैं कि थायराइड बढ़ गया है या थायराइड की बीमारी है और उसके लिए जो दवाइयां खाई जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मतलब किस तरह से पता चलता है कि थायराइड की बीमारी है और उसके क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं?
1: तो थायराइड बेसिकली यदि अपन बीमारी की बात करें तो उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म होगा जिसमें थायराइड हार्मोन कम मिलेगा, और दूसरी कंडीशन होगी हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें थायराइड हार्मोन की मात्रा अधिक मिलेगी. दोनों में सिम्टम जो होंगे अलग अलग रहेंगे. जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म है, जैसे मान लीजिए कि आपका जो थायराइड लेवल कम है तो उसमें जो
0: एक श्रोता फोन पर जुड़ रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं. हेलो
2: हेलो, गुड मॉर्निंग डॉक्टर.
0: नमस्कार.
2: थायराइड अपने थ्रोट में सिचुएटेड है तो उसके वजह से अपने को स्पीच में बोलने में तकलीफ होती है क्या उसके वजह से?
1: नहीं, देखिए क्या होता है, थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड जो होता है वो अपने जो वॉइस जो नर्व होती है उसके जस्ट आगे लोकेटेड होता है, तो उसमें बोलने में दिक्कत नहीं होती है. लेकिन यदि इसमें कैंसर हुआ और यदि कैंसर की वजह से जो नर्व है

0: थायराइड के पीछे जो नर्व है यदि उसमें कैंसर पहुंच गया, उसमें दबाव उत्पन्न किया, तो फिर आपको बोलने में दिक्कतें महसूस होगी। अदरवाइज नॉर्मल थायराइड यदि रहेगा, यदि उसमें कैंसर नहीं है, नॉर्मल थायराइड है, तो उसमें फिर बोलने में दिक्कतें नहीं रहती जनरली।
1: जी बिल्कुल। एक और फोन लेते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो
1: हाँ नमस्कार।
2: हाँ मैम, मी मीनू बोलती है।
1: बोलिए।
2: आणि मॅम, मला डॉक्टरांना हा प्रश्न विचारायचा होता की थायरॉइडचा आपल्या पिरियड्सवर काही परिणाम होतो का, आपल्या पोटावर काही परिणाम होतो का? आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे थायरॉइड जे पत्तागोबी फुलगोबी वगैरे हे सगळं खाता येते का? आणि माझा तिसरा प्रश्न असा आहे की माझं जे थायरॉइड आहे ते 9.5 आहे। पहिले 100 होतं, मग मी घोडा सुरू केल्या, 9.5 आहे। तर काही घाबरण्याचं कारण आहे का?
0: तो पहला जो अपन प्रश्न है आपका, जो पीरियड्स की प्रॉब्लम्स बताए हैं, तो पीरियड्स में क्या होता है कि यदि पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब थायराइड हार्मोन कम है, तो उनको पीरियड्स ज्यादा आते हैं, मतलब मीनोरेजिया होता है ज्यादातर ऐसे कंडीशंस में। लेकिन यदि उसी

0: तो पहला जो अपन प्रश्न है आपका, जो पीरियड्स की प्रॉब्लम्स बताए हैं, तो पीरियड्स में क्या होता है कि यदि पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब थायराइड हार्मोन कम है, तो उनको पीरियड्स ज्यादा आते हैं, मतलब मिनोरेजिया होता है ज्यादातर ऐसे कंडीशंस में। लेकिन यदि उसी उस अपोजिट कंडीशन में देखा जाए, तो यदि हाइपरथायरॉयडिज्म है, मतलब थायराइड हार्मोन की मात्रा ज्यादा है, तो उसमें पीरियड्स कम होंगे। तो ऑब्वियस बात है दोनों चीजों में डिफरेंसेस हैं और दोनों में पीरियड्स में चेंजेस आते हैं। जहां तक दूसरा प्रश्न है खाने की बात में, जो पत्ता गोभी वगैरह है, तो उसमें ये पाया गया है कि जो ये जो फल हैं, मतलब सब्जियां हैं, उससे क्या होता है कि थायराइड का जो आयोडीन का एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, यदि आप उसको रॉ खा रहे हैं, मतलब उसको पका के नहीं खा रहे हैं तो। लेकिन यदि आप उसको पका के खाते हैं, तो जो गोइटोजेनिक इफेक्ट होता है इन सब्जियों के अंदर, वो पकाने से उसका जो है वो कम हो जाता है, तो फिर आप ले सकते हैं। लेकिन यदि आप उसमें कच्चा लेंगे, जैसे ब्रोकोली है या पत्ता गोभी है या फूल गोभी वगैरह है, तो उससे आपकी जो थायराइड हार्मोन है वो कम बनेगा, क्योंकि आपका अब्सॉर्प्शन कम होगा यदि आप कच्चा लेंगे तो। पकाने से उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। दवाइयों का जहां तक रोल है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो दवाई स्टार्ट करते हैं, जो भी डॉक्टर्स रहते हैं, वो एक बेसिक लेवल पे अपन जो आपका टीसीएस लेवल है, टी3 टी4 लेवल से, उस हिसाब से एक दवाई स्टार्ट करते हैं और एक रेंज में, फिर उसको 4 से 6 हफ्ते बाद फिर असेसमेंट करते हैं क्या उस दवाई से आपका जो थायराइड हार्मोन का लेवल है वो नॉर्मल हुआ या नहीं। उस हिसाब से फिर हम दवाई को ऊपर नीचे बढ़ाना है या घटाना है, उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो 4 से 6 हफ्ते का गैप हम देते हैं यदि एक दवाई शुरू कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम उसको मॉडिफाई करते हैं ट्रीटमेंट में।
1: बिल्कुल। एक और फोन ले लेते हैं। हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ नमस्कार।
2: हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार।
2: मैं हंसराज जुंगे बोलतो नागपूर वरून। माझा प्रश्न असा आहे की म्हणजे थायरॉइड कॅन्सर जर झाला शरीरामध्ये कशामुळे होतो आणि याचे लक्षण काय आहेत आणि याच्या शरीरावर काय इफेक्ट होऊ शकतो?
0: जो थायराइड कैंसर होता है उसमें पहली तो प्राथमिकता देखा जाए तो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है। 3:1 का रेशो आता है, क्योंकि उसमें फीमेल्स में पाया गया था कि उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, उसके वजह से थायराइड कैंसर का रिस्क बढ़ता है। दूसरा, यदि हम एज फैक्टर की बात करें, तो ये 20 से लेकर 50-60 साल तक होता है। अच्छी बात यह है कि यदि यंग एज में कैंसर हो रहा है, तो उसका प्रोग्नोसिस, जो उसका ठीक होने की संभावना है, वो ज्यादा अच्छी रहती है कम्पेयर टू ओल्ड एजेस में। दूसरी बात, जो हम थायराइड हार्मोन को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि एक डिफरेंशियल थायराइड कैंसर है या अनडिफरेंशिएटेड है, तो जैसे पैपिलरी वैरायटी है या फोलिकुलर वैरायटी है, उनका ट्रीटमेंट ऑप्शन अच्छा रहता है, रिस्पॉन्स रेट अच्छा है। ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो मतलब ठीक होने के चांसेस जो है वो 98% रहते हैं। बाकी उसी तरह से अनडिफरेंशियल थायराइड कैंसर है, जैसे मेडुलरी कैंसर है या एनाप्लास्टिक वैरायटी जो कैंसर की, उनमें प्रोग्नोसिस पुअर होती है और वो काफी ओल्ड एज में होते हैं, 50-60 की एज में होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द एज और डिपेंडिंग अपॉन द कैंसर के किस टाइप का है, हाँ। तो प्रोग्नोसिस उस पे डिपेंड करती है।
1: जी बिल्कुल। एक और फोन ले लेते हैं। हेलो।
3: हेलो मैडम। हेलो सर।
0: हेलो
1: बोलिए। नमस्कार
3: मैडम। माझा प्रश्न आहे सरांना कि वय
1: हेलो हेलो शायद फोन कट चुका है। हम फिर से चाहेंगे कि श्रोता फिर से कॉल करेंगे तब बात करते हैं। हम बातचीत कर रहे थे कि फीमेल्स में, महिलाओं में थायराइड कैंसर ज़्यादा पाया जाता है, और क्योंकि हम आ ही गए हैं इस पड़ाव पर कि थायराइड कैंसर की कौन कौन सी टाइप्स होते हैं, ये हमने बताया, तो क्या सभी टाइप्स के लिए, या दो टाइप्स जो आपने बताए हैं, सभी के लिए जो लक्षण होते हैं वो एक से होते हैं या अलग अलग होते हैं, क्या लक्षण देखे जाते हैं?
0: तो मुख्यतः क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास जब आते हैं, तो उनको एक समस्या रहती है, गले में कोई गठान है, और मेनली जो गठान है वो आप जब निगलते हैं तो वो ऊपर नीचे हिलती है।
1: अच्छा।
0: तो सिम्टम्स ये हैं कि पहले तो आप गले में कोई गठान है जो कि पेनलेस है, जो दर्द रहित है और हार्ड फील हो रही है, और कोई सिम्टम्स इनिशियली प्रोड्यूस नहीं करती, कोई पहला सिम्टम कुछ नहीं होता है, छोटी गठान रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो गठान बढ़ती है, फिर सिम्टम आना शुरू होते हैं, जैसे अभी बताए थे, तो वो आवाज में चेंजेस आना, या खाने में दिक्कतें होना, या फिर सांस लेने में दिक्कतें होना, या गले में और कहीं गठाने होना। तो ऐसे लक्षण यदि होते हैं, तो हम लोग उसको कंसिडर करते हैं कि ये थायराइड कैंसर हो सकता है। जैसे बताया मैंने, फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है, लेकिन कॉमन जरूर फीमेल में होता है, लेकिन यदि मेल में होगा तो रिस्क ज्यादा रहेगी।
1: अच्छा, इसके बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे। पहले एक फोन ले लेते हैं। हेलो।
3: नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते, बोलिए।
3: माझा हा प्रश्न आहे, म्हणजे त्याचं वय आहे 47-48 च्या रेंज मध्ये आहे, आणि युट्रस आणि ओरी दोन्ही काढलाय, तिला ऑलरेडी थायरॉइड आहे, तिचं वजन पण जास्त आहे, ती योगा करते, एक्सरसाइज करते, घरचे सगळे काम करते, तरी पण तिचं वजन कमी नाही होत, तर असं का बरं?
0: देखिए, थायरॉइड जो है वो सिर्फ वजन का एक

0: ये है कि यदि मैंने आपको भी बताया था कि हाइपरथायरॉयडिज्म में वजन बढ़ता कम होता है और हाइपो में बढ़ता है
1: जी।
0: तो यदि आपका थायराइड हार्मोन आपने दवाइयों से यदि आपने कंट्रोल कर रखा है, एक नॉर्मल रेंज में आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट है
1: जी।
0: तो यदि उसके वजह से भी यदि वजन उसके बावजूद भी वजन बढ़ रहा है तो उसके अदर कारण हो सकते हैं। केवल थायराइड की वजह से वजन बढ़ना ये एक लेवल तक रहता है, लेकिन यदि नॉर्मल आपका वैल्यूज हैं तो आपको अदर कारण तलाशने चाहिए कि आपका वजन क्यों बढ़ रहा है, खाने पीने से या कुछ और दिक्कतों से बढ़ रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा।
1: थायराइड रेंज की जब हम बात करते हैं, जैसे शुगर या बीपी का एक रेंज हम सभी को पता है, तो थायराइड की क्या नॉर्मल रेंज होती है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये नॉर्मल रेंज में हमें अपने थायराइड को रखना है?
0: देखिए, उसमें थायराइड में हम जब टेस्ट करवाते हैं उसमें मेन तीन टेस्ट होते हैं, T3, T4 और TSH। तो जो हम इसमें तीनों में से जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है उसमें TSH लेवल हम लोग देखते हैं। TSH लेवल यदि कम है तो इसका मतलब है कि थायराइड हार्मोन बॉडी में ज्यादा है, इसका अपोजिट रिलेशन रहता है। TSH लेवल यदि बढ़ गया है तो थायराइड हार्मोन कम है। तो जो नॉर्मल TSH अपन मानते हैं वो 3 to 5 के रेंज मानते हैं। तो इसके ऊपर यदि थायराइड TSH बढ़ा है तो मतलब बॉडी में थायराइड हार्मोन कमी है, तो फिर हमें गोली चालू करनी पड़ती है थायराइड हार्मोन के लिए। यदि इससे कम जा रहा है, बहुत कम जा रहा है, तो फिर हमें ऐसी दवाई चालू करनी पड़ती है जो थायराइड हार्मोन को ब्लॉक करे।
1: अच्छा,
0: तो उस हिसाब से, उस रेंज के हिसाब से अपन डिसाइड करते
1: हैं। जी बिल्कुल। एक और फोन लेते हैं। हेलो
2: हेलो डॉक्टर, मी मनीषा बोलत आहे नागपूरवरून। मला विचारायचं होतं की थायरॉइड मुळे बारीक पण होतं आणि लठ्ठ पण होतं का, मग ते थायरॉइडचे प्रकार आहेत का बारीक होण्याचा वगैरे, हा प्रश्न होता।
1: हमने अभी जो बात की कि थायराइड की वजह से वजन पे जो फर्क पड़ता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, तो ये किन कंडीशंस में होता है?
0: नहीं देखिए, वही मैंने बताया ना कि आपका यदि थायराइड हार्मोन यदि आपने जो ले रहे हैं, यदि आपका थायराइड हार्मोन कम है तो वजन बढ़ेगा, थायराइड हार्मोन ज्यादा है तो वजन कम होगा। तो यदि आपका नॉर्मल थायराइड रेंज में है, जैसे मैंने आपको TSH और T3 और T4 लेवल यदि आपका नॉर्मल रेंज में है और यदि वजन आपका घट रहा है या बढ़ रहा है तो उसके अदर कारण हो सकते हैं। थायराइड यदि है, यदि कम है तो फिर आपको बढ़ेगा, तो उसको यदि आप नॉर्मली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाते हैं और यदि वो असेसमेंट करके फिर आपको बता सकता है कि एक्चुअल उसका रीजन क्या है।
1: जी, एक और श्रोता है फोन पे। हेलो।
3: हेलो,
1: नमस्कार।
3: नमस्कार, मी सुहास बोलतो नागपूरहून।
1: बोला।
3: माझ्या मिसेसला 10 वर्ष झालं थायराइड आहे, माझी ट्रान्सफर सिल्वासाला झाली होती दमणकडे, तिकडे ना हार्ड वॉटर आहे त्यामुळे थायरॉइड झालं का हा पहिला प्रश्न आहे, आणि दुसरं आहे की तिला थायरॉक्स गोळ्या सुरू आहे 125 mg, तर काय केल्याने गोळ्याचा डोस कमी होऊ शकेल?
0: देखिए, एक चीज है कि जो थायराइड जो मोस्टली पाया जाता है वो आयोडीन जो डेफिशिएंट डाइट होती है, मतलब जिसमें आयोडीन कमी होती है वहां पे ज्यादा होता है। अब चूंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह जो हैं वो संस्था ऐसी हैं कि जो आजकल जो आप नमक यूज कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी आयोडीन रहता है, तो नॉर्मल जो आयोडीन रेंज है 150 माइक्रोग्राम्स के राउंड देते हैं जो एडल्ट्स में अपन यूज करते हैं, प्रेगनेंसी वगैरह में बढ़ जाता है। लेकिन यदि आप ये मान चलें कि वो दवाइयां यदि आप कम हो सकती हैं या ज्यादा हो सकती हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन रेंज रहता है। और मैंने वही बताया कि यदि आपको फीचर्स आते हैं कि यदि आपको दवाइयां असर नहीं कर रही हैं या दवाइयों का डोज अपने को इंक्रीज करनी है तो 4-6 हफ्ते बाद एक बार टेस्ट करवा सकते हैं। और यदि आपका वो जो थायराइड फंक्शन टेस्ट है उसमें कुछ अबनॉर्मलिटीज आती हैं, जैसे वो कम होता है या ज्यादा होता है, उस हिसाब से डॉक्टर आपकी दवाइयां चेंज करता है। बंद होने का ऐसा मुश्किल है, क्योंकि यदि आपको एक बार थायराइड की दवाई चालू हो गई है तो मोस्टली ऐसे कंडीशंस में बंद नहीं होता है।
1: तो मतलब एक बार दवाई अगर आपने शुरू की है तो आपको वो लाइफ लॉन्ग लेनी है, और जिस तरह से डायबिटीज या बीपी ये गोलियों से कंट्रोल किया जाता है उसी तरह से ये चीजें कंट्रोल में रहेगी।
0: हाँ, ये जरूर रहता है। और थायराइड गोली का एक चीज ये रहती है कि थायराइड गोली आप हमेशा एम्प्टी स्टमक लें, सुबह लें, जब उठते हैं आप सुबह उठते हैं तभी आपको लेना है, और उसके साथ में 1 घंटे तक कुछ भी नहीं लेना है।
1: अच्छा,
0: क्या होता है कि हमने बहुत से पेशेंट्स देखे हैं कि जो दवाई ले लेते हैं और उसके साथ में आयरन की कैल्शियम की गोलियां साथ में ले लेते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि आप दवाइयां साथ में यदि 2-3 दवाइयां साथ मिला के लेते हैं तो जो थायराइड का जो एब्जॉर्प्शन है, गोलियों का एब्जॉर्प्शन जो है वो घट जाता है, और पेशेंट को लगता है कि यार हम दवाई ले रहे हैं फिर भी थायराइड कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो यही चीज है कि आप हमेशा उसको खाली पेट लें और कम से कम 1 घंटे तक कुछ ना खाएं पिए।
1: बिल्कुल। एक और श्रोता है। हेलो।
4: हेलो,
1: नमस्कार।
4: नमस्कार मैम, नागपुर से बोल रहे हैं
1: जी।
4: मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि 45 एज में मेनोपॉजल कंडीशंस में थायराइड की कोई हिस्ट्री नहीं है, पर आ सकता है वर्किंग वुमन अगर
1: हो सकता है क्या मेनोपॉजल वुमेन के लिए?
0: नहीं, तो देखिए थायराइड ग्लैंड्स जो है वो आपका फंक्शन करेगा, लाइफ लॉन्ग फंक्शन करेगा, उसमें ऐसा एज फैक्टर को कोई रिलेशन नहीं है। जो रिस्क ऑफ कैंसर है वो मैंने आपको बताया है कि वो रिस्क ऑफ कैंसर 20 साल से लेकर 50-60 साल तक हो सकता है, यदि कैंसर के बारे में हम बात करते हैं तो किसी भी एज ग्रुप में कैंसर हो सकता है, लेकिन थायराइड का और एज का ऐसा डायरेक्ट रिलेशन

0: नहीं कि इस एज ग्रुप होगा तो ही कैंसर होगा, इस एज ग्रुप में यदि कोई होता है तो हो सकता है कैंसर।
1: जी बिल्कुल। और हम एक बार फिर अपने विषय की तरफ चलते हैं, कैंसर, थायराइड का कैंसर जो है वो क्यों होता है, क्या जिन्हें थायराइड की बीमारी है उन्हें थायराइड कैंसर होने के चांसेस है, कितने हैं, और ये भी हम जानना चाहेंगे। उससे पहले हम श्रोताओं को बता दें कि आप सुन रहे हैं HCG कैंसर हॉस्पिटल ऑटोमोटिव स्क्वेयर नागपुर, हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम। आज हम बातचीत कर रहे हैं थायराइड कैंसर के बारे में। हमारे साथ है तज्ञ डॉक्टर भास्कर सिंह। आप अपने सवाल पूछने के लिए हमारे फ़ोन नंबर्स नोट कर लीजिए। फ़ोन नंबर्स हैं 6940067 256 0101 और 2529266 0712। ये नागपुर का STD कोड डायल कीजिए अगर आप नागपुर के बाहर से कॉल कर रहे हैं या अपने मोबाइल से कॉल कर रहे हैं। तो हम बातचीत कर रहे थे कि थायराइड कैंसर क्यों होता है, जिन्हें थायराइड की बीमारी है क्या उन्हें थायराइड कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं।
0: तो बेसिकली क्या है कि कारण बहुत सारे रहते हैं, कुछ कारण तो हमें पता नहीं है, लेकिन जो मुख्य कारण अपन देखते हैं तो उसमें एक रेडिएशन एक्सपोजर रहता है जिससे कारण पेपिलरी कैंसर थायराइड बढ़ता है। जो आयोडीन डेफिशिएंट डाइट लेते हैं जिसमें आयोडीन की मात्रा कम रहती है उन कंडीशंस में भी हमें फोलिकुलर कैंसर ऑफ थायराइड मिलता है। कुछ कंडीशन है जो जेनेटिक होती हैं, जैसे आपका रेट म्यूटेशंस हैं जो जेनेटिक जो आपके परिवार अनुवांशिकी चलती है। कुछ में फैमिलियल भी होता है, मतलब परिवार में यदि आपके कैंसर की हिस्ट्री है तो आपको कैंसर की संभावना ज्यादा हो सकती है। जहां तक लंबे समय तक हाइपोथायराइड रहने का सवाल है तो उसमें कैंसर ऐसा रिस्क नहीं रहता, वो एवरेज रिस्क में ही रहता है। लेकिन यदि लंबे समय तक गॉइटर है या फिर ऐसा अनप्रोवोकेट है तो उस कंडीशन में कभी कभी रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन उसका कोई अभी हार्ड एंड फास्ट नहीं है, पर यह माना जाता है कि यदि लंबे समय तक कोई भी थायराइड में गठान है तो उसमें चांसेस रिस्क कैंसर के हो सकते हैं।
1: और अभी आपने कहा कि महिलाओं में प्रमाण ज्यादा होता है लेकिन रिस्क कम होती है, तो क्या आप इसे थोड़ा विस्तृत तरह से बता पाएंगे?
0: देखिए, फीमेल में जो मैंने अभी बताया कि एक जैसे हार्मोन जो रहता है एस्ट्रोजन हार्मोन, वो बेसिकली फीमेल्स में मोस्टली पाया ज्यादा रहता है, तो वो कंडीशंस में उनको रिस्क ज्यादा रहती है क्योंकि थायराइड में उनका स्टिमुलेट करते हैं। एंड इसलिए मैंने बताया कि 3:1 का रेशो है कैंसर का। लेकिन अच्छी बात यह रहती है कि मोस्ट ऑफ द कैंसर जो होते हैं वो डिफरेंशियल वैरायटी के होते हैं, तो उनका जो ट्रीटमेंट होता है जैसे सर्जरी हमने करी और सर्जरी के 4 से 6 हफ्ते बाद हम रेडियोडियन थेरेपी देते हैं डिफरेंशियल केसेस में, तो उससे वो उनका रिकवरी रेट नियरली आप मान चलिए कि 97-100% वो ठीक हो जाती है।
1: अच्छा।
0: वहीं अपोजिट यदि हम देखें मेल्स कंडीशन में, उनमें रिस्क फैक्टर ज्यादा रहता है थायराइड कैंसर, यदि उनको होता कम है लेकिन उनको रिस्क फैक्टर ज्यादा है। उम्र बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, उम्र यदि 55 साल से कम की लेडीज को या फिर आदमियों को हुआ है कैंसर तो उनमें रिस्क कम है, वो ठीक होने के चांसेस ज्यादा है। वही अपोजिट हम 55 साल से ऊपर को देखते हैं तो में रिस्क ज्यादा रहती है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं।
1: अच्छा अच्छा, एक और श्रोता से बात कर लेते हैं। हेलो हेलो
2: हेलो,
1: नमस्कार।
2: नमस्कार,
1: बोलिए।
2: मैडम मैं सौंसर से संजीव कुमार बोल रहा हूँ।
1: बोलिए।
2: मैं 5 साल से 50 mg की थायरोक्सिन ले रहा हूँ, तो क्या पैरों में इससे मसल क्रैम्प्स होते हैं क्या?
0: तो जो थायराइड होता है, जो दवाइयां होती हैं, यदि आप नहीं लेते हैं, यदि आपका लेवल नॉर्मल है तो उससे क्रैम्प्स नहीं होंगे। जो हाइपोथायरॉइडिज्म है या हाइपरथायरॉइडिज्म मतलब कम है या ज्यादा है, उस कंडीशन में आपको क्रैम्प्स आना स्टार्ट होंगे। तो आप जो दवाइयां ले रहे हैं, पहली बार एक बार आप डॉक्टर से जरूर संपर्क कर लें कि क्या वो डोज सही है। कभी कभी हम जो दवाइयां ले रहे हैं 50 mg यदि आप MCG जो ले रहे हैं, हो सकता है उसका इफेक्ट ना हो रहा हो या फिर वो कम है, तो यदि आप उसको टेस्ट करवाएंगे, दोबारा थायराइड टेस्ट करवाएंगे और उसमें यदि कुछ अबनॉर्मलिटी मिलती है तो उसको दवाइयां बदलनी पड़ती हैं। तो मैंने वही बताया कि यदि हाइपर होगा या हाइपो होगा, थायराइड हार्मोन कम या ज्यादा होगा, उस कंडीशन में क्रैम्प्स जरूर मिल सकते हैं। यदि नॉर्मल रेंज रहता है तो उसके वजह से नहीं होगा जनरली।
1: जी, एक और श्रोता है फोन पर। हेलो
3: हेलो,
1: नमस्कार।
3: नमस्कार,
1: बोला।
3: मी अंजलि बोलते है। माझा प्रश्न हा होता की माझं वय आहे 51 आणि माझं TSH लेवल आहे 25 आणि तर मला हा कुठला थायरॉइड आहे आणि माझं वजन आपोआप कमी होत आहे, तर मला कुठला थायरॉइड आहे आणि मला काय काळजी घ्यायला पाहिजे? माझं वजन आता 58 आहे।
0: नहीं, ये अपोजिट चीजें हैं, क्योंकि आपका जो TSH लेवल ज्यादा है तो इसका मतलब है आप हाइपो में हो, थायराइड हार्मोन आपका कम है और वजन भी आपका कम हो रहा है, तो उसको आपको दिखाना चाहिए मेरे ख्याल से कोई एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को आप मिलो और वही आपका पूरा असेसमेंट करके फिर अच्छे से आपको बता पाएगा।
1: बिल्कुल। हम बातचीत कर रहे थे कि जो कैंसर है उसे किस तरह से हम जांच सकते हैं, अगर कोई अपने पास आता है कुछ लक्षण लेकर आता है तो किस तरह की जांच की जाती है ताकि पता चले कि ये थायराइड का कैंसर है।
0: तो सर्वप्रथम हम लोग जो करवाते हैं वो थायराइड फंक्शन टेस्ट, जो ब्लड टेस्ट से अपन ये कराते हैं कि ये जो

0: गठान है वो किस प्रकार की है, क्या ये ऐसा है कि थाइपोथायरॉयडिज्म की गठान है या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से हो रहा है, तो हम TSH लेवल और जो T3 T4 लेवल है वो असेसमेंट करते हैं पहला। दूसरी बात हम करवाते हैं सोनोग्राफी। गैलिक सोनोग्राफी से हमें यह पता चलता है कि जो गठान है वो क्या पानी वाली गठान है, क्या उसमें कोई सॉलिड कंपोनेंट है या उसको वास्कुलरिटी है, तो कुछ फीचर ऐसे मिलते हैं उस कंडीशन में जिसमें हमें यह पता चलता है कि ये कैंसर हो सकती है। और यदि हमें ऐसा लगता है तो फिर हम एक FNAC टेस्ट करवाते हैं जिसमें हम सुई से जो गठान है उससे हम थोड़ा टिश्यूज पानी निकालते हैं और उसको फिर चेक करते हैं कि क्या ये कैंसर है और यदि कैंसर है तो वो किस टाइप का है। और कैंसर मैंने बताया ना, कैंसर के टाइप के आधार पर फिर हम उसका ट्रीटमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ट्रीटमेंट हम इनको करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो बायोप्सी और FNAC आपने बताया, क्या ये एक ही चीज होती है या अलग अलग चीजें होती है?
0: नॉर्मली FNAC जो होती है साइटोलॉजी है, तो उसमें क्या होता है जब हम एक नीडल यूज करते हैं, वो पतली नीडल यूज करते हैं, तो उससे जो निकालते हैं वो पानी निकालते हैं, सेल्स देखते हैं उसके अंदर। बायोप्सी में हम टिश्यू देखते हैं, तो बायोप्सी की जो नीडल होती है मोटी होती है और वो जो बड़ा चंक निकालती है, टिश्यू निकालती है। नॉर्मली थायराइड केसेस में हम लोग FNAC कराते हैं, उसका मेन कारण ये है कि यदि हम बायोप्सी जाते हैं, निडल लाते हैं, तो क्योंकि वास्कुलर ट्यूब वास्कुलर एरिया है थायराइड का, तो निडल यदि मोटी यूज करेंगे तो ब्लीडिंग या हिमाटोमा होने के चांस ज्यादा रहते हैं। हालांकि FNAC जो है वो अच्छी है, इफेक्टिव है और गाइडलाइंस के हिसाब से FNAC सफिशियंट रहती है थायराइड केसेस के लिए।
1: अच्छा, तो उसमें फिर बायोप्सी करवाने की जरूरत भी
0: नहीं, FNAC में सेल्स मिल गए आपको, उसमें मिल जाएंगे और उस हिसाब से फिर हम डायग्नोस कर सकते हैं, अच्छे पतले से डायग्नोस कर लेते हैं।
1: एक और श्रोता से बात करेंगे। हेलो हेलो
2: डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यह है कि थायराइड के कुछ सिम्टम्स होते हैं क्या और उसका लाइफस्टाइल से कोई रिलेशन है क्या, इज इट ए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर और व्हाट?
0: नहीं, लाइफस्टाइल का नहीं रहता है थायराइड। बेसिकली आप जो थायराइड है वो बेसिकली जो थायराइड की प्रॉब्लम्स रहती है। हालांकि ये जरूर है कि कुछ केसेस जो देखा जाता है, जो जो मोटे होते हैं जिनका ज्यादा होते हैं उसमें रिस्क ज्यादा रहता है इसमें। दूसरी चीज है कि कुछ लोग, जैसे मैंने बताया कि आपका एरिया यदि आप खाना कम खा रहे हैं या फिर आप ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें जो गाइटोजेनिक इफेक्ट है, जैसे आपने अभी बताया था खाने पीने के बारे में, जो ज्यादा ड्रिंक्स करते हैं, उन कंडीशंस में थायराइड का जो फंक्शन है वो अब नॉर्मल हो सकता है। तो कोशिश ये करें कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल जिए और ये ड्रिंक्स वगैरह जो है वो अवॉइड करें।
1: बिल्कुल। तो जिस तरह से साइटोलॉजी टेस्ट के बाद अगर पता चल जाता है कि किस तरह का कैंसर है, तो फिर ट्रीटमेंट के क्या क्या पद्धतियां हैं, क्या ऑपरेशन करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है?
0: तो थायराइड कैंसर, एक मैंने बताया ना, थायराइड कैंसर दो तरह से बेसिकली डिवाइड करते हैं, डिफरेंशिएटेड और अनडिफरेंशिएटेड में। और डिफरेंशिएटेड में अच्छा बात यह है कि हम उसको ठीक अच्छा से कर सकते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट जो चीज होता है ट्रीटमेंट में, उसमें पहला करते हैं सर्जरी।
1: अच्छा।
0: सर्जरी भी डिपेंड करती है कि थायराइड का जो नोड्यूल है वो कितना बड़ा है और किस टाइप का है। तो छोटे नोड्यूल होंगे, यदि 1 सेंटीमीटर से छोटे हैं तो उसमें भी वेट कर सकते हैं, वेट एंड वॉच की पॉलिसी भी रहती है। 1 to 4 सेंटीमीटर की जो आजकल गाइडलाइंस आई है उसमें हम सिर्फ थायराइड का एक पार्ट निकालते हैं जिसको हेमी बोलते हैं। लेकिन यदि 4 सेंटीमीटर ज्यादा नोड्यूल हैं, बड़े हैं, या फिर अंदर और 2-3 नोड्यूल्स मिल रहे हैं या थायराइड से बाहर चला गया है ट्यूमर, तो उस कंडीशन में हम लोग पूरा थायराइड निकाल देते हैं।
1: अच्छा।
0: और पूरा थायराइड निकालने के बाद हम उसको 4 से 6 हफ्ते तक कोई दवाई नहीं देते थायराइड की।
1: अच्छा।
0: 4 से 6 हफ्ते बाद हम उनको एक थेरेपी होती है, रेडियोडन थेरेपी, डिपेंडिंग अपॉन रिस्क, जैसे इंटरमीडिएट और हाई रिस्क में दी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क डॉक्टर असेसमेंट करता है। और उसके बाद रेडियोडन थेरेपी देते हैं। थेरेपी वो ऐसे रहता है कि वो एक गोली या फिर लिक्विड फॉर्म में आती है, उसको हम पेशेंट को पिलाते हैं डिपेंडिंग अपॉन की उसके बॉडी में कुछ रेसिडुअल कुछ बचा है या नहीं।
1: अच्छा।
0: और फिर उसको देने के बाद पेशेंट नियरली पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है।
1: बिल्कुल। एक और फोन लेते हैं। हेलो हेलो
3: हेलो मैडम।
1: हाँ नमस्कार।
3: हाँ नमस्कार मैडम, मैं सुखदेव शहरे बोलता हूँ।
1: बोल रहे हो? बोला।
3: कैंसर हो चुका है या सारी कौन सी काळजी घ्यावी लागेल?
1: कैंसर ना होने पाए इसके लिए क्या किया जाए?
0: देखिए, कैंसर मैंने आपको भाई बताया कि एक तो जेनेटिक चीजें हैं, जो डाइट है वो यदि मेंटेन आप रखें, और फैमिलियल चीजें और जेनेटिक चीजें आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं।
1: हाँ।
0: तो ऐसा चीज नहीं है। हाँ, मेनली अभी इस कंडीशन में थायराइड कैंसर यदि हो रहा है तो डायग्नोज यदि जल्दी हो जाए तो ट्रीटमेंट अच्छे से हो सकता है और आपकी लाइफ पूरी प्रॉपर हो सकती है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है डायग्नोसिस का, कि डायग्नोज जल्दी हो गया, ट्रीटमेंट जैसे ही हो गया तो फिर आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं।
1: बिल्कुल। आप इतनी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई पेशेंट, कई तरह के पेशेंट्स आप देखते हैं, तो कॉमन मिथ्स क्या देखी जाती हैं, क्योंकि अगर उसके बारे में हम पेशेंट्स को बताएं तो उनमें जागरूकता ज्यादा बढ़ जाएगी।
0: मेन समस्या ये आती है कि कोई भी गठान गले में रहती है तो बहुत से लोग उसको निग्लेक्ट कर देते हैं कि यार ऐसे ही है, नॉर्मल है, बहुत दिनों से है। पर कोई भी गठान यदि बहुत दिनों से है, बाद में कैंसर नहीं होगा ऐसा गारंटी नहीं है।
1: हाँ।
0: तो इसीलिए एक बार जरूर जांच करवा लेनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो गठान रहेगी और उसको मलना स्टार्ट कर देते हैं, रगड़ना स्टार्ट करते हैं, सोचते हैं कि कोई ये है इसको गला देंगे, दबा दबा के गला देंगे, या फिर कुछ हम ऐसी दवाई यूज करें आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक

0: जिससे वो गल जाए। तो जनरली ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि वो ट्यूमर कभी कभी रैप्चर हो जाता है या फिर इन्फेक्शन यदि होता है वो भी फैल जाता है। तो कभी भी ऐसी रगड़ने वाली और या फिर कोई भी ट्यूब लगाना जो भी क्वैक्स दे रहे हैं वो ऐसी चीज यूज ना करें। एक बार उसका स्कैन या फिर जो भी कंसर्न डॉक्टर्स रहते हैं, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आप उनसे एक बार जरूर संपर्क करें और उसके हिसाब से फिर आप ट्रीटमेंट लें
1: जी। और पोस्ट ट्रीटमेंट मतलब सर्जरी हो गई, बाकी सारी दवाइयां हमने ले ली, पोस्ट ट्रीटमेंट क्या चीजें हैं जो एक पेशेंट को और उनके घर वालों को याद रखनी है, किस तरह से हम आगे बढ़े?
0: तो ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद हम चूंकि बॉडी में यदि थायराइड हमने पूरा निकाल दिया है तो हमें उसको थायराइड सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है
1: जी, जी।
0: मतलब थायराइड गोलियां खाने पड़ती हैं और हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि ये आपको जिंदगी भर लेनी पड़ेंगी क्योंकि आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड नहीं है,
1: नहीं है हाँ।
0: तो जब नहीं है तो आपको एक ये गोली आपको रेगुलरली यूज करनी है, जैसे आप बीपी की यूज करते हैं और उसको थोड़ा हाई डोज में यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिस्क फैक्टर, हम उसको दवाई को टाइटेट करते हैं कि कितना डोज इनको देना चाहिए। तो उस कंडीशन के हिसाब से उसको लाइफ लॉन्ग अपने को दवाई लेनी है, कभी छोड़नी नहीं है। कुछ पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं दवाई क्योंकि डोज थोड़ा ज्यादा रहती है नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि हमें टीएसएच लेवल जो मैंने बताया उसको हमें कम रखना पड़ता है। तो कुछ पेशेंट को लगता है कि ऐसे फ्लशेज आते हैं या थोड़ा हार्ट में कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आप एक बार डॉक्टर जरूर संपर्क कर लें, पर लेकिन ये है कि दवाइयां छोड़े ना
1: जी,
0: क्योंकि दवाई यदि आप लेते रहेंगे और पूरा दवाई लेंगे तो आपको जो ये रिस्क रिकरेंस दोबारा होने के चांसेस हैं वो बहुत कम रहेंगे।
1: बिल्कुल, वही मेरा अगला सवाल था कि रिकरेंस के कितने चांसेस होते हैं।
0: डिफरेंशिएटेड वैरायटी जो मैंने बताया है ना, यदि आपने पूरा ट्रीटमेंट लिया है तो आपको रिकरेंस 1-2% होगा, जैसे 98% आपका क्योर रेट्स हो जाता है। रिकरेंस हर कैंसर में होता है तो इसमें भी रहता है लेकिन बहुत कम होता है, तो इसीलिए आपको फॉलोअप करवाना पड़ता है। फॉलोअप हम लोग जनरली कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, सोनोग्राफी होती है, नेक की सिम्टम्स के आधार पे हम लोग एसीटी एमआरआई भी करवाते हैं
1: जी।
0: तो आप हर 3-6 महीने में एक बार आप डॉक्टर से संपर्क करें इनिशियल स्टेजेस में, बाद में फिर 6-12 महीने में आप एक बार दिखा सकते हैं, बाद इतना जल्दी यदि आने की जरूरत भी नहीं पड़ती
1: जी। जी जी बिल्कुल, जैसे हम बातचीत कर रहे थे कि थायराइड जो ग्लैंड है कभी आधी निकाली जाती है कभी पूरी निकाल दी जाती है, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद क्या ऐसा पाया जाता है कि थायराइड का कैंसर तो पूरी तरह से ठीक हो चुका है लेकिन कहीं और पेशेंट को कैंसर पता चल रहा है कि वहाँ पे है, तो इसके क्या चांसेस होते हैं?
0: नहीं, जैसे थायराइड में एक जो वैरायटी जो कैंसर है डिफरेंशिएटेड वैरायटी जिसको मेडुलरी थायराइड कैंसर बोलते हैं, वो उसमें एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है, रेट म्यूटेशन जीन्स होते हैं, उसमें मल्टीपल अदर ऑर्गन्स में भी कैंसर हो सकता है, तो वो एक कैंसर जैसा है वो अलग कैंसर करा सकता है। बाकी जो कैंसर होते हैं जो थायराइड की वजह से अलग कैंसर होगा ऐसा नहीं है, हालांकि जिनको कैंसर प्रिडिस्पोजिशन होता है जिसमें कैंसर होता है तो उनमें अदर कैंसर रिस्क ऑब्वियसली ज्यादा रहेंगे सामान्य पब्लिक के मुकाबले।
1: जी बिल्कुल, और ये जो ऑपरेशन हम करते हैं क्या वो दूरबीन से या रोबोटिक आजकल नया चलन है उस तरह से की जाती है या किस तरह से सर्जरी की जाती है?
0: तो उसमें डिपेंड करता है साइज पे। क्या है कि यदि हम रोबोटिक या लैप्रोस्कोपिक कर रहे हैं तो साइज यदि बहुत बड़ा होगा तो उस वो निकलेगा नहीं उस पोर्ट से, मतलब वो चेन जो हम बनाते हैं तो जो बहुत छोटे ट्यूमर्स होते हैं अर्ली स्टेज कैंसर्स हैं और डिफरेंशियल वैरायटी ट्यूमर्स हैं उस कंडीशंस में जरूर आजकल रोबोटिक यूज करते हैं। लैप्रोस्कोपिक कम, एंडोस्कोपिक जिसको बोलते हैं वो कम यूज होता है, रोबोटिक कर रहे हैं आजकल, लेकिन साइज क्राइटेरिया उसमें रहता है, छोटा था लेस देन 2 सेंटीमीटर ग्राउंड यदि ट्यूमर रहता है तो वो अच्छे से निकल जाता है। बड़े ट्यूमर होंगे 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 8-10 सेंटीमीटर ट्यूमर्स होंगे जनरली वो पोर्ट से निकलते नहीं, उसमें आपको चीरा देना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन में हम प्रिफर ये करते हैं कि हम ओपन सर्जरीज में जाएं बसरते रोबोटिक के।
1: जी बिल्कुल, और क्योंकि ये गले के पास या गले में सर्जरी होती होगी तो क्या लाइफ लॉन्ग कोई ट्यूब रखना है या ऐसी कुछ चीजें होती है?
0: नहीं, एक्चुअली क्या है ना, यदि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वॉइस की, तो यदि अच्छी जगह से नहीं किया गया या फिर कोई नर्व, जैसे नर्व जो होती है रिकरेंजन नर्व होती है जो बोलने में इफेक्ट करती हैं, तो यदि वो डैमेज होती हैं, यदि दोनों तरफ डैमेज हुई तो फिर ट्यूब जलेगा, वो फिर बोल नहीं पाएंगे। एक साइड में यदि डैमेज होती है तो जनरली हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाती है। कुछ लोग जो गाने वाले होते हैं उन कंडीशंस में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि एक्सटर्नल एंजल ब्रांच नर्व की होती है उसको भी देख के उसको प्रिजर्व करना रहता है, अदरवाइज वो हाई पिच नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो जो प्रोफेशनलिज्म जो प्रोफेशनल होते हैं उनमें हमें नर्व सेंसेशन नर्व को टेस्ट करके नर्व देख के फिर सर्जरी करनी पड़ती है, और वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बोलना बहुत जरूरी है और चेंजेस कुछ जो आपके प्रोफेशंस हैं
1: जी जी,
0: जैसे मैंने बताया गाने का, तो यदि ऐसे कंडीशंस में यदि पेशेंट ऑपरेट करवाते हैं उसमें नर्व प्रिजर्व नहीं की गई तो उसमें फिर उसकी जो कैरियर पॉइंट है वो दिक्कत होती है।
1: बिल्कुल, श्रोताओं आप सुन रहे थे एचसीजी कैंसर हॉस्पिटल। हेलो डॉक्टर।

0: डॉक्टर, ये लाइव फोन इन प्रोग्राम। आज इस प्रोग्राम के लिए हमें तकनीकी सहयोग मिला विजय वैद्य और सतीश कोडमलवार से, प्रस्तुति सहयोग मिला मोनाली शेंडे से। प्रोग्राम की प्रस्तुतकर्ता थी संगीता रसपुरे। डॉक्टर भास्कर सिंह के साथ मैं कल्याणी अब आपसे इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार।
1: हेलो डॉक्टर।
0: हा लाइव फोन इन कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी नागपूर आणि विविध भारती नागपूरवरून एकाच वेळी।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: नागपूर महानगर पालिकेकडून प्रॉपर्टी टॅक्स वर खास सवलत। 31 जुलै 2026 पूर्वी चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 चा मालमत्ता कर ऑनलाइन भरा आणि मिळवा 15% सूट। तसेच वसुली केंद्रावर ऑफलाईन भरल्यास 10% सूट उपलब्ध। घरी बसून ऑनलाईन सुविधेचा लाभ घ्या, वेळ, इंधन आणि त्रास वाचवा।
3: अधिक माहितीसाठी नागपूर महानगरपालिकेच्या वेबसाईटला भेट द्या। जनहितार्थ प्रसारित।
4: आइए दोस्तों, मिश्र संगीत इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं अमित साना, इन्होंने गाए हुए इस प्यारे से गीत के साथ।

दोस्तों आप सुन रहे हैं मिश्र गीतों का प्रोग्राम मिश्र संगीत। कार्यक्रम की अगली पेशकश आइए सुने अलीशा चनय की आवाज में। उन्होंने गाया हुआ, लिखा हुआ और संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत।

दोस्तों सोनू निगम की आवाज़ में ये रचना भी आपने सुनी थी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिश्र मिश्र गीतों का कार्यक्रम मिश्र संगीत। आइए अगली रचना सुनते हैं।

दोस्तों आपने ट्यून किया है अपने रेडियो सेट पर विविध भारती का नागपुर केंद्र FM 100.6 MHz पर। सुबह के ठीक 11 बजे है, प्रस्तुत है प्रोग्राम मधुमालती। दोस्तों आज का प्रोग्राम है विशेष, क्योंकि आज है आपके पत्रों पर आधारित प्रोग्राम विशेष मधुमालती। ये विशेष इसलिए है दोस्तों क्योंकि आपके आए हुए खतों को हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आपकी फरमाइश हम पहुंचाते हैं हमारे रेडियो के थ्रू। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश इस देशभक्ति गीत के साथ।

दोस्तों, इस विशेष मधुमालती कार्यक्रम में ये पहला पत्र जो शामिल हुआ है ये बेल तरोड़ी नागपुर से है। हमारे श्रोता है आशा पाझारे, उषा पाझारे, सुशांत पाझारे, अरविंद पाझारे, विनोद पाझारे, विद्या रोशनी, टोनू, स्वीटी, अंशु, मैत्री, मीठी, टबी, किट्टू और अनुमा। और शाहूनगर से हमारे और एक श्रोता है नंदा बरके, शीतल बरके और सोनू बरके। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं आशिकी इस फिल्म का गीत अनुराधा पौड़वाल और कुमार सानू की आवाज में। आइए सुने ये प्यारा सा गीत जिसे लिखा है रानी मलिक ने और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने। आइए सुनें।

0: 200 ध्वनि तरंगों के ताल पर इस समय आप है विविध भारती के संग सुन रहे हैं प्रोग्राम विशेष मधुमालती जो कि है आपके पत्रों पर आधारित। दोस्तों कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल पर आप कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर हुए।
1: और टाइम ने एडवांस मांगा और टाइम बिल्कुल नहीं था, तब गोल्ड काम आया, बेचा नहीं बस यूज किया। थैंक यू लाइन लेंडर।
2: लाइन लेंडर एक RBI मान्यता प्राप्त NBFC है और आपका भरोसेमंद फाइनेंशियल सपोर्ट है, जहां आप अपने गोल्ड के अगेंस्ट तुरंत लोन ले सकते हैं। फास्ट अप्रूवल, इजी प्रोसेस, इंस्टेंट हेल्प। गोल्ड लोन मतलब लाइन लेंडर। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल 7090307307। विजिट अस लकतगंज नागपुर।
3: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
5: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
6: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेस

0: प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
0: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
0: समझ गया।
2: दोस्तों, मधुमालती विशेष मधुमालती कार्यक्रम में आपका हम करते हैं फिर एक बार तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, हमारे साथ और कुछ श्रोता और जुड़े हैं। आइए देखते हैं वो कौन श्रोता है जो हमसे जुड़े हैं हमारे खतों के तहत। माता टेकड़ी इंदुरा से हमारे ये श्रोता है देवमन भालेकर, यमु भालेकर, सुमित भालेकर, अमित भालेकर और अयान भालेकर, छकुली सहारे, वेणु सहारे, आशा, शीतल और प्रिया तथा गोपाल नगर से हुड़केश्वर रोड से हमारे साथ श्रोता है अरविंद भांडेकर, रीता भांडेकर, शांताबाई भांडेकर और उनका समस्त परिवार। त्रिमूर्ति नगर से श्रद्धा पवार, पंकज पवार, पर्व, धैर्य, श्वेता और पिंटू, ये सभी श्रोता आज हमारे इस प्रोग्राम में सुनना चाहते हैं बड़े ही खूबसूरत फिल्म का गीत जो है फूल और कांटे। इस फिल्म से ये गीत वो सुनना चाहते हैं। इस गीत को गाया है अलका याज्ञिक और कुमार सानू की आवाज में। ये बड़ा ही आइकॉनिक गीत है। आइए सुनवाते हैं आपको समीर के बोलों को। संगीत में ढाला है नदीम श्रवण ने। फिल्म फूल और कांटे।

दोस्तों, विशेष मधुमालती में हमारा अगला खत जो हमने शामिल किया है कोलितमारा पेंच तहसील पारशिवनी से, जिल्हा नागपुर से ये हमारे श्रोता है जो हमसे इस खत के जरिए जुड़े हैं। रविंद्र कोड़ापे, रौनक कोड़ापे, प्रतिभा कोड़ापे, अरविंद तुमडाम, प्रीति तुमडाम, संतराम तुमडाम, पार्वती तुमडाम, गजानन सोमकुवर, सत्यशील सोमकुवर, सुमित्रा सोमकुवर, संजय मड़ावी, संघर्ष सोमकुवर और इंद्रपाल राउत और समस्त राउत मित्र परिवार। नंदनवन से हमारे और एक श्रोता है माया गड़ेकर, कुणाल गड़ेकर, साक्षी गड़ेकर, भव्या गड़ेकर और विजय गड़ेकर। ये हमारे जो श्रोता है ये सुनना चाहते हैं जब किसी की प्यार तो होना ही था इस फिल्म का गीत जो गाया है कुमार सानू ने। दोस्तों, समीर

0: के इन बोलों को संगीत में ढाला है जतिन ललित ने। और आइए इस प्यारे से गीत की फरमाइश हमें आई है और इस फरमाइश को हम करते हैं पूरी और सुनते हैं ये गीत प्यार तो होना ही था इस फिल्म से।
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और वो किसी और को चाहती है।

दोस्तों, ध्वनि तरंगों के ताल पर आप है विविध भारती के संग सुन रहे हैं प्रोग्राम विशेष मधुमालती, जो कि आधारित है आपके पत्रों पर और आपके आए हुए फरमान

0: मायशी गीतों पर। पर दोस्तों कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: हे कस्टमर केयर उठे। हाँ मैडम।
2: बोला।
1: हे केवायसी अपडेट साठी मला वारंवार मेसेज काय येत आहे?
2: कारण बँकिंग सेवांसाठी निश्चित वेळेत केवायसी अपडेट करायला हवं।
1: पण हे होईल कसं?
2: जर ओळख किंवा पत्त्यामध्ये कोणताही बदल नसेल तर स्वतःच्या बँकेत किंवा एटीएम मध्ये अथवा बिझनेस करस्पॉन्डेंट म्हणजे बीसी कडे जा, किंवा बँकेत रजिस्टर्ड ईमेल अथवा मोबाईल नंबर किंवा मोबाईल बँकिंग ऍप अथवा पत्राद्वारे त्याचं डिक्लेरेशन द्या।
1: अच्छा, आणि जर कोणताही बदल असेल तर?
2: तर अशा वेळी ओळखीचा आणि पत्त्याचा नवीन पुरावा देऊन केवायसी अपडेट करू शकता।
1: बस
2: बस
1: समजलं।
2: आपलं केवायसी अपडेट करण्यासाठी जवळच्या ग्रामपंचायतीच्या कॅम्प मध्ये किंवा बँकेच्या शाखेमध्ये जा।
3: आरबीआय सांगते,
4: जाणकार बना, सतर्क रहा।
5: दुकान में नया स्टॉक आना था पर पैसा अटका हुआ था, लेकिन मैं टेंशन फ्री था क्योंकि मेरे पास गोल्ड था और लायन लेंडर का सपोर्ट भी। लायन लेंडर ने मेरा बिजनेस बचा लिया।
6: लायन लेंडर एक आरबीआई मान्यता प्राप्त एनबीएफसी है और आपका भरोसेमंद फाइनेंशियल सपोर्ट है, जहां आप अपने गोल्ड के अगेंस्ट तुरंत लोन ले सकते हैं। फास्ट अप्रूवल, इजी प्रोसेस, इंस्टेंट हेल्प। गोल्ड लोन मतलब लायन लेंडर। For contact, call 709-0307-307. Visit us, Lakatganj, Nagpur.
7: नागपुर महानगर पालिका लेकर आई है प्रॉपर्टी टैक्स पर विशेष छूट। 31 जुलाई 2026 से पहले चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 का प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन जमा करें और पाएं 15% तक की छूट। वहीं वसूली केंद्र पर ऑफलाइन भुगतान करने पर 10% तक की छूट का लाभ उठाएं। घर बैठे ऑनलाइन सुविधा का लाभ लें, समय, ईंधन और परेशानी बचाएं।
8: अधिक जानकारी के लिए नागपुर महानगर पालिका की वेबसाइट पर विजिट करें। जनहित में जारी।
9: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
10: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
0: दोस्तों ध्वनि तरंगों के ताल पर इस समय आप है विविध भारती के संग सुन रहे हैं प्रोग्राम विशेष मधुमालती और करते हैं हम आपका फिर एक बार स्वागत। दोस्तों इस विशेष मधुमालती कार्यक्रम में आइए अगला गीत हम शामिल कर रहे हैं। खरबी से हमारे श्रोता है रमेश येरवटकर, सरोज येरवटकर, आशीष येरवटकर, शीतल, मृणाल और अवनी। छापरू नगर से हमारे और एक श्रोता जुड़े हुए हैं सुभाष येरवटकर, सुषमा, अक्षय, शिवानी, तुषार, पूजा और स्वरा। राजू लोखंडे, तुषार लोखंडे और अक्षय लोखंडे ये भी हमारे श्रोता जुड़े हुए हैं छापरू नगर से ही, और ये श्रोता सुनना चाहते हैं राजा हिंदुस्तानी। इस फिल्म से कुमार सानू और अलका याज्ञिक का गाया हुआ ये बड़ा ही फेमस सा गीत आइए सुनिए।

दोस्तों, विशेष मधुमालती इस प्रोग्राम में हमने लिया है ये अगला खत जो आया है दत्तात्रेय नगर नागपुर से। हमारे श्रोता है बिस्मार्क भ्यूगड़े, राखी भ्यूगड़े, रुचित निसर्ग भ्यूगड़े, राजू भ्यूगड़े, वंदना, आयुष, अक्षय, पूजा, हर्षल भ्यूगड़े, रूपाली, रिहांश और वेदांत। गाड़गीनगर नागपुर से ये हमारे और एक श्रोता है किशोर इंदुरकर, छाया इंदुरकर, आशा भोगे, अरुण भोगे, कंचन पाटिल, सिद्धार्थ, तनिष्क, मीत पाटिल, ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं हम साथ साथ है इस फिल्म का गीत। आइए सुनिए।

दोस्तों विशेष मधुमालती में आइए लेते हैं अगला खत शारदा चौक नागपुर से योगिता गडेकर इनका नमिता स्वरी परी सार्थक वसंत नगर नागपुर से कंचन पाटिल सिद्धार्थ मीत पाटिल तनिष्क पाटिल मीनाक्षी नारनवरे कल्पना मेशराम कविता मेशराम नारा नारी रोड नागपुर से भुजंग मोटघरे ऋतिक मोटघरे प्रतीक मोटघरे और रिया मोटघरे ये हमारे श्रोता है जो सुनना चाहते हैं संघर्ष इस फिल्म का गीत सोनू निगम की आवाज में समीर के बोलों को संगीत में ढाला है जतिन ललित ने आइए सुनें

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: पीस कीपिंग हैज बीन अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ
2: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय

0: शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3,00,000 शांति रक्षकों की तैनाती की है। वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कोनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलरमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुस जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुस जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। पुलिस आग लगने के कारणों और बार में सुरक्षा नियमों की जांच कर रही है। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 356 अंक गिरकर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इंग्लैंड के लिलेशॉल नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का ये अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन प्रस्तुत कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए गाने। पहला जो गीत है ये अनपढ़ फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खां के बोल।

बहलन से लो मैं चमन को चला वीरन से क्षमा है कब से जुदा परवन से अश्क थमे।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए हुए गाने हम आपको सुनवा रहे हैं आज की यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है, कार्यक्रम में समय हो गया है एक अंतराल का।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: यह है खजांची फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल।

यादों की महफिल इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मन्ना डे की आवाज में देख कबीरा रोया इस फिल्म का गाना। गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

लता मंगेशकर की आवाज में कैफी आजमी का लिखा हुआ ये गाना आपने सुना, संगीत मदन मोहन का, फिल्म का नाम हीर रांझा। और अब आपको सुनवाते हैं हंसते जख्म इस फिल्म का गाना, एक बार फिर आवाज लता मंगेशकर की, बोल कैफी आजमी के।

संगीतकार मदन मोहन के संगीत से सजे गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। लैला मजनू फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। सहे लुधियानवी के बोल हैं।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अदालत फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में गीतकार राजेंद्र कृष्णा।

संगीतकार मदन मोहन के संगीत बद्ध किए गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, फिल्म का नाम भाई भाई।

दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरीला सफर इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आज विविध भारती के फेसबुक पेज पर जो इबारत हमने पोस्ट की है वो सबसे पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं कि संगीत की अनेक विधाएं होती है। संगीत गजल के रूप में भी है और कव्वाली के रूप में भी। कई गीत शास्त्रीय संगीत पर आधारित होते हैं। जब पसंद की बात हो तो सबके अपने ख्याल हैं। संगीत की दुनिया ही कुछ ऐसी है कि उसके बिना दिल नहीं लगता। संगीत के प्रति दिल में ऐसे अरमान, ऐसी दीवानगी कि सारी सारी रात उनकी याद सताती है। जब संगीत की शैली मधुर हो और कोमल हो, संयोजन सरल हो और भारतीय वाद्य यंत्रों का विशिष्ट प्रयोग हो तो गीत भावपूर्ण रूप में निकलता है। संगीत की कहां कोई सीमाएं होती है, पर खासियत इस बात में है कि उनकी मौलिकता और मधुरता बनी रहे। संगीत के दीवानों की निगाहों को न कारवां की तलाश होती है, ना वे उस बरसात की रात को जिंदगी भर भूल पाते हैं जब उन्होंने गरज कर सावन आते देखा। पसंदीदा संगीत कानों में पड़ते ही ख्याल आता है जो बात तुझ में है किसी और में नहीं। बताइए कौन से हैं आज के गीत। ये आज विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमने इबारत पोस्ट की, आप लोगों ने इसे पढ़ा और बहुत सारी बातें आपने लिख करके भेजी संगीत के बारे में। जी हाँ, आज दो महान संगीतकारों की याद का दिन है, संगीतकार मदन मोहन और संगीतकार रोशन। मदन मोहन के गीत तो हमने आपको यादों की महफिल इस कार्यक्रम में सुनवाए हैं। आज इस कार्यक्रम में यानी सुरीला सफर कार्यक्रम में संगीतकार रोशन के संगीत को हम याद करेंगे। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि संगीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि दिल की धड़कन और रूह की एक मुकम्मल दास्तान है। गजल की तड़प, कव्वाली का जुनून और शास्त्रीय सुरों की सादगी मिलकर एक ऐसा जादुई एहसास जगाते हैं जहां वक्त ठहर सा जाता है। जब रात के सन्नाटे में भारतीय साजों की कोमल धुनें कानों में घुलती है तो गुजरी हुई मोहब्बत और सावन की वो पहली बरसात यादों के झरोखों से जीवंत हो उठती है। संगीत की कोई सरहद नहीं होती, यह तो आत्मा की वो बेबाक आवाज है जो हर दीवाने के दिल को सीधे छू कर हौले से कह जाती है कि जो बात इस सुरमई एहसास में है वो कायनात की किसी और चीज में नहीं। एक साथी की बात है कि कोलाहल से भरे जीवन में संगीत से बेहतर शायद ही कोई और विकल्प हो। संगीत सिर्फ सात सुरों में बंधा नहीं होता। संगीत में दुखी से दुखी व्यक्ति को भी प्रसन्न करने की सामर्थ्य होती है। किसी के लिए संगीत का मतलब स्वयं को सुकून देना होता है और कोई अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति संगीत द्वारा करता है। प्रेमियों के लिए तो संगीत प्रेम की भाषा के व्याकरण जैसा है। अच्छा संगीत बेचैनी कम करता है। घंटों काम कर रहे व्यक्ति का कुछ देर अच्छा संगीत सुनना उसकी रचनात्मक कार्य क्षमता को बढ़ा सकता है। बहुत सारी बातें हैं संगीत के बारे में कहने के लिए। आप रोशन के संगीत के बारे में भी हमें लिख सकते हैं। चलिए पहला गाना सुनते हैं कार्यक्रम का, वल्ला क्या बात है, इस फिल्म का गाना। जी हाँ, कुछ संगीतकार या बल्कि संगीत के बारे में ही हम कह सकते हैं, जब अच्छा संगीत हम सुनते हैं तो मन से यही बात तो निकलती है, वल्ला क्या बात है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ ये गाना है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं।

शम्मी कपूर और बीना रॉय पर फिल्माया गया ये गाना, क्या बात है। आप चाहे कितने ही परेशान हो, काम का कितना भी बोझ हो, या किसी और बात का मन में कोई उदासी हो, कोई टेंशन हो, कुछ इस तरह के गाने जब हम सुन लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम किस बात से परेशान थे। यही तो संगीत का जादू होता है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि सुरों की अनमोल साधना, लाइव ऑर्केस्ट्रा का वो सुनहरा दौर, आज जहां कंप्यूटर से संगीत बनता है, वहीं पुराने दौर का फिल्मी संगीत एक अद्भुत साधना था। 1950 से 80 के दशक में एक एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में 60 से 150 असली वाद्य यंत्र, वादक और गायक एक साथ लाइव बैठते थे। वहां कोई रीटेक या एडिटिंग की गुंजाइश नहीं होती थी। अगर आखिर सेकेंड पर भी एक वायलिन गलत बजा तो पूरा गाना शुरू से रिकॉर्ड करना पड़ता था। जब इतने सारे ओरिजिनल वाद्य एक साथ गूंजते थे तो संगीत में एक जीवंत इंसानी रूह समा जाती थी। यही कारण है कि विविध भारती पर बजने वाले ये सदाबहार तराने आज भी सीधे हमारे दिल को छू जाते हैं। एक साथी की ये बात है कि संगीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि दिल की धड़कन और रूह की एक मुकम्मल दास्तान है। गजल की तड़प, कव्वाली का जुनून और शास्त्रीय सुरों की सादगी मिलकर एक ऐसा जादुई एहसास जगाते हैं जहां वक्त ठहर सा जाता है। जब रात के सन्नाटे में भारतीय साजों की कोमल धुनें कानों में घुलती है तो गुजरी हुई मोहब्बत और सावन की वो पहली बरसात यादों में समा जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आरती फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज से। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और ये गाना प्रदीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया है। एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं संगीत के बारे में कि कोई ऐसी आप कोई घटना अगर आपको याद आ रही हो जब आप बहुत परेशान थे और आपको लग रहा था कि ये समय, ये परिस्थितियां कैसे कटेंगी, कैसे बदलेंगी, क्या किया जाएगा, लेकिन कोई गुनगुना रहा था एक मधुर संगीत या रेडियो पर कोई ऐसा मधुर गीत बज रहा था और आप भूल गए कि आपको क्या करना है या किस वजह से आप परेशान हैं, ऐसी कोई परिस्थिति आपको याद आती है तो वो आप

हमें बता सकते हैं, या कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती है जब अनायास ही आपके मुंह से एक अच्छा सा कोई गीत आप गुनगुनाने लगते हैं या उस गीत के शब्द आपके मुंह से निकल पड़ते हैं, इस बात का जिक्र आप हमसे कर सकते हैं।

संगीत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। कभी किसी गजल में अपना अक्स मिल जाता है, कभी किसी धुन में बचपन, और कभी कोई पुराना गीत बरसों पुरानी याद को फिर से मुस्कुरा देता है। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिख दी है। और एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जो बच्चों के लिए माँ की लोरी और देवी देवताओं के लिए भजन और शादी विवाह जैसे अवसर पर संगीत संध्या में हम गीत संगीत के माध्यम से इन अवसर को और भी रंगीन बनाते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत कला का विशुद्धतय रूप है, इसलिए वह सौंदर्य को सबसे उच्चतम रूप में प्रकट करता है। सावन के भीगे दिन हो या गर्मी की जलती दोपहर, एक संगीत ही है जो दिल को नरम नरम एहसास करा के जीवन में रस घोल देता है। जब भी हकीकत के गर्म थपेड़ों से ऊब होने लगती है, जिंदगी संगीत में अपना सुकून खोज लेती है। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन आज भी गीत सुनना सबसे सुखद और सबसे मनोरम लगता है। सांसों की लय और धड़कन की ताल पर जब तक जिंदगी तराना

सुनाती रहेगी, गीतों के सुर मन के तार छेड़ते रहेंगे जब तक ये पूरी कायनात सुरीली बनी रहेगी। धन्यवाद आपका। चलिए, चित्रलेखा फिल्म का गाना, लता जी की आवाज, सही लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत।

क्या कहना, ऐसे गीत जब हम सुनते हैं तो उलझा हुआ मन भी सुलझ जाता है अनायासी, इसका हमें आभास भी नहीं होता और ऐसा हो जाता है। एक हमारे साथी की ये बात है कि मुझे पुराने गाने इतने मधुर लगते हैं और संगीत इतना मीठा कि पूछो मत, मैं ऐसी खो जाती हूँ कि आगे पीछे की मुझे कोई खबर ही नहीं रहती। हाँ, संगीत के प्रति दीवानगी तो होती है, लेकिन ऐसी भी दीवानगी नहीं कि कुछ खबर ना हो, उसका भी आप ध्यान रखिए। एक साथी हमारी लिख रही है कि उम्र छोटी थी, शादी करके दूर चली आई, सारा भरा पूरा संयुक्त परिवार साथ रहता था, पर मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती थी। उस पर मेरा जन्मदिन पड़ा और मुझे किसी ने भी विश नहीं किया। मैं तो बहुत दुखी हुई और चुपचाप रोती रही। उस समय तो मुझे लगा कि कोई बहुत ही बड़ा गम मिला है मुझे, लेकिन रेडियो पर गाना बज रहा था, समझौता गमों से कर लो, और तब मन को चैन आया। एक साथी की ये बात कि जब भी परेशानी होती तो भगवान के मंदिर में जो भजन गा रहे होते हैं या भजन बज रहे होते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, वहीं रुककर हमारा भी भजन गाने का मन बहुत करता है। और एक साथी लिखते हैं कि हमारे जीवन में संगीत हर क्षण व्याप्त है, यहाँ तक कि हम रोते भी हैं तो सुरों में रोते हैं और गम हमसे दूर भाग जाता है। एक साथी की ये बात की है कि हमारी कॉलोनी में एक बांसुरी वाले भैया बांसुरी बेचने निकलते हैं, उनकी बांसुरी सुनकर हम तो अपना काम वाम छोड़कर बस सुनने लगते हैं जब तक वो दूर नहीं चले जाते। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि संगीत हमारे जीवन का एक हिस्सा है, बचपन में माँ लोरी सुनाती है, स्कूल में हम प्रार्थना करते हैं, कविताएं ऊंचे स्वर में गाकर आनंद लेते हैं।

जवानी में हम प्यार भरे गीत सुनते हैं, रेडियो के साथ गाते हैं, फिर रियाज न होने के कारण आवाज में संगीत नहीं रहता। मराठी में इसे कंठ फूटने कहते हैं, मतलब आवाज में वो सुर वो लय तान नहीं होती, फिर भी हम मन ही मन कुछ गाकर अपना दिल बहलाते हैं। बुढ़ापे में भी कुछ यादगार गीत गाते हैं, भजन करते हैं, इस तरह संगीत हमारे जीवन का हिस्सा बना रहता है। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का। और अब बावरे नैन इस फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं, गीता दत्त और मुकेश की आवाज़ें हैं इसमें, और संगीत आपको पता ही है रोशन का, राज कपूर और विजय लक्ष्मी पर फिल्माया गया ये गाना है। लिखा किसने है ये आप हमें बताइए।

बावरे नैन फिल्म का ये गीत आपने सुना, केदार शर्मा का लिखा हुआ ये गाना। एक साथी ने लिखा है कि मंजू जी, घर में तो प्रायः ऐसा होता ही रहता है कि कभी किसी बात पर किसी से बहस छिड़ गई या छोटा मोटा झगड़ा लड़ाई यूं ही किसी छोटी सी बात पर हो जाता है, तो फिर उस स्थान से हटकर दूसरे कमरे में जाकर शांति से बैठकर गीत सुनने लगते हैं। रेडियो पर विविध भारती तो नित्य प्रतिदिन बजता ही रहता है, चाहे वो बजने वाला गीत कैसे भी मूड का हो, पर अपने बिगड़े हुए मूड को बदल ही देता। यही तो होता है संगीत का जादू। एक साथी की ये बात है कि संगीत मन की दवा है, ये केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि भावनाओं को संतुलित करने और मन को शांति देने का माध्यम भी है। जब मन उदास होता है, जब मधुर संगीत चेहरे पर मुस्कान ले आता है और तनाव को कम कर देता है। संगीत भाषा और सीमाओं से परे जाकर सीधे हृदय से संवाद करता है। भजन, गजल, लोकगीत या शास्त्रीय संगीत, हर स्वर में मन को सुकून देने की अद्भुत शक्ति होती है। यही कारण है कि संगीत को आत्मा की भाषा और मन की सबसे प्रभावी दवा कहा जाता है। एक साथी ये बात लिखते हैं कि मानव ने रचाया संगीत तो ठीक है, पर कभी सोचा है कुदरत के संगीत के बारे में? भंवरों के पंख का गुंजन, हवा से लहराते पत्तों का गुंजन, अरे सागर की गहरों का संगीत, लहरों का संगीत, वो भी तो याद कीजिए। एक साथी की ये बात कि कई बार संगीत मन को असीम सुकून दे जाता है। मेरे पापा जो आज डिमेंशिया से ग्रस्त है, उन्हें पुराने हिंदी गीत बेहद पसंद है। जब भी वे रेडियो या टीवी पर ये गीत सुनते हैं तो उनके चेहरे पर एक अनोखी खुशी आ जाती है। उनका सबसे पसंदीदा गाना है जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ये बात इन्होंने लिखी है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि मंजू जी, मैंने तो अपना पूरा जीवन ही विविध भारती पर संगीत सुनते हुए गुजार दिया है। कॉलेज के समय रेडियो पर और नौकरी में कंप्यूटर, और रिटायरमेंट के बाद भी वापस रेडियो पर। कुछ भी हो, संगीत जीवन की एक ऐसी धारा है जिसको मैं छोड़कर नहीं रह सकता। एक साथी ने ये बात लिखी है कि ये बात उन दिनों की है जब मेरी स्वर्गीय माँ बहुत बीमार थी और बिस्तर पर थी। मैं उनके पास बैठा रहता था जब विविध भारती को सुना करते थे। उन पर चलने वाला मधुर संगीत जो माँ की पहली पसंद थी, उन्हें बहुत अच्छा लगता था और उनके चेहरे का वह सुकून देखकर मैं भी कुछ राहत महसूस करता था। सच, संगीत बीमार व्यक्ति के चेहरे पर भी मुस्कान ला देता है। चलिए इस मुस्कान को थोड़ा और हम बड़ा करते हैं। मल्हार फिल्म का गाना बड़े अरमानों से, ये गाना लता जी और मुकेश जी की आवाजें हैं इसमें। रोशन का संगीत है ये तो आपको पता ही है, और गीतकार कौन है ये आपको बताना है।

मल्हार फिल्म का गाना आपने सुना, इंदिवर का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी हमारे लिखते हैं कि गरजते बरसते जब सावन आता है तब बारिश की बूंदें भी एक ताल में बरसती है, जिससे एक अनोखा संगीत पैदा होता है जो प्रकृति हमारे लिए लेकर आती है। ये संगीत हमारे मन के साथ साथ धरती की प्यास भी बुझाता है। इसके प्रभाव से धरती झूमते गाते हुए अपना श्रृंगार करते हुए हरी भरी हो जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे संगीत की रुचि तब से हुई जब हमारे शहर छत्रपति संभाजी नगर में एक बगीचे में बड़ा सा रेडियो लगता था। उस पर श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग में बिना का गीतमाला चल रही थी, तब हम वहां सुनने जाया करते थे और यहीं से संगीत सुनने की आदत हमें लग गई। और एक साथी की ये बात कि खाना न मिले चलेगा पर गीत जरूर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात गीतों के साथ साथ विविध भारती के साथ काम करने में भी उत्साह बना रहता है। संगीत के बिना तो हमारे हाथ चलते ही नहीं है, और संगीत हमारा सबसे प्यारा सा साथी है जो बस हमें खुशी ही देता है, हमसे कुछ नहीं मांगता। और एक साथी ये भी लिखते हैं कि संगीत तो ऐसी विद्या है जो हंसा देती है, रुला भी देती है, यहाँ तक जख्मों को भर भी देती है। 2017 की बात है जब मेरा बचपन का दोस्त शांति यात्रा में चला गया। उसके साथ हमारा अच्छा घरूंबा है। उसके जाने के बाद मैं यूं ही बैठा हुआ था, तभी एक गाना रेडियो पर बजा, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जिसे सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। आज भी उनकी याद, उनकी दोनों बच्चियां मुझसे दूर नहीं है और वही प्रेम है जो बचपन में था। और एक साथी ने ये बात लिखी कि बात तब की है जब मैं अपना ग्रेजुएशन बीएससी कंप्लीट कर चुका था। सगाई और शादी से पहले की बात है। मुझे निर्णय लेना था कि कौन सा करियर चुनूं। कंफ्यूज था, उस दिन का समय था, मैं लेटा हुआ था, रेडियो पर विविध भारती मुंबई पर गाने बज रहे थे, तभी गाइड फिल्म का गीत बजा, आज फिर जीने की तमन्ना है। ये गीत सुनकर मेरे में उमंग सी जागी और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब करना है। और इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखी है। एक साथी की, जब मेरी शादी हुई तो पापा ने मुझे बरसात की रात और ताजमहल फिल्म के गानों की कैसेट ला के दी, तो मैं साथ ले आई और बहुत सुनती थी, और आज भी वो गाने मैंने संभाल कर रखे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ताजमहल फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, साहिल लुधियानवी के बोल।

संगीत एक अंतहीन समंदर है जो कभी लोकगीतों की मिट्टी की खुशबू में महकता है तो कभी सूफी कलामों की रूहानी तान में गूंजता है। हर दिल की धड़कन का अपना एक सुर होता है और यही वजह है कि उदास शामों से लेकर जश्न की रातों तक संगीत हमारे वजूद का हिस्सा बन जाता है। धुनों का ये जादू जब सर चढ़कर बोलता है तो इंसानी जज्बात दीवानगी के हदें पार कर जाते हैं, चैन खो जाता है और बस सुरों के साए में सुकून मिलता है। जब किसी रचना में बांसुरी की सुरीली गूंज और सितार की झनकार गुली हो और उसके बोल सीधे रूह को छूते हों तो वो संगीत सदाबहार बन जाता है। ये एक बात हमारे साथी ने लिखी है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत प्रेमी के लिए संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वो सांस की तरह होता है। जब दुनिया समझ नहीं पाती तब एक राग समझ लेता है। खुशी में सुर ताल नचाते भी हैं और दर्द में वही सुर कंधा बन जाते हैं। नींद न आए तो लोरी बन जाता है और टूट जाए तो दिल को मरहम का भी काम करता है। संगीत प्रेमी के लिए हर सुबह एक नया आलाप और हर रात एक अधूरी बंदिश। वो भीड़ में अकेला होकर भी संगीत के साथ कभी अकेला नहीं पड़ता। शहर में हो या खेत खलिहान में, काम के बीच में हो या फुर्सत के पलों में, कहीं ना कहीं एक तान उसके भीतर बसती रहती है। किसी अपने की याद आए तो पुराना गाना जख्म कुरेद देता है और वही गाना अगले पल जीने की वजह भी बन जाता है। हार के बाद हौसला चाहिए तो संगीत हौसला बनता है और जीत के बाद जश्न चाहिए तो संगीत जश्न बन जाता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बातें आपने लिखी है। और चलिए इसी के साथ एक और खूबसूरत गाना नौबहार, इस फिल्म से लता जी की आवाज़।

संगीत का प्रभाव इतना प्रभावी होता है कि इंसान तो झूमते ही हैं, परंतु रिसर्च में ये देखा गया है कि पेड़ पौधे भी संगीत के कारण झूमते हैं। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत मानव जीवन का अभिन्न अंग है, जो भावना व्यक्त करने, मानसिक तनाव दूर करने और आत्मा को सुकून प्रदान करने वाला सबसे सशक्त माध्यम है, जो सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करता, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला साबित होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है, वो देश की सुरीली धड़कन विविध भारती ही होती है, जिसे सुनते हुए दिल को इतना सुकून मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ये बातें हमारे साथियों ने लिख के भेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साथी की ये बात कि हिंदी सिनेमा में कव्वाली को लोकप्रिय बनाने और इसका शानदार तरीके से फिल्मीकरण करने के लिए महान संगीतकार रोशन लाल नागरथ को कव्वाली का उस्ताद या बादशाह कहा जाता है। उन्होंने बरसात की रात जैसी फिल्मों में अमर कव्वालियों की रचना रची है। एक साथी ने यह बात लिखी है कि सिनेमा में कव्वाली केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि भावनाओं, तड़प और संवाद को बयां करने का एक सशक्त माध्यम रही है। हिंदी फिल्मों में कव्वालियों का गुरु रोशन साहब ना तो कारवां की तलाश है, साहिल लुधियानवी द्वारा लिखित है। रोशन द्वारा रचित यह कव्वाली के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई है। चलिए यही सुनते हैं, बरसात की रात।

ये सुनते हुए हमारे एक साथी ने थोड़ा जोर देकर इस बात को कहा है कि ये कव्वाली पूरी बजने दीजिएगा, बीच में बंद मत कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात जान करके। आप इतने अधिकार के साथ ये बात बोलते हैं, आपका प्यार है विविध भारती के प्रति, इसके लिए आप ऐसा कहते हैं, हमने आपको पूरी ये कव्वाली सुनवा दी है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि जब मैं खाना पकाते समय संगीत सुनती हूँ तब भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है, और कब भोजन तैयार हो जाता है ये भी पता नहीं चलता। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जिंदगी के सफर में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला पाता है, ऐसे में संगीत एक ऐसे दोस्त की तरह आकर हाथ थाम लेता है, जब बिना कुछ पूछे बिना कोई निर्णय लिए बस साथ निभाता है। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ज्यादा अगर मैं पढ़ूंगी तो शायद गाना सुनने का वक्त कम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा विराम देते हुए एक गाना हम सुन लेते हैं। अजी बस शुक्रिया, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज।

एक साथी ने ये बात लिखी है कि ये बताना चाहूंगा कि हम सभी विविध भारती मुंबई के श्रोता बहुत ही खुशनसीब हैं कि संगीत के अनेक विधाओं जैसे कि गजल, कव्वाली, शास्त्रीय संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत और तो और युवाओं के लिए भी नए गीत संगीत के रस का आनंद वर्षों से रोजाना सुबह सवेरे से देर रात तक रेडियो के माध्यम से कर्णप्रिय संगीत का रसपान कर रहे हैं। महान संगीतकार रोशन जी को हम कैसे भूल सकते हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए, दिल ही तो है इस फिल्म का गाना।

का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि गीत और संगीत मेरी अंतरात्मा में बसा हुआ है, आपके सबके मैसेज पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरे ही मन की आवाज़ है, सबके अंदर संगीत का वही स्थान है जो मेरे दिल में बसता है। और एक साथी ने ये बात और लिखी है, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, कौन सी बात पढ़ें कौन सी बात छोड़ दें ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे। पूरा गीत तो नहीं सुनवा पाएंगे, उस गाने की झलक आपको सुनवा देते हैं। नई उम्र की नई फसल, इस फिल्म के गाने की ये झलक।

नई उम्र की नई फसल इस फिल्म के गाने की एक झलक हमने आपको सुनवाई, मोहम्मद रफी की आवाज, नीरज के बोल और एक शानदार संगीत रोशन साहब का। आज हमने उनको याद किया, रोशन के संगीत को हमने याद किया और आपके बहुत सारी बातें जो आपने लिख करके भेजी उन्हें हमने पढ़ने की कोशिश की। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

दोस्तों, इस दुनिया में सभी को इंतजार होता है बारिश का। इंसानों से लेकर जानवरों तक, पेड़ पौधे और सूखी जमीन, और जमीन के अंदर पनपने वाले जीव भी। बारिश के आते ही सभी को राहत मिलती है।

कि खेत खलिहानों और गांवों में बरसात का मौसम खुशियां लेकर ही आता है। शहरों में रहने वाले कभी कभार लगातार होती बारिश से असुविधा महसूस करते हैं। इन मुश्किलों को अनदेखा करके पानी के महत्व को समझना जरूरी है। इसीलिए पानी बचाना जरूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है।

शहरों में रहने वाले लोग पानी का किफायती इस्तेमाल करके अपने आसपास के जल स्रोतों का स्तर बनाए रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अपने आसपास की ऊंची जमीन से या पहाड़ों से बहते पानी को छोटे छोटे बांध बनाकर रोक लें तो भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है, और तब शहर हो या गांव, पानी की समस्या को लेकर किसी की आंख में पानी नहीं होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने होर्मुज जलडमरो मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरो मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरु मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

0: साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फाघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो चि मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुँचा रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए हैं। अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए हैं। और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के पास जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू के एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। ये आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के 2 दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन

0: जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नवजौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना गेटवे ऑफ इंडिया इस फिल्म से है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, रजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत मदन मोहन का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में अब आपको सुनवाते हैं जेलर फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: ये है नौनिहाल फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज में, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना दस्तक फिल्म से मदन मोहन की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत। आप ये गीत सुनिए और मुझे यानी मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन, शुद्ध व पवित्र धूप अगरबत्तियां।
1: सखी सहेली

0: सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मेरा यानी चंचल वर्मा का
1: नम्रा
2: नमस्कार।
1: कैसी हो चंचल?
2: एकदम अच्छी हूँ। और जब हम इस मंच पर आते हैं अपने श्रोताओं से बातचीत करते हैं और हमारे आने से पहले ही बहुत सारे कमेंट्स आ चुके होते हैं, उनके संदेश आ चुके होते हैं, तो उनको पढ़कर हम और भी अच्छे
1: हो जाते हैं। बिल्कुल, हमें उनका इंतजार रहता है। और वैसे भी आजकल

0: जो डिजिटल का समय है उसमें ये हो गया है कि हमें इंतजार रहता है अपने साथियों का, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, अपने चाहने वालों के मैसेजेस का, और हम इंतजार करते रहते हैं।
1: बिल्कुल, ये डिजिटल ऐसा माध्यम है कि जिन्हें हम दूर दराज देख भी नहीं पाते, मिल भी नहीं पाते, उनसे संपर्क स्थापित हो पाता है।
0: हाँ, लेकिन डिजिटल की दुनिया में एक जो माइनस पॉइंट है वो क्या है बताओ?
1: यही कि बहुत दिनों तक कई बार हम किसी की सुध भी नहीं लेते हैं, सिर्फ उनसे बस फोन पर ही हालचाल पूछ रहे हैं, और बहुत उम्मीद से कोई इंसान जो हमसे मिलने बैठा है।
0: इसके अलावा डिजिटल जो दुनिया हमारी हो गई है ना, उसमें हम अपने घर वालों को भी कई बार भूल जाते हैं चंचल।
1: हाँ।
0: और बाहर हमारे दोस्त होते हैं 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, और हम खुश होते हैं, इतराते हैं कि हमारे इतने फेसबुक फ्रेंड्स हैं, इतने हमारे लोग जानकार हैं, लेकिन घर में हमारे ही कुछ लोग उपेक्षित कहीं बैठे होते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जो एक संख्या है 10, 20, 50 हजार की, जिन्हें हम जानते भी नहीं, शायद हमें उनके नाम भी याद नहीं रहते, उनको लेके अगर हम इतरा रहे हैं, और घर के जब हम चार सदस्य बैठे हैं, पता लगा चारों लोग अपने ही मोबाइल में किसी ना किसी से संपर्क में लगे, और वहां आप ही संपर्क नहीं है। जो दूर दराज बैठे हैं उनसे तो हम संपर्क बना रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल हमारे साथ बैठा है उनसे संपर्क बिल्कुल कटा हुआ है।
0: बिल्कुल, वो हमारे अपने ही है, हमारे माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, या अन्य कोई रिश्तेदार जिन्हें हमसे बात करने की इच्छा होती हो और चाहते हो कि हम उनसे घुल मिलकर बात करें, लेकिन वो अपनी डिजिटल दुनिया में व्यस्त रहते हैं।
1: तो हमारे साथ ही इस बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, वो जरूर हमें भेजें, क्योंकि ये चीज रिश्तों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और बात सेहत की हुई है, हमारे शरीर की सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारा खान पान।
0: हाँ, और सेहतमंद, वो भी सेहतमंद खाना होना। खाने को तो हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कुछ लोग दिन भर कहते हैं ना चरना, जिसे हम चरते रहते हैं ना, कभी ये कभी वो कभी ये, लेकिन हम क्या सेहतमंद खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर को वो लग रहा है, हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है वो भोजन, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए।
1: बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें में आज सेहतमंद भोजन को लेकर हम कुछ बात करेंगे। और आज मंगलवार का दिन है, एक उद्यमी महिला यानी कि बिजनेस में जिसने अपना नाम कमाया है, कुछ करके दिखाया है, एक ऐसी महिला की बात होती है। तो आज हम बात करेंगे उपासना टाकू के बारे में।
0: बिल्कुल, और एक और सेगमेंट है हमारा बहुत ही प्यारा जहाँ हम अपने श्रोताओं से ही उनके जवाब मांगते हैं, और ये कि उनका इंतजार होता है,
1: और एक छोटी सी वाक्यांश जो होता है उसमें बहुत बड़ी बात कह दी जाती है, यानी कोई लोकोक्ति या मुहावरा।
0: मुंह में राम, बगल में छुरी।
1: तो बिल्कुल हमारे श्रोता समझ गए कि ये है आज का मुहावरा। हाँ। लेकिन बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्यों ना गीतों का सिलसिला भी शुरू करें और पहला गीत सुन ले।
0: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: तो देखा चंचल कितनी प्यारी बात थी कि सलामे हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो। तो मतलब हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे और हमसे भी कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी दुनिया कहीं और ही होती है। हम डिजिटल दुनिया में व्यस्त होते हैं और अपने आसपास जो हम हमारे बीच प्यार बांटना चाहता है कहीं उसे इग्नोर करते चले जाते हैं।
1: और ये मोबाइल जो है ये एक ऐसी चीज हमारे हाथ में आ गई है जिसमें पूरी दुनिया सिमट कर रह गई है। तो उस दुनिया के संपर्क में तो है लेकिन हमारी असली दुनिया यानी हमारे जिनसे बहुत प्यार करते हैं बस उस दुनिया से हम दूर होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने और उसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल हो गए हैं हमारे रिश्ते भी।
1: तो टेक्नोलॉजी ने जहां एक तरफ मंदाकिनी जी हमें पूरी दुनिया से जोड़ के रखा हुआ है वहीं दूसरी तरफ कुछ करीबी लोगों से दूर भी कर रही है ये टेक्नोलॉजी। जितना हम बाहरी दुनिया से जुड़ते जा रहे हैं उतना ही अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ कटते भी जा रहे हैं। रिश्तेदार हैं, सहकर्मी हैं, दोस्त हैं और उनको मैसेज करके खुश होने के चक्कर में जो सामने बैठा है ना उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जैसा आपने पहले ही बताया। तो डिजिटल होती है जो दुनिया है इसके फायदे अगर हैं तो ये ही नुकसान है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। जब पहले जब हमें अगर हम दूर दराज की बातें करें अपने किसी दोस्त की, रिश्तेदार की या प्रियजन से बात करनी होती थी या हालचाल जानना होता था तो हम चिट्ठी लिखते थे, तार भेजते थे या फिर फोन पर बात किया करते थे या एसटीडी पर जाकर हम जो है वहाँ पर बात किया करते
1: घंटों लंबी लाइन में लगा करते
0: है ना लगे रहते थे कि भैया हमारी बात करा दीजिए ना, हमें बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन अब ये काम केवल एक संदेश के जरिए कर लिया जाता है, मैसेज भेज दिया जाता है और मिलकर बात करना तो अब बहुत दूर की बात हो गई है। अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर या अन्य गैजेट्स को हम हमेशा अपने साथ ही रखना पसंद करते हैं और यहाँ तक कि सोते समय भी हम इसे सिरहाने पर रखकर ही सोते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और जब हम बहुत ही फुर्सत में होते हैं तब परिवार के साथ समय बिताने की बजाय हम ऑनलाइन सर्चिंग में ज्यादा मशरूफ रहते हैं।
1: और मंदाकिनी जी यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है ना कि हम अपने किसी काम में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे जो नजरें हैं या हमारे कान हैं वो मोबाइल पर ही बीच बीच में लगे हुए रहते हैं। और बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं जब काम तो वो रसोई में कर रही हैं लेकिन उस वक्त भी उनका मोबाइल उनके पास में होता है और वहां भी नजरें उनकी मोबाइल पर होती हैं। और सुबह जब सबसे पहले हमारी आंख खुलती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
0: अपना मोबाइल चेक करते हैं किसी का मैसेज आया कि नहीं, मोबाइल इतना चुप चुप क्यों है ना, ऐसा लगता है
1: ऐसे हो गया कि इसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हो गए ऐसा लगने लगता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार पता है क्या होता है चंचल, जब हम अपना फोन घर भूल आते हैं ना, मोबाइल ऑफिस आते वक्त या कहीं जाते तो लगता अरे सारी दुनिया तो हम भूल ही आए।
1: बिल्कुल
0: हमारा मूड ऑफ हो जाता है, ओहो मैं मोबाइल घर भूल आई है ना। तो ये ऐसी स्थिति हो गई है हमारी। और डिजिटल होते जा रहे इन रिश्तों में जो आई कांटेक्ट जैसे किसी से नजर मिलाकर बात करना जैसी स्थितियां जो है कम होती चली जा रही हैं। यानी एक ही कमरे में हम बहुत सारे लोग बैठे होते हैं घर के लेकिन हमारी सबकी नजरें अपने मोबाइल पर होती है या हम किसी तीसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। मोबाइल ने हम सबको ऐसा जकड़ लिया है कि उस पर से नजरें हटाकर सामने वाले की तरफ देखकर हम बात ही नहीं कर पाते हैं। मतलब हम बात तो कर रहे होते हैं लेकिन नजर हमारी अपने मोबाइल पर होती है।
1: बिल्कुल शारीरिक रूप से हम वहाँ मौजूद हैं लेकिन हम उस वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहे होते हैं
0: और हमारा पूरा ध्यान, बच्चे भी कई बार बोलते हैं घर में लेकिन ध्यान हमारा, हाँ बेटा बोलो क्या बात है, चलो पढ़ाई करो बहुत हो गया, ध्यान हमारा मोबाइल पर ही रहता है।
1: तो अब मेरा ध्यान इस तरफ है कि बातचीत को थोड़ा रोक कर एक गीत सुन ले।
0: चलिए

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, निशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
6: हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ और हम बात कर रहे थे डिजिटल रिश्तों के बारे में।
7: हाँ, लेकिन चंचल हमारे एक श्रोता ने बहुत ही प्यारा सा एक संदेश भेजा है। लिखते हैं कि आज फिर आप दोनों सखियों का संगम हो रहा है, जब सुहाने मौसम में इन दिनों मुंबई में चंचल सी हवा बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है।
6: अच्छा?
7: उसी तरह उत्तराखंड में इन दिनों मंदाकिनी नदी भी लबालब पानी से बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है। देखिए कितना अच्छा संगम है।
6: यहाँ हमारे नाम को इन्होंने प्रकृति के साथ जोड़कर जो संगम बनाया है, जो तारीफ की है या जो अपने भाव प्रकट किए हैं, ये हमें बड़े अच्छे लगे।
7: जी, ये तारीफ नहीं है, ये इनकी भावनाएं हैं।
6: हाँ।
7: जो उन्होंने काव्यात्मक तरीके से अपनी बात रखी है ना।
6: और अब बात करते हैं कि डिजिटल रिश्तों के बारे में हमारे श्रोता क्या कहते हैं। तो हमारे श्रोता का कहना है कि मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे जेवो वेश तेवी वार्ता, यानी इन्होंने अपनी जो लोक भाषा है उसमें लिखकर बताया है। इसका मतलब है जो वेश धारण किया हो उनके अनुसार वार्ता यानी कहानी कहनी चाहिए। डिजिटल रिश्तों के लिए भी ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आजकल डिजिटल युग चल रहा है तो उसके हिसाब से हमें भी खुद को ढालना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अब

0: ये आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मोबाइल तकनीक ने मीलों की दूरियां मिटा दी हैं, दुनिया को मुट्ठी में यानी मोबाइल में समा लिया है। इतने बड़े फायदे के साथ इस बात का दुख भी है कि घर में पास बैठे हुए आमने सामने बातचीत का चरण कम होता जा रहा है, जिससे वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव में कमी आ गई।
1: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के समय में तकनीक ने दूरियों को मिटाकर हमें आपस में जोड़ तो दिया है, लेकिन इसने रिश्तों की गहराई और भावनात्मक जुड़ाव को भी काफी हद तक बदल दिया है। डिजिटल माध्यम से बातचीत आसान हुई है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट और सामीप्य धीरे धीरे कम होने लगा है। डिजिटल होते रिश्तों के डिजिटल संचार परिवारों के लिए तो बहुत कारगर नहीं है। हाँ, अलग अलग शहरों या देशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए कारगर हो गए हैं। वीडियो कॉल के जरिए, मैसेजेस के जरिए आप दूर रहकर भी लोगों से जुड़ सकते हैं, दैनिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। पारंपरिक चिट्ठियों की तुलना में डिजिटल मैसेजिंग बहुत तेज है और तेजी से संदेशों के कारण संवाद का तरीका भी बदल गया है। आजकल आप इमोजीज भेजकर, गिफ्ट्स भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से मानसिक थकावट भी हो गई है, चिड़चिड़ापन भी हो गया है। इसलिए हजारों दोस्त हैं हमारे ऑनलाइन, लेकिन वास्तविक दुनिया में हम बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। और एक जहां ये बहुत सारे रिश्तों की बात कर रहे थे, तो अगर आपके व्यावसायिक रिश्ते हैं तो वहां ये जो डिजिटल युग है ये बहुत काम का है, लेकिन परिवार से हमें ये दूर कर रहा है। वहीं एक अन्य संदेश में जो बात लिखी गई है वो कुछ इस तरह से है कि चैटिंग और वीडियो कॉल में आमने सामने बैठने वाली गर्माहट और गहराई गायब हो गई है। लोग अपनों के साथ मिलकर समय बिताने की बजाय फोन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसे फबिंग कहा जाता है। और सोशल मीडिया के परफेक्ट रिश्तों की दुनिया को देखकर लोग अपने वास्तविक जीवन से असंतुष्ट होने लगे हैं। डिजिटल अफेयर और प्राइवेसी, पार्टनर से छुपाकर सोशल मीडिया पर अंतरंग होना, ये विश्वास को भी कमजोर कर रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डिजिटल होते रिश्ते डिजिटल लेनदेन के बाद अब ये भी कॉन्सेप्ट मुझे हजम नहीं हो रहा है। जो रूबरू मुलाकात में आमने सामने बैठकर बात करने का जो मजा है वो डिजिटल में कहां। तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, न कि केवल औपचारिक या आभासी बनाकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम संपर्क बनाए रखने का साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
0: इसीलिए ये सारी बातें हम कर रहे हैं आज। और हमारे एक श्रोता के अन्य संदेश को मैं पढ़कर सुना रही हूँ। आज के डिजिटल युग में रिश्तों की परिभाषा और जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। तकनीक ने हमें मीलों दूर बैठे लोगों से जोड़ दिया, लेकिन पास बैठे लोगों से भावनात्मक दूरियां बढ़ा दी हैं। मतलब ये एक बात बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखी है,
1: और सही लिखी है ना, वो बात एक नहीं है, क्योंकि असली मुद्दा यही है कि हम बहुत दूर दराज के लोगों से बातें करने में मशगूल हो गए हैं और हमारे करीब जो बैठा है उन्हें हम उपेक्षित कर दे रहे हैं, तो ये इसका एक सबसे माइनस पॉइंट।
0: एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, ना केवल औपचारिक या आभासी बनकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम से संपर्क बनाए रखने का एक साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
1: बिल्कुल सही कहा, जैसे कि इस वक्त मैं और चंचल आपस में संवाद कर रहे हैं।
0: और देखिए ना, रिश्तों को डिजिटल बनाना मंदाकिनी जी पूरी तरह से सही भी नहीं है। इसलिए घर में हम कुछ नियम बना सकते हैं ना कि भाई रात्रि का भोजन जब होगा, जब सब अपने अपने कामों से फ्री होकर सब कुछ निपटा कर घर पे आ जाते हैं, तो उस वक्त एक समय बनाइए कि डिनर सब लोग साथ में करेंगे और डिनर के समय मोबाइल कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो और वैसे भी जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम दूर रख सकते हैं, उनके लिए एक समय निर्धारित कर सकते हैं कि आप इस समय ही मोबाइल साथ में लेंगे, क्योंकि जो मोबाइल की अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो बड़ों को, छोटों को, सभी को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो खासतौर पर नुकसानदायक है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और कितने क्राइम जो आजकल हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे या युवा होते बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां क्राइम कर दे रहे हैं, ये सब 24 घंटे नेट की दुनिया में अपने आप को मशगूल रखने के कारण भी है, क्योंकि आप वो सब देखते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। और एक वक्त ये था चंचल, जब शाम की चाय के वक्त या रात के भोजन के समय, जैसा भी आपने कहा, हम सब बैठकर बतियाते थे हमारे पिताजी क्या लाए, हमारी माँ क्या बना रही है, इस पर हमें बकायदा हमारा ध्यान होता था कि आज शाम हमें क्या मिलने वाला है। लेकिन अब हमारा ध्यान सारा जो है मोबाइल पर होता है।
0: तो अभी हमारा ध्यान थोड़ा सा हम गीता पर भी ले आए।
1: हाँ बिल्कुल, ध्यान तो चला गया है, सुन भी लिया जाए गीत।

0: तो बड़ा सुंदर गीत था और इस गीत ने सुरक्षा पंडित की खूबसूरत आवाज भी थी किशोर कुमार के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अब हम अगला सेगमेंट लेते हैं हमारा।
0: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सखी विशेष के अंतर्गत जो एक उद्यमी महिला है उपासना टाकू की, जो कि फिनटेक कंपनी मोबिक्विक की संस्थापक है और मुख्य वित्तीय अधिकारी भी है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और आज हम देख रहे हैं कि फैशन इंडस्ट्री से लेकर तकनीक तक तकरीबन हर इंडस्ट्री में ही महिलाओं ने अपनी जगह बना ली है और देश को वो गौरवान्वित भी कर रही हैं। सफल महिला कारोबारी महिलाओं की लिस्ट में उपासना टाकू का नाम भी बहुत जाना माना नाम है और उपासना उन गिनी चुनी महिला उद्यमियों में से एक हैं जो फिनटेक मार्केट का नेतृत्व करती हैं। वो मोबिक्विक की सह संस्थापक, बोर्ड अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं।
1: और फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, या आसान तरीके से समझें तो डिजिटल भुगतान और मनी ट्रांसफर। ये एक ऐसी तकनीक है जो लोगों और व्यवसायों को डिजिटल रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और उनके प्रबंधन में मदद करती है। इसके तहत मोबाइल एप्स, सॉफ्टवेयर और उन्नत

0: एल्गोरिथम का उपयोग करके पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय कार्यों को सरल और तेज बनाया जाता है।
1: और इसके जरिए स्मार्टफोन से एक पल में पैसे भेजे जा सकते हैं या फिर प्राप्त भी किए जा सकते हैं। डिजिटल ऋण भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और एप्स के माध्यम से कुछ ही मिनटों में हम प्राप्त कर सकते हैं आजकल। और ऐसे एप्स उपयोगकर्ताओं के खर्चों को ट्रैक करने और बजट बनाने में भी मदद करते हैं मंदाकिनी जी। और ब्रोकरेज एप्स आम लोगों को स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी इन सब में आसानी से निवेश करने की सुविधाएं भी देते हैं। ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदना है या कोई क्लेम करना है, यानी कि दावा आपको लेना है, तो उन चीजों के भी निपटारे तुरंत हो जाते हैं माध्यम से।
0: बिल्कुल चंचल। और इस कंपनी मोबिक्विक की नींव जो है उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर डाली थी। उपासना ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और ये इंजीनियरिंग डिग्री उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी। और इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और लाखों महिलाओं के लिए वो आज भी प्रेरणा बनी हुई है।
1: उपासना ने पहली बार अपने पति बिपिन सिंह से 2008 में एक प्ले देखने के दौरान वो मिली थी। फिर 2011 में उनकी शादी हो गई। 2008 में उनकी कंपनी के सह संस्थापक ने प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्सेप्ट विकसित किया जिससे उनके पति विपिन बहुत दुखी थे, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकते थे और उन पर अपने पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी थी। उपासना ने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने और फिर कोई एक नया स्टार्टअप शुरू करने की शुरुआत दी। इस तरह दोनों ने मिलकर 2009 में अपना एक नया व्यवसाय शुरू कर दिया।
0: और अपना खुद का कारोबार शुरू करने से पहले उपासना ने करीब 17 साल से भी ज्यादा समय तक संबंधित क्षेत्रों में काम किया और उन्होंने एक अमेरिकी पेमेंट फर्म के लिए प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम किया और एक प्रतिष्ठित बैंक में भी उन्होंने कई वर्ष तक नौकरी की।
1: ये सारी जानकारी हमारे श्रोता भी हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल समय है एक छोटे से अंतराल का।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देवदर्शन अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: मंदाकिनी जी, अंतराल पूरा हो गया और हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ में और हम बात कर रहे थे उपासना टाकू के बारे में। हमने बता दिया कि किस तरह से उनके व्यवसाय की शुरुआत हुई, तो पहले वो अमेरिका में रहा करती थी लेकिन अपना जो वो कारोबार वो शुरू करना चाहती थी इसके लिए भारत में उनको अवसर दिखाई दिया और 2008 में वो अपना व्यवसाय पूरी तरह से स्थापित करने के लिए भारत आ गई। उपासना ने इस बात को भी अच्छी तरह समझ लिया था कि भारत में अपना व्यवसाय करने के लिए जितनी ज्यादा समस्याएं हैं उतने ही ज्यादा अवसर भी हैं।
1: बिल्कुल, और वो जिस तरह का बिजनेस करना चाहती थी चंचल, भारत उसके लिए सबसे शानदार विकल्प था। और उनके परिवार ने उनके भारत लौटने के फैसले का विरोध किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक बहुत ही जोखिम भरा कदम हो सकता है। तो उपासना के माता पिता उन दिनों अफ्रीका में रहा करते थे और पिता एक कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और माँ एक म्यूजिशियन थी।
0: और उपासना अमेरिका में जो भी नौकरी कर रही थी उसे छोड़कर वो अपने कारोबार के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। जैसे आपने बताया ना कि वो एक बैंक में प्रतिष्ठित बैंक में नौकरी कर रही थी, और यूं अगर देखा जाए तो उपासना एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी इसलिए सब तरह की सुख सुविधाओं को भी वो देख चुकी थी, उनका आनंद ले चुकी थी। उनके पास अपना बड़ा घर, कार, तमाम जो सुविधाएं होती है ना वो सभी चीजें थी। लेकिन भारत वापस लौटकर उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके थे वहां काम करने वाले माइक्रो फाइनेंस एनजीओ के लिए वहां काम करना शुरू किया।
1: हाँ, और वो बताती है खुद कि उनकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष यानी 2022 और 23 की तीसरी तिमाही में लाभ कमाना शुरू कर दिया था और कंपनी के आगामी लक्ष्यों में राजस्व दोगुना करना और अधिक मुनाफा उसमें शामिल भी था, मतलब हासिल करना उसमें शामिल था। फिनटेक इंडस्ट्री में आज उनकी कंपनी एक जाना पहचाना नाम भी बन चुकी है।
0: यानी देखिए ना, संघर्ष कितना किया उन्होंने। 2008-2009 में उन्होंने सोचा, शुरुआत की, और 2022-23 की हम बात कर रहे हैं जब वो एक अच्छी कमाई करने वाली कंपनी और कहते हैं कि नामचीन कंपनी जिसे नाम से दुनिया जाने, वहां उन्होंने

0: तो चंचल बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनवाया और गीतों के साथ साथ हम विभिन्न विषयों पर बातचीत भी कर रहे हैं जो हमारे श्रोताओं को पसंद भी आ रही है। और अब हम आ जाते हैं सेहतमंद भोजन पर।
1: बिल्कुल, एक सेहतमंद रिश्ता भी इसी तरह बनता है ना, जैसे हमारा एक सेहतमंद रिश्ता है हमारे श्रोताओं के साथ में, उनकी पसंद का भी थोड़ा हम ख्याल रखते हैं। कहीं बीच बीच में उनके संदेश होते हैं, कहीं बीच में मनोरंजन के लिए गाने भी होते हैं और फिर थोड़ी सी जानकारी भी होती है।
0: इसी प्रकार हमारा जो ये प्रोग्राम बनता है, कार्यक्रम बनता है, इसी सेहतमंद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और ठीक वैसे ही भोजन भी हमें सेहतमंद भोजन करना चाहिए।
1: और हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हमेशा से हम सुनते आए हैं कि नहाए के बाल और खाए के गाल अलग ही नजर आ जाते हैं। यानी कि कहने के लिए तो बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन इसकी जो

0: मतलब है, मायने हैं, वो बड़े गहरे हैं। तो हमारा खान पान जैसा होता है, हमारे चेहरे पर जो चमक है
1: वो वैसी ही होती है। बिल्कुल सही कहा। और हमारी सेहत एक तरह का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है ये, और इसलिए निवेश जैसा होगा हमें रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। यानी जितना अच्छा या सेहत से भरपूर हमारा खाना होगा, भोजन होगा, हमारी सेहत भी उतनी ही दुरुस्त होगी। और हमारे खाने में जो तमाम जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत भी है, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए।
0: इसीलिए देखिए, हमारे श्रोता का एक बड़ा अच्छा संदेश है। इन्होंने लिखा है कि रात 8 बजे के बाद भूख लगने पर हम अनहेल्दी स्नैक्स खा लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये इस अखबार के माध्यम से लिख रहे हैं कि वहां भी सुझाव इन्होंने पढ़े कि रात के समय भुना हुआ मखाना, मूंग की दाल का सूप, खीरा, मूंगफली चाट जैसे हल्के विकल्प ये बेहतरीन होते हैं। ये पचने में आसान होते हैं और नींद भी इनसे अच्छी आ जाती है। तो रात को सोने से पहले एक कप गुनगुना हल्दी वाला दूध अगर आप लेते हैं तो वो भी पेट को आराम देता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इनका कहना यही है कि अनहेल्दी स्नैक्स को रात के समय थोड़ा सा हम अंधे का अनसुना या अवॉइड जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं।
1: वैसे तो पूरे दिन ही इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि हम अनहेल्दी कुछ भी न खाएं, लेकिन हाँ, अगर आप चटोरे हैं थोड़ा सा, आपको कंट्रोल नहीं है अपने खाने की आदत पर, तो आप कभी कभार दिन भर में कुछ ऐसा खा लें, फिर उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है चंचल।
0: तो चटोरेपन को लेकर एक और संदेश है हमारे एक श्रोता के संदेश में लिखा है कि क्या आप जानते हैं सीमित मात्रा में गोलगप्पे या पानी पूरी खाना भी सेहतमंद फायदेमंद हो सकता है। इसके पानी में इस्तेमाल होने वाला पुदीना, जीरा और हींग, ये सभी जो चीजें हैं छोटी मोटी समस्याओं में और मुंह के छालों में राहत देते हैं, बशर्ते इसे बहुत साफ सफाई से बनाया गया।
1: बिल्कुल, सबसे बड़ी बात उन्होंने अंत में कह दी है, क्योंकि हम बहुत देखते हैं कि जहाँ पानी पूरी खिलाया जाता है ना, वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जो आपको खिला रहा है उसके हाथ साफ है कि नहीं, बनाने के तरीके साफ है कि नहीं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चटोरेपन में खा तो रहे हैं लेकिन उसके परिणाम जब गलत आते हैं तो हमें पछताना भी पड़ता है।
0: और ये जो अभी मौसम चल रहा है, इन दिनों में मक्खियां बहुत हैं, तो मक्खियां जब खाने पर बैठती हैं तो वहां अपने पैरों पर लिए हुए जो गंदगी होती है उसे छोड़ जाती हैं, तो ये हमें बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार हमें अंदाजा नहीं होता, वो ऊपर से देखने में साफ सुथरा भोजन लग रहा है,
1: लेकिन हम कहाँ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, किस मौसम में खा रहे हैं, क्या टाइम है खाने का, ये सभी बातें हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन केवल उबली हुई सब्जियां नहीं बल्कि स्वाद और पोषण का बेहतरीन संतुलन है। अपनी डाइट में हरी भरी सब्जियां, ताजे फल, नट्स और साबुत अनाज आप शामिल करें और कभी आप कई गंभीर बीमारियों से दूर रह सकते हैं और खुद को दिन भर ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। रोजमर्रा के खान पान में छोटे छोटे बदलाव आपकी सेहत को सुधारने में बहुत बड़ा असर डालते हैं। प्लेट में विविधता लाएं, अपनी डाइट में मौसमी फल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन, इसको प्राथमिकता दें। नाश्ते या खाने में पनीर, दालें, अंडे, भीगे हुए चने शामिल करें और मैदे की जगह साबुत अनाज, मैदे से बनी चीजों की बजाय ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स का विकल्प चुनें। और सुबह के समय भीगे हुए बादाम, अखरोट खाना ये बहुत जरूरी है, आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। यदि आप अपनी डाइट में कुछ नया और सेहतमंद शामिल कर लेते हैं तो फिर आप हेल्दी हो जाते हैं।
0: इसी तरह एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि घर में शुद्धता से बनाया गया और शुद्ध भाव से बनाया गया भोजन हमेशा सेहतमंद होता है। मौसमी सब्जियां, मौसमी फल खाने में हमेशा शामिल करने चाहिए। बेमौसम का कोई भी फल या सब्जी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये बात बड़ी अच्छी बताई है उन्होंने, क्योंकि उनको कृत्रिम तरीके से बनाया या पकाया गया है तो वो नुकसान कर सकते हैं। आगे लिखते हैं कि घर में विविधता से बनी हुई दालें, अनाज, चावल, रोटी बनती हैं और शरीर के लिए सारी चीजें बेहतर होती हैं। घर के बने खाने में बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं, जिनमें मखाना भूनकर खा लेना, चना खा लेना, ये सब भी अच्छी चीजें हैं। बाजार की टिक्की, बाजार के समोसे ये नुकसान करेंगे, लेकिन इन्हीं को अगर घर में बनाया जाए तो उतना नुकसान शायद नहीं होगा।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि घर में आप थोड़ा स्वच्छता के साथ कार्यक्रम और सबसे बात ताजा आपको भोजन खाने को मिलता है।
0: एक और बात कि तली हुई चीजें जो हैं बाहर जब हम खाते हैं तो उसी तेल में बार बार उन चीजों को पकाया जा रहा है, कई कई दिन तक उसी तेल में खाना पक रहा है, जबकि घर में भी अगर हम तला हुआ कोई भी व्यंजन बनाते हैं तो ताजा तेल,
1: दोबारा उस तेल का इस्तेमाल करने से बचते हैं, है ना, इस बात का आपको। लेकिन पता है चंचल क्या होता है, हमारी चटोरी जीभ है ना, बाहर ही खाना पसंद करती है और बाहर की उबली हुई चाय जिसे कितनी बार उबाला जाता है, हम खड़े होकर कितने आराम से पीते हैं, जब आपको पता होता है उसके नुकसान कितने हैं। घर में आप अपने हिसाब से चाय को उबाल कर पी सकते हैं ना। एक श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन वो है जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे और हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखे। संतुलित

0: आहार में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और दुग्ध उत्पादन उत्पाद, सूखे मेवे और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होना चाहिए। तली भुनी और अधिक मीठी चीजों के बजाय ताजी और घर के बने भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। नियमित समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिए और सेहतमंद भोजन न केवल शरीर को बल्कि मन को भी प्रसन्न और सक्रिय रखता है।
1: बिल्कुल, इसी तरह से एक और बहुत अच्छा सुंदर संदेश है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है कि सेहतमंद भोजन जो होता है वो हमारी अच्छी सेहत बनाता है। और आगे लिख रही हैं कि फ़ायदा करने वाले जो भी खाने होते हैं उनको आप बना सकते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में खाने को कम टेस्टी नहीं लगेंगे, पहले वो खाना घर पर ही होगा, लेकिन इसमें आप तरीके अपना सकते हैं। यानी कि कोई भी सब्जी बनाने के लिए चीज़ की रोटी बना दें और सैंडविच वगैरह बना लें, इस तरह से पिज़्ज़ा रोटी भी बनती है, घर की जो चीज़ें हैं स्वादिष्ट होती है। तो ये पिज़्ज़ा, हाँ, बर्गर, ये चीज़ें हम घर में,
0: ये जहाँ हमारा ध्यान इन सब की तरफ जाता है और मुझे लग रहा है कि हमारे मुंह में पानी भी आ गया है।
1: और बच्चे इन चीज़ों, हाँ, से बड़े आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत सारी मम्मियाँ बड़ी होशियार होती हैं तो मैदे की जगह आटा इस्तेमाल करती हैं, और जो बाजार में मोमोज बनते हैं ना, वहाँ बिल्कुल जो बची कुची सब्जियां उनसे लाकर, कई उसमें सड़ी गली भी हो सकती हैं, उन सब्जियों से वो मोमोज बनाए जाते हैं। तो आप घर में बिल्कुल ताजी सब्जियों से बनाइए तो वो बच्चों को फायदा भी करेंगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और जो अभी आप पढ़ रही थी संदेश, वो यही कहना चाह रही थी कि आप किसी होटल में जाकर जब उसका आनंद उठाते हैं तो क्यों ना घर में ही वो उपयोग कर लिए जाए, और घर में आप आनंद से खाइए और भरपेट खाइए ना, किसने रोका है आपको।
1: तो भाई अब मुझे भी मत रोकिए, मैं गाना सुनवा रही हूँ और सुन भी रही हूँ, बड़ा अच्छा गीत है,
0: बिल्कुल सुनाइए।

0: तो चंचल, असली प्यार तो वही होता है कि आपको अंत तक सहारा देता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी जो लेकर चलते हैं ना, तो फिर उसके लिए तो हमें उनके उदाहरण देने पड़ जाते हैं कि देखिए यहाँ पर आकर एक मुहावरा आ जाता है, मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: यानी वो सिर्फ अपनेपन का या आपसी प्यार का दिखावा कर रहे होते हैं, जबकि पीठ पीछे वो शत्रुता निभाने वाले लोग होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और
0: वही।
1: ये एक
0: हाँ
1: ऐसी प्रसिद्ध लोकोक्ति या कहावत है, इसका मतलब होता है कि बाहर से बहुत सज्जन, मित्रवत या भोला भाला दिखना, लेकिन मन में कपट और मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना।
0: बिल्कुल सही कहा। तो हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी हिंदी साहित्य का मुहावरा जो हमारी भाषा में खूब प्रयोग किया जाता है। ऊपरी तौर पर मीठी मीठी बातें करना या दोस्ती का ढोंग रखना, लेकिन मन में बैर रखना और नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहना, ये मुहावरा कपटी और पाखंडी लोगों के व्यवहार को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे आजकल सोशल मीडिया पर यही हो रहा है, एक तरफ का आपके लाइक करते हैं लोग और पीठ पीछे जहर भी उगलते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का हर मौका तलाशते रहते हैं। यहाँ इस मुहावरे से जुड़े कुछ मुख्य पहलू भी दिए गए हैं, कपटी या धोखेबाज होना, और कुछ उदाहरण उन्होंने देकर समझाया है।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इसका अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति आपसे ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन आपके अंदर ही अंदर वो नुकसान पहुंचाने की ताकत भी रखता है, आपके लिए मन में, मतलब आपके लिए मन में द्वेष रखता है, और यही इस मुहावरे का अर्थ है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो ऊपर से हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मन में हमारे लिए उनके द्वेष होता है।
1: एक अन्य संदेश में बात कही गई है कि ये कहावत समाज में बढ़ते खोखलेपन को दर्शाती है। लोग अपनी असली पहचान और इरादों को छुपाने के लिए धर्म, मीठी भाषा, झूठी हमदर्दी, सभी तरह के मुखौटे पहन लेते हैं। जब समाज में दिखावा ही सफलता की चाबी बन जाता है, तो लोग अंदर से जहरीले और बाहर से अमृत जैसा दिखने का नाटक करने लगते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं चंचल, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते, और जब
1: हाँ
0: पहचानते हैं तब तक बहुत देर भी हो जाती है
1: जी,
0: कई बार, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी इस प्रसिद्ध लोकोक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब सभी जानते हैं। मीठी मीठी बातें करके मित्रवत व्यवहार करना, लेकिन मन या दिल में शत्रुता रखते हुए नुकसान पहुंचाना, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उनकी मीठी मीठी बातों से बचना जरा दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
1: क्या बात है। और ऐसे बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में लिखा है कि कपटी या धोखेबाज होना, यही इस मुहावरे का अर्थ है, लेकिन ये ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है जो बाहर से मीठा और बड़ा मित्र होने का व्यवहार करते हैं, लेकिन मन में बैर, जलन या नुकसान पहुंचाने की योजना वो रखते हैं। और अंग्रेजी में इस कहावत को क्या कहा जाता है, ये भी इन्होंने हमें लिखकर भेजा है।
0: अच्छा, वही एक श्रोता लिखते हैं कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का मौका तलाशते रहते हैं। और यहाँ कुछ उन्होंने इसके बारे में बताया भी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रयोग भी किया, जैसे हम अपने प्रश्न पत्र में होता था ना,
1: हाँ,
0: कि हम कॉपी में
1: उदाहरण देकर समझाइए,
0: उदाहरण देके समझाते थे, ठीक उन्होंने वैसे ही उदाहरण भी देते हुए हमें समझाया है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस कहावत के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं।
1: तो अब एक गीत सुन लिया जाए और चलते चलते सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गाना।
0: बिल्कुल।

0: तो हम उम्मीद रखते हैं कि अब जो हमारे श्रोता है वो अपना भोजन भी सेहतमंद लेंगे और उनके जो रिश्ते हैं उन्हें भी सेहतमंद बनाएंगे।
1: हाँ, यानी
0: कि डिजिटल युग से जुड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी सीमा क्या है इसको भी वो समझेंगे।
1: हाँ बिल्कुल, हर एक चीज की जो सीमा रेखा है वो हमें खुद ही तय करनी होती है चंचल। जैसे अभी इस वक्त हमें क्या तय करना है
0: कि हमारा समय क्योंकि समाप्त हो रहा है हमें लेने

0: ये इजाजत।
1: हाँ, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
0: चंचल वर्मा को इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने सुनी बातचीत अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पत्रिकर। आज इस बातचीत का दूसरा भाग सुना जाए।
1: है अपना दिल तो आवारा, मगर ये आपकी आवारगी जो फिल्म लाइन में शुरू है, अभिनय की दुनिया में बसर कर रहे हैं, इसमें एक फिल्म आई थी 2020 में, स्टेट ऑफ सीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक बड़ी माकूल फिल्म मानी जाती है, बहुत अच्छी फिल्म ये बनी थी। इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए सारे नाम जो है वो विदेश के हैं।
2: हाँ, ये कॉन्टिलो पिक्चर्स ने प्रोड्यूस की थी
1: जी,
2: और इसमें मैथ्यू लिटमोर ये डायरेक्टर थे जो कि हॉलीवुड से थे, रिचर्ड हेंकल ये डीओपी थे, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कैमरामैन
1: जी,
2: ये भी हॉलीवुड से थे, और एंटोन लियोन ये एसोसिएट डायरेक्टर, ये तीनों की टीम वहां से थी।
1: अच्छा।
2: और उनके साथ इनके कुछ एसोसिएट्स भी हॉलीवुड से आए। हालांकि मैट्रिक्स नाम की एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी शायद वैन डैम की, वो उसके डीओपी भी रह चुके हैं रिचर्ड हेंकल, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए
1: जी जी।
2: तो अचानक एक दिन मैं नागपुर में ही था उस दौरान, 2019 की बात है शायद, और मुझे कॉल आया कि यार एक ऐसा ऐसा कैरेक्टर है
1: जी,
2: बहुत खूबसूरत डीएसपी का कैरेक्टर है। मैंने बोला यार मैं पुलिस वाले का काम मत बुला यार प्लीज। ही सेड कि यार भाई तू सुन तो ले कैरेक्टर क्या है। मैंने ठीक है, उसने मुझे बताया कैरेक्टर, एक्सप्लेन किया। डीएसपी सूर्यवर्धन शुक्ला करके एक कैरेक्टर मुझे दिया गया जो कि राजवर्धन सिन्हा साहब के रियल कैरेक्टर पे जुड़ा हुआ था
1: जी,
2: जो कि 26/11 अटैक हुआ था उस पे।
1: अच्छा।
2: विश्वास नागरे पाटिल सर थे, उन्हीं का भी एक कैरेक्टर था जो दूसरा मेरे साथ में ऑफिसर थे डीएसपी, वो प्ले कर रहे थे। तो ये सब ब्रीफ किया और मुझे अच्छा लगा, ठीक है। मैं नागपुर से मैं जब वापस आया एक दो दिन में, उसके बाद

0: गया उनके प्रोडक्शन हाउस में, मैंने ऑडिशन उनको पहले ही ऑनलाइन ही भेज दिया था.
1: जी
0: दे लाइक इट, दे शॉर्टलिस्टेड. कमर्शियल की जो भी बातें थी वो हुई. एंड आई जॉइंड द थिंग. मैं उस दिन शूट करने के लिए एप्पल स्टूडियो जो नायगांव
1: जी
0: जाके वहां पे मैं गया. हालांकि मुझे इतने बड़े प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं था. मैंने सोचा कि इट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट वेब सीरीज, लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि ये 26/11 पे बनने वाली एक बहुत ही बड़ी वेब सीरीज है, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट बजट पे भी. और इसके हॉलीवुड के, मैं आई एम नॉट सेइंग कि हॉलीवुड मेकर्स है तो आई एम क्रेजी अबाउट इट, बट उनका टेकिंग बड़ा अच्छा था.
1: हाँ,
0: उनका ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा था.
1: यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था कि हॉलीवुड का अपना एक तरीका है काम करने.
0: हाँ, उनका एक अलग तरीका है.
1: तो वो फर्क आपने क्या महसूस किया इसमें?
0: फर्क ये था कि उनके लिए यहाँ पे कोई बड़ा एक्टर छोटा एक्टर नहीं था.
1: अच्छा.
0: जैसे मैं 2019 के दौरान अगर उनके साथ शूट कर रहा था तो मेरा कम एक्सपोजर था. वेयरएज तीन फेसेस थे हमारे यहाँ पे, अच्छे आर्टिस्ट हैं. अर्जुन बाजवा जी हैं, विवेक दहिया है, अर्जुन बिजलानी है
1: जी.
0: काफी अच्छी बातचीत है उनके साथ भी. ये तीन पोस्टर फेसेस भी थे, एनएसजी कमांडो प्ले कर रहे थे. बट उन्होंने कहीं भी ऐसा कि उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें कम इंपॉर्टेंस ऐसा नहीं दिया. उनके लिए सब सेम थे.
1: सब सेम.
0: तो उनका ट्रीटमेंट वो बताते थे कैसा करना है. वो कन्वे करते थे शॉट के पहले.
1: अच्छा.
0: एंड देन वो ट्रीटमेंट के साथ बैक टू बैक टेक्स बहुत ज्यादा लेते थे. मतलब एक ही सीन हमारा, हमने 15-15, 20-20 बार शूट किया बहुत बार.
1: जी, जी.
0: लेकिन उनका ये था कि आप करके दिखाओ सर आपको क्या सही लग रहा है.
1: ओ, अच्छा.
0: हाँ,
1: एक कलाकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में आप क्या सोचते हैं इस रोल के बारे में? हाँ, क्या बहुत बड़ी बात है.
0: बहुत बड़ी बात है.
1: जी जी जी.
0: वो बड़ा मुझे अच्छा लगा. और हालांकि वो मुझ में पहले से है भी. मैं सोचता हूँ कि जैसे मैंने कबीर सिंह की, जैसे मैंने गांधी गोडसे की
1: जी,
0: या फिर मैंने जो भी फिल्में की, अगर वो टेक मुझे कुछ लगा है
1: हाँ,
0: तो मैं डायरेक्टर को जाके बोल के आता हूँ कि सर आई फील इफ आई डू दिस. तो ये एक छोटा सा किस्सा हुआ था संदीप सर के साथ, संदीप रेड्डी सर के साथ
1: जी.
0: तो मैंने बोला कि एक जो सीन है वो मिडवे चालू होता है, हाफ सीन हो चुका है, हाफ सीन चालू हो रहा है.
1: अच्छा.
0: कि एवरीथिंग इज एट स्टेक. वो बोलता है कि एक दिन पहले उसने दारू पी के ऑपरेशन किया है, शराब पी के ऑपरेशन किया. ये अभी मैं अभी कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, आपको गवाही देनी पड़ेगी, स्टाफ को बोलता है अपने
1: जी,
0: डीन ऑफ द हॉस्पिटल
1: जी.
0: अब मुझे लग रहा था ना वो वहां से जो चालू हो रही है लाइन, कि अब मुझे उस पर प्रेशर भी देना था. एवरीथिंग इज एट स्टेक. अब एवरीथिंग इज एट स्टेक पे वो मैं प्रेशर नहीं दे पा रहा हूं.
1: अच्छा.
0: मैंने सोचा कि एक वर्ड को डालना चाहिए. तो मुझे लगा ब्लडी इज द वर्ड. तो मैंने वो बोल के देखा सर, बड़ी एवरीथिंग इज एट स्टेक.
1: अच्छा.
0: जो मुझे यहाँ पे अभी लगा, तो वहां पे वो फील आया. मैंने बोला ये करता हूँ. तो मैंने एसोसिएट डायरेक्टर को बोला, वो बोले कि नहीं नहीं ब्लडी यूज नहीं कर पाएंगे. मैंने बोला सर नहीं यूज कर पाएंगे तो सर को एक बार बोल के देखो ना. नहीं नहीं यार वो गुस्सा हो जाएंगे. लाइक कि ठीक है छोड़ यार. मैंने वो आए डायरेक्शन के टाइम में तो आए. मैंने बोला सर एक पॉइंट है. बोले हाँ बोलो. मैं ये ऐसा ऐसा बोलने की मेरी इच्छा है अगर आपको सही लगता है. उन्होंने बोल के देखा. एक सही डायरेक्टर जो है वो उसकी फिल्म को बहुत अच्छे से जानता है.
1: जी जी.
0: इज द कैप्टन ऑफ द शिप.
1: बिल्कुल.
0: तो उन्होंने बोल के देखा दो बार. बड़ी बोला गुड गुड डू इट एंड इट इज देयर इन द फिल्म.
1: यस यस.
0: तो ये एक चीज है जो आर्टिस्ट को बोलनी चाहिए. आर्टिस्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने जाके रख दी तो ऐसी रहे. आर्टिस्ट एक कलाकार है, एक खुद सोचने वाला इंसान है.
1: और वो भी अपने रोल के बारे में सोच रहा है.
0: सोच रहा है तो अच्छी बात है.
1: जी जी जी.
0: तो अच्छा मैं इंसिस्ट नहीं करता, मैं एक बार बोल के देखता हूँ.
1: बिल्कुल.
0: क्योंकि उन्हें अच्छा लगा तो रखे, नहीं लगा तो नहीं रखे. मैं उसको ज्यादती तौर पे नहीं लेता हूँ.
1: अभिनेता और निर्देशक के बीच में ये एक संवाद तो बहुत जरूरी है.
0: बहुत जरूरी है. सेम थिंग राजकुमार संतोषी जी के साथ भी वही हुआ.
1: जी.
0: हम लोग गांधी जी बैठे हुए हैं और डीएसपी राणा उनको आके बोलते हैं कि महात्मा जी ये जो आपके प्रार्थना स्थल है वहां पे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी.
1: अच्छा.
0: और डीएसपी राणा जो है उनका थोड़ा चाहने वाला है. तो बार बार इंसिस्ट करता है कि महात्मा जी आप सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता. ऐसा करते करते एक लास्ट में वो फिर से महात्मा जी बोलता है कि महात्मा जी लेकिन वो बोलते हैं बस प्रार्थना स्थल पे किसी की भी चेकिंग नहीं होगी. और वो जाने को बोलते हैं.
1: अच्छा.
0: तो इसमें मुझे लगा कि जब ये पहले इसने इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है महात्मा जी, तो महात्मा जी हम चाहते हैं कि आपके इसमें प्रार्थना स्थल पे वो रखा जाए सिक्योरिटी. वो नहीं बोलते हैं. और ये फिर से वो बोलते हैं कि कड़कड़ी सी विनती कर दो है कि. तो उस वक्त मुझे लगा कि इसमें बापू बोलना चाहिए.
1: हाँ.
0: थोड़ा सा इमोशनल
1: है वो महात्मा बोल रहा है.
0: हाँ. अब तक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है.
1: बिल्कुल.
0: लेकिन अभी बहुत ही क्लोजली बोलते अरे करना यार काइंड ऑफ. तो लेकिन बापू ऐसा मुझे लगा. अब फिर से मैंने एक वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर था उसको बोला. उसमें नहीं नहीं प्रोटोकॉल ही हो जाएगा वो. हाँ. थोड़ी

0: मैंने बोला भाई ये तो एक तो फिक्शन है, ठीक है, ये कोई हुआ है ऐसी बात नहीं है, तो फिक्शन है। और हम लोग उस जोन में जा रहे हैं कि जहां पे ये आदमी इमोशनल होके उनकी बहुत ज्यादा चिंता है इसलिए बोल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बापू पूरा नेशन उनको बापू बोलता था, व्हाई नॉट। उसने नहीं बोल दिया। मैंने राजजी को बोला, सेट पे आए वो जब सीन करना था, हाँ हाँ चलो चलो। मैंने बोला राजजी ये, हाँ बोलो। मैंने सर ये ऐसा ऐसा है बापू। कैसे बोलोगे? मैं बोला ये ऐसा ऐसा और फिर मैं ये ऐसा। हाँ बहुत बढ़िया, ही लाइक इट। सो मेरा यही कहना है कि एक आर्टिस्ट के तौर पे हमने उसमें जान डालने की कोशिश करनी चाहिए, वही एक एडिशनल चीज है जो आप दे सकते हो। So this is what how it happens.
1: क्या बात है।
0: तो स्टेट ऑफ सीज का भी वैसा ही रहा।
1: हाँ, हाँ.
0: कि मैं जैसे ही वहां गया तो वो चीजें सीखने को मिली उन लोगों के थ्रू। वो पूछते थे कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, तो चीजें होती गई। कोइंसिडेंटली वहां पे जो शिरके नाम से कैरेक्टर था, जो विश्वास जी का कैरेक्टर था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त विक्रम गायकवाड़ ही प्ले कर रहा था।
1: अच्छा।
0: तो विक्रम मराठी के

0: बापू कैसे बोलोगे? मैं बोला ये ऐसा ऐसा और फिर मैं ये ऐसा. हाँ बहुत बढ़िया. ही लाइक इट. सो मेरा यही कहना है कि एक आर्टिस्ट के तौर पे हमने उसमें जान डालने की कोशिश करनी चाहिए. वही एक एडिशनल चीज है जो आप दे सकते हो. So this is what how it happens.
1: क्या बात है.
0: तो स्टेट ऑफ सीच का भी वैसा ही रहा.
1: हाँ, हाँ.
0: कि मैं जैसे वहां गया तो वो चीजें सीखने को मिली उन लोगों के थ्रू. वो पूछते थे कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, तो चीजें होती गई. कोइंसिडेंटली वहां पे जो शिरके नाम से कैरेक्टर था, जो विश्वास जी का कैरेक्टर था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त विक्रम गायकवाड़ ही प्ले कर रहा था.
1: अच्छा.
0: तो विक्रम मराठी का काफी कैरेक्टर्स करता है.
1: बड़ा नाम है
0: शोज करता है. हम लोगों ने साथ में फोर इडियट्स जो की थी, हमने साथ में पहली फिल्म
1: थी. अच्छा.
0: उसने कंटिन्यू किया, उसके बाद उसको मराठी शोज भी मिले, फिल्में मिली. मैं वापस चला गया नागपुर और वापस आया तो 4 साल बाद मैंने मेरा सफर हिंदी से चालू किया.
1: जी
0: बोले हम लोग अच्छे दोस्त है. ओवरऑल स्टेट ऑफ सीज एक अपने आप में बहुत सीखने लायक और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बना.
1: जी
0: हालांकि लॉकडाउन के चलते उसे शायद जहां तक वो जाना चाहिए उतना एक्सपोजर, उतने व्यूअर्स नहीं मिले.
1: हाँ.
0: बट आज भी मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो बोलता हूं कि वो जरूर देखिए. आपको 4.5 घंटे का होगा. बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स उसमें दिए गए
1: जी
0: कि कैसे कैसे हुआ होगा. मैं रिसेंट फिल्म मैंने एक मैडॉक की अभी की शूट, जो कि निकम नाम की एक फिल्म आ रही है, उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया जो कि उसी से रिलेटेड है.
1: अच्छा.
0: वो भी बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था. उसमें भी डिटेलिंग छोटे छोटे दिए गए.
1: आपने बंबई में फिल्मों और वेब सीरीज के साथ साथ कुछ रंगमंच पर भी काम किया है, तो हम उसकी बात करेंगे. मगर यहाँ एक गुंजाइश एक गीत की है. कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: ये कभी कभी मैं जिंदगी के बारे में जब सोचता हूँ और बड़े शांत कभी जोन में, मैं बड़ा ही निसर्ग प्रेमी इंसान हूँ. मैं हाल ही में गोवा गया था तो मैं वहां पे घंटों बीच पे बैठा करता था अकेले. गया तो फैमिली के साथ था, लेकिन जब भी टाइम मिलता मैं अकेले बीच पे बैठ जाता. और उस वक्त वो गाना मेरे जहन में आता है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी.
1: आइए सुनते हैं.
0: जी सर.
2: दो

0: कहानी दो लफ्जों की नहीं रह जाती जब एक मुकाम वो हासिल कर लेता है। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आपने थिएटर में भी काम किया है, तो एक वो दौर था जब बचपन में आपने कॉलेज के जमाने तक नागपुर में थिएटर किया था, और अब मुंबई में आके यहाँ थिएटर अलग ही है।
1: बहुत
0: मराठी में तो प्रोफेशनल थिएटर बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है, प्रगति की मार्ग पर है। हिंदी का एक अपना मुकाम है थिएटर का, आपका अनुभव कैसा रहा हिंदी में थिएटर करते हुए यहाँ पर?
1: बहुत खूबसूरत, मतलब मराठी, मैं मराठी होने के बावजूद मराठी में मैंने थिएटर यहाँ पे आने के बाद तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा ग्रुप जो डेवलप हुआ वो हिंदी का हुआ
0: जी।
1: तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था सुनील उपाध्याय
0: जी जी,
1: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। रंजीत सर एक अपने आप में, मैंने जैसे कहा कि बहुत सीनियर पर्सनालिटी है, तो कुंदन रॉय और सुनील उपाध्याय मेरे दोस्त हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे बताया कि हम लोग नाटक कर रहे हैं चेखव की दुनिया।
0: अच्छा,
1: आंतोन चेखव जो रशियन लेखक थे,
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने 700 के करीब कुछ ड्रामास लिखे हैं, और उसमें बहुत सारे जो नाटक है वो रंजीत सर ने अनुवादित किए हिंदी में। तो वो सर का नाटक था, तो मुझे बुलाया गया रीडिंग में, और मैंने रीडिंग शुरुआत की रंजीत सर के यहाँ। हम लोग सर्कल बना के बैठते थे, रंजीत सर एक चेयर पर बैठते थे, तो फिर वो एक एक बंदे से जो है पेज का वो शुरुआत पढ़वाते थे। मैंने एक वो देखा रंजीत सर के रीडिंग में, डेढ़ पेज के ऊपर जाना ही नहीं होता है।
0: अच्छा,
1: क्योंकि हर एक से एक एक चीज पढ़ने को बोलते हैं, और उसको हर एक लहजे में, हर एक शब्द में, हर एक मूड में करेक्ट करते हैं।
0: अच्छा,
1: ही कीप वर्किंग ऑन यू फॉर मेनी टाइम्स।
0: ओके,
1: अगर कोई चीज एक शब्द बोला है उसमें कोई शब्द अक्षर है, वो जी, एक छोटा सा जैसे कहीं नुक्ता लगाना है या कहीं कुछ प्रेशर देके बात करनी है, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो बार बार आप पे काम करेंगे। अगर उनको दिखता है कि आप में कैपेबिलिटी है तो दे ही विल वर्क ऑन यू। एक लिमिट के बाद में फिर शायद छोड़ दें कि नहीं हो पा रहा है तो किसी दूसरे को दिया जाए। तो ये उनके साथ मैंने किया है, ये सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला कि एक एक छोटे छोटे वर्ड पे, एक एक छोटे छोटे अक्षर पे कितना प्रेशर दिया जाना चाहिए, जैसे कभी कम या कभी ज्यादा। तो ये ऐसा नहीं, कभी कम या कभी ज्यादा, तो ज्यादा को बोलते हुए आप ज्यादा है,
0: उस पर ज्यादा जोर दिया,
1: ज्यादा जोर दिया जाता है, तो तभी वो ज्यादा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं उनसे सीखा। और थिएटर में हम लोगों ने जहां जहां परफॉर्म किया, अपने आप में एक हिंदी जो आप करते हो, हिंदी मराठी बातें एक ही है, ऐसा नहीं परफॉर्म ही करता है आर्टिस्ट, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज में जब आप काम करते हो तो आपको एक सिर्फ रीजनल लोग नहीं देखते, आपको पूरी इंडिया से लोग अलग अलग जगह से देखने आते हैं, उनकी सबकी एक अलग अलग वो होती है।
0: जी, जी।
1: कहीं कोई पंच होता है तो एक पर्टिकुलर जगह से ही आपको एक लाफ्टर मिलता है, कहीं कुछ होता है, वो सीखने को मिलता है। जैसे रंजीत सर भी कहते थे कि मराठी में इसे बहुत खूबसूरत वर्ड है प्रयोग।
0: जी, हर नाटक का जो शो है उसे प्रयोग कहा जाता है,
1: एक्सपेरिमेंट,
0: एक्सपेरिमेंट,
1: क्योंकि आपको लगेगा इस बार ये करके देखता हूँ
0: जी,
1: दूसरी बार दूसरा कुछ करके देखो,
0: बिल्कुल,
1: जो कि टेलीविजन में, फिल्म्स में पॉसिबल नहीं है।
0: बिल्कुल, इसी से जुड़ा एक सवाल अभी मन में आ रहा था कि अक्सर कलाकार ये कहते हैं कि अभिनय तो हम करते हैं मगर जो मजा नाटक यानी रंगमंच पर अभिनय करने का है वो किसी और मीडियम में
1: नहीं आएगा। सही बोला आपने, अपना अपना मजा है,
0: हाँ,
1: इसमें भी मजा है, लेकिन जो थिएटर में मजा है,
0: हाँ,
1: लाइव परफॉर्मेंस वो चीज जो है वो आपको एक गूज़बम्प दे जाती है।
0: जी जी जी, और उसका जो भी रिएक्शन आना है वो सब उसी वक्त
1: तुरंत आना, यू फील सो गुड कि जो मैंने किया उसका किस लेवल। अच्छा, एक कलाकार उसके लेवल भी पहचान सकता है कि कहीं पे कम आया, कहीं पे ज्यादा आया
0: जी,
1: कहीं पे बहुत ज्यादा आया
0: जी।
1: तो ये चीज जो है, जो लाइव परफॉर्मेंस है उसमें बहुत बहुत फर्क पड़ता है।
0: हाँ।
1: और मैं एंजॉय करता हूँ डेफिनेटली। और आप 15 दिन महीना भर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, लंबे लंबे 6-6 10-10 15-15 लाइनें डायलॉग्स हैं या फिर पेजेस आप याद कर रहे हो, हालांकि हर एक कैरेक्टर को पूरा का पूरा नाटक ही ध्यान में हो जाता है एक टाइम में। महीने भर की प्रैक्टिस के बाद में वो जो आपका बेबी है जो आपको उधर डिलीवर करने को मिल रहा है, वो आपको जो मजा देता है वो अलग ही है। मतलब उसका कहीं भी कंपैरिजन कहीं और किया नहीं जा सकता।
0: बिल्कुल,
1: तो दैट मेक्स अ सेंस। और वो जो एक बार हो गया वो तो फिर
0: जी जी। अपनी बातों में आपने अपने कुछ लिखने का भी जिक्र किया था कि कुछ लिखा है आपने, और आप राजकुमार संतोषी साहब से जब मिलने गए और वो घर पे नहीं थे तो उनके सेट आउट में आप जो है अपनी कल्पना में डूब गए थे और आप इमेजिन कर रहे थे कि ऐसा सीन होगा। तो मैं ये कह रहा था कि लेखक बनने की कोई राह कभी बनी नहीं, या निर्देशक

0: खोना आप चाहते थे?
1: मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि
0: हाँ
1: लॉकडाउन के दौरान
0: हाँ
1: मैं जब नागपुर में था
0: जी
1: और वहां पे थोड़ी बहुत एक्सेस पॉसिबल थी क्योंकि छोटा शहर है, तो आप कहीं जा सकते थे। तो वहां मैं रामटेक गया। रामटेक में मेरे बहुत अजीज दोस्त थे, अमोल खन थे
0: जी,
1: उनका एक एडवेंचर विलेज है,
0: हाँ
1: वो भी खाली था क्योंकि लोग तो आ नहीं सकते थे।
0: जी
1: तो मैं रिक्वेस्ट करके वहां चला गया। वहां पे खाली इसमें नेचर के साथ
0: हाँ
1: मैं बैठा रहता था, एक कॉपी और पेन लिए।
0: अच्छा
1: और वहां मुझे एक पर्टिकुलर कहानी, एक रियल इंसिडेंट से प्रेरित होके लिखने की इच्छा हुई और मैंने वो वहां पे लिखी। 5-6 दिन में वहां पे था तो मैं लिख रहा था दिन रात।
0: अच्छा
1: फिर मैं वापस आया, नागपुर में भी रुका, तो वहां भी मैं वो कहानी को डेवलप करता था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अमन कबीर, वो भी नागपुर से, उसके साथ मैंने वो डेवलप की कहानी।
0: अच्छा
1: और एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कैसे प्रेरित करता है, थोड़ा सा डार्क कॉमेडी भी है
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: लाइट कॉमेडी
0: तो ये कहानी मंच पर आ रही है या पर्दे पर?
1: हम चाहते हैं उसे पर्दे पे लाना।
0: हाँ
1: हमारी बातचीत भी हुई काफी कुछ लोगों के साथ,
0: जी
1: लेकिन शायद एक फाइनेंसर या एक प्रोड्यूसर की और जरूरत है
0: जी जी
1: जो शायद उस और समय लगे, बट वी वुड लाइक टू डू दैट। तो वो प्रोजेक्ट एक जरूर है, IPC 324, ये उसका हमने टाइटल दिया था,
0: अच्छा
1: IPC 324। और वो जरूर बगल में, पर मैंने साथ ही साथ एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की यहाँ पे
0: जी
1: जो कि YouTube पे अवेलेबल है,
0: हाँ
1: जिसका नाम है द लास्ट नाइट विथ हर। वो मैंने एक मेरे दोस्त के साथ फिल्म बनाई, 18 मिनट की शॉर्ट फिल्म है,
0: जी जी
1: एक बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ बनाई हुई। और फिर मैंने एक गाना वीडियो एल्बम भी मैंने डायरेक्ट किया जिसका नाम है पिया की दासी।
0: ओह
1: या
0: क्या बात है।
1: तो मैं आपको गाना दूंगा अगर आप यहाँ पे भी कर पाए। सूफी सॉन्ग है
0: जी
1: और वो रिलीज हुआ है कुछ 9 से 10 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग, जैसे सारे गम्मा या
0: अच्छा
1: जी म्यूजिक टाइप के, तो वहां पे वो रिलीज हुआ है। तो वो हमने किया, वो मेरा एक दोस्त है राजीव वर्मा जिसने लिखा हुआ था, कंपोज भी उसने किया,
0: जी जी
1: बड़े खूबसूरत तरीके से हमने उसको हिल स्टेशन पे शूट भी किया। हालांकि
0: चलिए इसी गीत की झलक हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
1: बिल्कुल सर, थैंक यू। इसका नाम है, शीर्षक है पिया की दासी।
0: जी आइए सुनते हैं।

0: आई थी, मिसेस सीरियल किलर
1: जी,
0: हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। वो कैसे प्रोजेक्ट आप तक आया और कैसा रहा वो सारा अनुभव?
1: वो प्रोजेक्ट भी मुझे ऐसी एक लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आया।
0: अच्छा,
1: मिसेस सीरियल किलर, जिसमें हमारे देश के बहुत ही लीडिंग और बहुत ही सराहे हुए मनोज वाजपेयी साहब कैरेक्टर कर रहे थे, और मुझे उसमें एक सिक्योरिटी इंचार्ज की भूमिका दी गई।
0: अच्छा,
1: छोटा सा किरदार था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक, जैसे ऑडिशन भी हमें देना चाहिए, वैसे हर एक छोटा किरदार भी आपको कहीं ना कहीं आगे लीड दे सकता है।
0: जी,
1: जब
0: जी।
1: तक जैसे मैंने एक साथ ही में अभी इसकी बात निकली एक छोटे किरदार से, तो हम लोग रुद्रा नाम की एक सीरीज आई थी जिसे डायरेक्ट कर रहे थे राजेश मापुस्कर साहब।
0: अच्छा,
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे प्रतिभावान दिग्दर्शक है
0: जी।
1: रुद्रा में लीड थे अजय देवगन साहब, तो वो कैरेक्टर मुझे आया। हालांकि मैंने बोला कि नहीं यार, एक दिन का छोटा सा कैरेक्टर नहीं करता हूँ। फिर बहुत बार बात हुई, उन्होंने कहा कि यार वो डायरेक्टर सर ने बोला कि आपसे ही कराएं।
0: अच्छा,
1: उनको अच्छा लगा और उनको थोड़ी टॉवरिंग पर्सनालिटी चाहिए अजय देवगन साहब के सामने। मैंने बोला अजय देवगन साहब को के सामने कौन टॉवरिंग दिखेगा? नहीं, आपकी हाइट की वजह से आप हो जाओगे। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा कि वैसे भी मैं घर पे बैठने वाला हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे पास काम था नहीं।
0: अच्छा,
1: तो मैं एटलीस्ट घर पे अगर कोई ऑडिशन दूं, उससे बेटर मैं वहां पे जाकर ऑडिशन दे दूं।
0: बिल्कुल,
1: मतलब मैं परफॉर्म कर लूं, लोग कहीं ना कहीं तो देखेंगे।
0: बिल्कुल,
1: थिंग्स हैपन दैट वे ओनली। आई वेंट देयर, दे लाइक माय वर्क। हालांकि बातचीत हमेशा होती है मेरी, बट शायद उनके जहन में कोई ऐसा कैरेक्टर आया इन फ्यूचर जो मुझे वो रिकमेंड करते, एटलीस्ट उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है। सेम वे मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया था इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि रोहित शेट्टी सर का था।
0: जी जी जी।
1: तो वो एक कैरेक्टर उसमें भी छोटा था, आई वॉज पार्ट ऑफ कोर टीम, बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स बहुत कम थे।
0: अच्छा,
1: बट रोहित सर के साथ काम करना, उनका वर्किंग स्टाइल देखना एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जिस तरह से पूरा झोंक देते हैं अपने आप को,
0: जी, जी।
1: उनकी वो और उनकी पूरी टीम, वो देखने लायक है, वो समझने लायक है, सीखने लायक है। तो वो बड़ा अच्छा लगा। फिर उसी दौरान बरसाते नाम का एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया, बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर जी के प्रोडक्शन में।
0: क्या बात।
1: तो हालांकि फादर का कैरेक्टर जब मुझे बोला गया टू अ हीरोइन हु इज इन 20s,
0: अच्छा,
1: मैंने बोला यार कुछ साल तो रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अडॉप्टेड डॉटर होगी आपकी।
0: अच्छा,
1: और अभी जैसे मेरा भी बेटा 15 साल का है, तो जो रहेगी आपकी बेटी वही 12-13 साल की एक रहेगी, और ये अडॉप्टेड डॉटर होगी, ऐसा
0: अच्छा,
1: दिखाएंगे।
0: अच्छा,
1: और कैरेक्टर अच्छा था। जब मैं कैरेक्टर का स्क्रीन प्ले मैंने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा ब्रीफ क्या है, तो कैरेक्टर अच्छा था। और मैं हमेशा कैरेक्टर के प्रोफाइल को ज्यादा महत्व देता हूं कि आप जो परफॉर्म करने वाले हो
0: जी जी,
1: क्या उसमें कोई गुंजाइश है कि आप कुछ अलग कर पाओ, क्या कोई वेरिएशन आप दे सकते हो।
0: अच्छा,
1: दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। इसलिए मैं निगेटिव कैरेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं।
0: हाँ,
1: क्योंकि एक पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा अच्छा गुड़ी गुड़ी सब अच्छा करेगा, थोड़ा बहुत कॉमेडी करेगा, लेकिन एक जो निगेटिव कैरेक्टर है वो अच्छा काम भी, एक्सप्रेशन भी दे सकता है, गुड़ी गुड़ी सरकास्टिक विलन, तो
0: कई शेड्स
1: हो सकते हैं
0: जी।
1: सो जितने रस वो दिखा सकता है उतने एक पॉजिटिव इसमें शायद ही आते होंगे। तो मुझे निगेटिव कैरेक्टर्स करने में बड़ा मजा आता है।
0: अच्छा,
1: तो मैंने किए भी हैं कुछ नेगेटिव कैरेक्टर। मैंने एक कोड रेड नाम की सीरियल की थी जिसमें भाऊ जमींदार का कैरेक्टर किया था।
0: हाँ,
1: मैंने सुना था वेरी गुड थिंग, जिसमें वो लोगों को अपने पासे में लेत के, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, ऐसा ट्रू स्टोरी थी।
0: जी जी,
1: उनको गलत बीज देता है और जब वो खराब हो जाते हैं तो उनकी जमीन हथिया लेता है। इस टाइप का एक वो कैरेक्टर था, लेकिन बड़ा मजा आया वो करते हुए। तो ये सब चीजें ऑन बेसिस, तो बरसाते में मुझे ऐसी लगा कि वो पॉजिटिव ही कैरेक्टर था
0: जी,
1: लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे।
0: अच्छा,
1: तो बरसाते मेरा एक ऑलमोस्ट एक साल वो शो चला। एक वो सेटअप जो है अपने आप में बालाजी टेलीफिल्म्स बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इंडस्ट्री का
0: जी,
1: तो वो एक देखने को मिला कि मल्टी कैमरा सेटअप, ह्यूज सेट्स और वेरी प्रोफेशनल एंड कट टू कट एटीट्यूड ऑफ द पीपल।
0: अच्छा,
1: वो एक अपने आप में सीखने के लिए एक अच्छा ये था। बरसाते बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही।
0: जी जी, बैठ गए। क्या बात है। कार्यक्रम के इस मोड़ पे हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत या कोई गजल आप सुनवाना चाहेंगे?
1: अगेन बीइंग पॉजिटिव ऑन द नोट्स, मैं बहुत ज्यादा वैसा भी नहीं हूँ कि बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। जब किसी दिन आपका मूड सही नहीं है तो आप

0: नॉर्मली भी रह सकते हो, उदास भी रह सकते हो, लेकिन ऐसे ही वक्त कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बड़ा अच्छा फील करा जाते हैं
1: जी,
0: जिसमें से एक स्वदेश का गाना था, यूं ही चला चल रही।
1: हाँ हाँ, मकरंद देशपांडे
0: मकरंद जी थे उसमें,
1: उन पर वो फिल्म आई,
0: शाहरुख भाई ने भी उसमें हाँ, साथ में उनके किया, और बहुत ही खूबसूरत एक उनकी कारवान में वो चले जा रहे हैं
1: जी, जी,
0: और ये गाना चल रहा है, और अभी बारिश आने ही वाली है।
1: हाँ,
0: जून में हम बात कर रहे हैं आज, तो आई एम श्योर कि इन अ वीक्स टाइम वी विल गेट अ गुड रेन।
1: हाँ,
0: और इस मौसम में बढ़िया अपनी गाड़ी या बुलेट, मतलब जो भी है पॉसिबल आपको, और वो लेके आप चलो,
1: हाँ,
0: और फिर ये गाना अगर सुनो तो आप स्वदेश में ही पहुंच जाते हो।
1: क्या बात है, चलिए सुनते हैं यही गीत
0: जी।

0: विपुल जी, ये जो लंबा समय आपने इस क्षेत्र में बिताया है, अलग अलग तरह के अनुभव, और हम अभी इस गीत के पहले जो बात कर रहे थे कि एक अभिनेता कई बार मन में सोचता है कि काश मैं इस कहानी का डायरेक्टर होता, ये आपके मन में भी आया होगा, तो अभी क्या आगामी समय में आपके जो है प्रोजेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, आपने भविष्य में क्या कुछ योजनाएं बनाई होंगी कि मुझे आगे क्या करना है, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैं हमेशा इसी फील्ड से रिलेटेड जुड़ा रहना चाहूंगा
0: जी।
1: तो सबसे ज्यादा रिसेंटली 4 महीने पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, एक एनजीओ है सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस वर्धा में।
0: अच्छा।
1: जिसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, आई प्रोड्यूस्ड इट, क्रिएटेड इट एक्चुअली विद फ्रेंड ऑफ माइन हु इज कैमरा। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या इन्फॉर्मेट्री

0: ये फिल्म्स, ऑडियो विजुअल्स,
1: जी जी
0: मैं एक साइड बनाता रहा हूँ, एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस, जिसके साथ साथ हम हमारी फिल्म्स को भी फंड कर पाए.
1: अच्छा.
0: हमारे खुद के प्रोडक्शन के अंडर हम, जैसे मैंने आपको बताया, IPC 324 एक मेरे दिमाग में बहुत अच्छी स्टोरी है, जो रंजीत सर को भी स्टोरी बहुत पसंद आई
1: जी.
0: बट हालांकि वही फाइनेंस के चलते वो फिलहाल तो बैक बर्नर पे है, बट आई एम श्योर कभी ना कभी फ्रंट बर्नर पे आके हम उसे पकाएंगे. और फिल्म्स मेजरली मैं करना चाहता हूँ, ऐसा अभी चॉइस तो होता नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग फॉर गुड कैरेक्टर
1: जी.
0: मैंने वागले के बाद में अभी, वागले की दुनिया के बाद में अभी कोई लंबा कमिटमेंट साइन तो नहीं किया है
1: जी.
0: तो आई एम वेटिंग फॉर इट कि जो लेवल पे मनोज वागले ने डिलीवर किया था उसी लेवल का कोई एक अच्छा किरदार.
2: और एक सवाल हमेशा अभिनेताओं से खास करके पूछा जाता है कि बचपन से हम तरह तरह की कहानियां पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और कोई ऐसा कैरेक्टर होता है, कोई रोल होता है जो जहन में बस जाता है कि काश मुझे ये करने को मिल जाए. तो वो कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा चरित्र है जो आप निभाना चाहते हैं, अब तक मौका नहीं मिला?
0: ये अभी आजकल इतना एक्सपोजर बढ़ा हुआ है बिकॉज दायरे OTT अपने आप में इतना बड़ा है, इतने सारे चैनल्स आए हैं, तो बहुत अलग है. अगर पहले के इसमें से देखा जाए तो बच्चन साहब की एक फिल्म थी
1: जी,
0: मैं आजाद हूं. वो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आता था.
1: अच्छा.
0: क्योंकि एक ऐसा इंसान इस शहर में आता है जिसका कोई लेना देना है नहीं उस शहर से, और बड़ा ही फकीर टाइप का है, और वो उस शहर को बदलने के लिए, उस सिस्टम को बदलने के लिए सबसे लड़ जाता है.
1: ओहो, क्या बात.
0: तो वो एक बड़ा खूबसूरत, और उसका गाना भी उतना ही खूबसूरत था. इतने बाजू इतने सर गिनले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से.
1: वाह.
0: तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा गाना उस इसमें था, और फिल्म भी उतनी खूबसूरत थी. तो मैं चाहता हूँ इस टाइप का जो एक चैलेंजिंग किरदार हो वो करने को कभी मिले तो मजा आए.
1: हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा गीत आपके मन में आ रहा है?
0: मेरे ख्याल से ये जो गाना मैंने अभी बताया, ये गाना ही
1: गाना
0: बहुत एप्ट होगा कि हम जब जी जान से खेलते हैं,
1: जी
0: जान से लड़ते हैं
1: जी,
0: तो दुश्मन तो मैं बाद में बोलूंगा, दुश्मन नॉट नेसेसरी कि हमेशा दुश्मन ही सामने हो, लेकिन हम अगर जी जान से कोई चीज करते हैं, पैशनेटली कोई चीज करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो आपको मजा आता है और वो चीज होती जरूर है मुकम्मल.

0: दुश्मन जरूरी नहीं कि कोई शख्सियत
1: शख्सियत हो,
0: हमारे मन के अंदर जो बुरे विचार हैं
1: ट्रू,
0: वो भी दुर्भावनाएं जो होती हैं वो भी हमारी दुश्मन है,
1: ट्रू ट्रू। और ये इन सबको लड़ने के लिए आपका पैशन होता है
0: जी,
1: आपकी फैमिली होती है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा जब भी पॉसिबल हो, अभी भी मुझे कभी लगता है तो दे आर देयर टू हेल्प मी। आपका खुद का एक परिवार है, आपके दोस्त हैं, ये सब आपको उन सब चीजों के लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और लिव लाइफ हैप्पीली, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।
0: क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। विपुल जी, आपका अब तक का जो करियर ग्राफ रहा है
1: जी,
0: इसमें आपने वेब सीरीज की है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई जगह आप एक्टिव रहे हैं, आपने मंच पर भी अपने आप को आजमाया है, आपने फिल्मों में काम किया है, टीवी सीरियल्स में आप आए हैं। विपुल देशपांडे कहाँ बहुत ज्यादा सहज होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं?
1: बतौर कलाकार विपुल देशपांडे ने हर जगह सहजता से काम करना चाहिए
0: जी जी।
1: बट अगर पर्सनल बात की जाए तो थिएटर, ये एक रंगमंच जो है,
0: हाँ,
1: ये किसी भी कलाकार के लिए शायद सबसे करीबी होता है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वहां पे जो आपके व्यूअर्स का रिस्पॉन्स है आपको तुरंत मिल जाता है।
0: हाँ।
1: और उसे बहुत खूबसूरती से रंजीत साहब कहते थे कि उसे प्रयोग कहा जाता है, उसे शो या प्ले नहीं कहा जाता, प्रयोग। हर एक प्रयोग जो होता है उसमें आप अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो कि कहीं पे आपने ये पंच लिया, कहीं पे आपने थोड़ा लंबा पॉज लिया, सो यू नो यू कैन कीप प्लेइंग, आप खेलते हो उसमें
0: जी, जी जी।
1: तो वो एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जो कि आपको आपके प्रेक्षकों से जुड़े रखता है। तो मेरे ख्याल से रंगमंच मेरा सबसे फेवरेट रहेगा, और नो डाउट फिल्म्स, ओटीटी, टेलीविजन, ये इसलिए कि आप एक जगह काम करके बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों के सामने पहुंच सकते हैं, जो कि रंगमंच में पॉसिबल नहीं है
0: जी जी। हम जो भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, तो उसके लिए हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं
1: जी,
0: और जिनसे हम प्रेरित होते हैं ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो वो जो टर्निंग पॉइंट होता है जहां से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि ये कृतज्ञता किसी रूप में व्यक्त की जाए। तो विपुल, आप किसे के प्रति अपने कृतज्ञता व्यक्त करेंगे?
1: ये कृतज्ञता शायद मैं मेरे माता पिता के प्रति ही व्यक्त करना चाहूंगा।
0: हाँ हाँ।
1: भले ही उन्होंने पहले मुझे वो अपॉर्चुनिटीज, उन्हें भी पता नहीं था कि एक्सपोजर नहीं था जो मुझे वो दे पाते, NSDFTI ये सब चीजें हमें पता नहीं थी।
0: हाँ।
1: लेकिन उसके बाद जब मैंने बोला कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे काफी सपोर्ट किया, आज भी करते हैं
0: जी जी।
1: एक कलाकार की जिंदगी बड़ी अनसर्टन होती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि, तो सभी तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं आज भी। हाँ। और यहाँ पे जैसे इंस्पिरेशन की अगर बात करें, तो डेफिनेटली मैं बचपन से, जैसे मैं बड़ा हुआ हूं
0: जी,
1: और मैंने सर को बोला भी था कि बच्चन साहब हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं, उनको देख के, उनकी आवाज, उनका कद काठी, भगवान की दया से कद काठी मैं थोड़ा मैच कर लेता हूँ
0: जी जी।
1: बाकी बहुत सारी चीजें उनसे ही सीखी है, मतलब एकलव्य जैसा सफर रहा है।
0: हाँ।
1: जो कि दूर से देख के, ऑब्जर्व करके सीखने वाली बात होती रही है।
0: वाह।
1: वो भले फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन, मतलब
0: जी,
1: ट्रेनिंग ना हुई हो, बट ये ऑब्जर्वेशन वाला, एकलव्य वाला जो है, वो मुझे लगता है मेरा इसमें बहुत रहा है। और मैंने बच्चन साहब को ये बोला भी था
0: जी जी,
1: कि आपसे ही सीखते आए हैं बचपन से।
0: सीखने की जो ये प्रक्रिया है, इसमें यहीं से कहीं संघर्ष भी शुरू होता है, तो हम इस पर बात करेंगे, मगर यहाँ इस मोड़ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का।

0: जब संघर्ष की बात आई है तो एक मिल्खा सिंह जो थे, मिल्खा जी,
1: हाँ,
0: उनके फिल्म का एक गाना है कि जिंदा है तो प्याला पूरा भर दे।
1: हाँ,
0: ये मुझे बड़ा बेहतरीन गाना लगता
1: क्या
0: है।
1: बात है,
0: जी
1: चलिए सुनते हैं।

0: इस गीत से पहले विपुल हम बात कर रहे थे कि जीवन में हम कुछ करते हैं और किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो उसमें संघर्ष की अपनी भूमिका होती है
1: जी।
0: इस संघर्ष के बारे में अब तक जितनी बातें आपसे हुई है उसमें आपके एक अलग सोच रखते हैं संघर्ष के बारे में। और जहां तक फिल्मी दुनिया की बात है, ये तमाम जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसमें काम करने वाले लोग सबकी अपनी अलग कहानी होती है और सबका अलग संघर्ष होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो वो कौन सा विचार है जो आप इस संघर्ष के बारे में कहना चाहते हैं, वो अलग बात जो है आपके मन में?
1: संघर्ष, जैसे कि शायद पहले भी हमारी बात हुई कि संघर्ष जिंदगी में हमेशा रहेगा। जिंदगी है तो संघर्ष है
0: जी,
1: और अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो यू डाई। तो ये तो खैर नहीं होता है, हम लोग करते रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि हर किसी इंसान को जिस फील्ड में जाना है उसके लिए शायद कोई गाइडेंस अवेलेबल हो,
0: अच्छा,
1: तो बहुत अच्छी बात होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: अभी यहाँ पे ये गाइडेंस ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है। हालांकि राहत इंदौरी साहब के कुछ शेर है जो मैं हमेशा पसंद करता हूं कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे यहां से, कम से कम राह के पत्थर तो हटा देते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि ये चीज एटलीस्ट मेरे बाद में जितने लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, हाँ, उन्हें एक गाइडेंस के तौर पे, एक ब्रदरली फ्रेंडली गाइडेंस के तौर पे अवेलेबल हो। तो 2018 में स्ट्रगल स्मार्ट नाम से एक छोटा सा स्टार्टअप मैंने चालू किया था,
0: अच्छा,
1: जिसमें एक एक्सपोजर वर्कशॉप मैंने कहा था। कलाकार को कला सिखाना बहुत कम दिनों में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसे थोड़ा ब्रशअप कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, एक्सपोजर दे सकते हैं इंडस्ट्री का
0: जी।
1: जो हमने किया, मैंने ट्राई किया, उसमें से 6 पार्टिसिपेंट्स आए थे, 3 male 3 female, उसमें से 3 पार्टिसिपेंट्स आज फुल फ्लेज ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं।
0: वाह।
1: बतौर कलाकार।
0: वाह वाह।
1: और उसके बाद भी हमने कुछ ऑनलाइन सेशंस लिए सिम्बायोसिस

0: कॉलेज के साथ भी मैंने सेशंस लिए 2 साल, उसमें यतिन कारेकर जी, अश्विनी कर्शिकर मैडम, राजेंद्र शिराडकर जी और शंतनु रोड़े जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं डायरेक्टर, ऐसे बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। ये कंटिन्यू करना चाह रहा था बट देन आई गॉट बिजी विथ कपल ऑफ मोर प्रोजेक्ट्स, वो हो नहीं पाया। बट मैं अभी भी चाहता हूँ कि एक ऐसा मैं कुछ जरिया बनाऊं कि जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लोग आए और एक मिनिमम फी स्ट्रक्चर में उसको एक्सेस कर पाए। और जो यहाँ पे लोग हैं जो फॉर एग्जांपल जिनके पास समय है जो गाइड कर सकते हैं, जैसा अगर कोई कलाकार एक्टिंग उस दिन असाइनमेंट नहीं है तो वो फ्री होता है, उसके पास में अगर समय है तो वो आके हमारे साथ समय बिताएं, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो
1: जी, जी, जी।
0: लोगों को उसके बारे में पता चलता रहे।
1: क्या बात,
0: तो ये मेरा सबसे जरूरी है। अदरवाइज तो वहां पे घर पे बैठ के थोड़ा सा डरते ही है कि कौन जाएगा कैसे जाएगा। तो इस पे भी एक इंदौरी साहब का शेर था कि लोग हर मोड़ पे रुक के संभलते क्यों हैं?
1: अच्छा,
0: अगर इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं?
1: ओह क्या बात,
0: दिस इज वन ऑफ द थिंग। ये हमने रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मैं कंटिन्यू करूं। तो स्ट्रगल स्मार्ट मैं नाम भी इसलिए ऐसा चुना और वो मुझे मिल भी गया, strugglesmart.com, कि आपको स्ट्रगल करना है तो स्मार्टली करो।
1: अच्छा,
0: और उसको दिल से करो, उसको एंजॉय करके करो। संघर्ष कोई गलत बात नहीं है या कुछ नेगेटिव सोच वाली बात नहीं है, पॉजिटिव बात है।
1: इसमें कोई फिलहाल जो भारत में किसी कोने में कोई कलाकार रह रहा है और वो चाहता है कि आपसे जुड़े, इस आपके स्ट्रगल स्मार्ट से जुड़े, तो क्या इस वेबसाइट पे ऐसी कोई व्यवस्था है?
0: ये व्यवस्था हमारी, जब मैंने कहा था कि 2018 में चालू किया था, ये 2-3 साल रेगुलर बेसिस पे चलती रही। लोग कॉन्टेक्ट कर सकते थे, हम उनको डिटेल्स भेज के हमारे प्रोग्राम से अलाइन कर सकते थे। जैसा मैंने कहा कि 3-4 साल से मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गया बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, तो फिलहाल strugglesmart.com वेबसाइट मेरी ऑपरेटिव नहीं है, इट इज विथ मी।
1: अच्छा,
0: द डोमेन नेम इज आल्सो विथ मी, जो हमारे साथ ही है।
1: जी, जी।
0: मैं उसे फिर से एक्टिव करना चाहता हूँ और तब तक अगर बाय चांस किसी को करना हो तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई डेफिनेटली आई वुड लव टू गाइड देम। विपुल देशपांडे ऑफिशियली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे हम डेफिनेटली उनको गाइड कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि स्ट्रगल स्मार्ट भी एक्टिव हो और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर पाऊं जितना मैं कर सकता हूं। मैं बहुत बड़ा कलाकार तो हूं नहीं, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं मेरे ख्याल से वो मेरे लिए
1: निश्चित रूप से। और जितने भी कलाकार हैं जो संघर्षरत हैं और जो आना चाहते हैं, तो उनकी ओर से भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। और यहाँ हम कोई गाना सुनते हैं।
0: ये किस्सा भी शायद हमारी बात हुई थी
1: जी,
0: कि लोग यहाँ पे आपको कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं।
1: हाँ,
0: कि आपको बोलते हैं कि हाँ भी आप आ जाओ, आपको बोला जाता है कि आप कोर टीम के सदस्य हो।
1: हाँ,
0: और सपोज टू बी कि आप बहुत अच्छा, आपका कैरेक्टर होगा, लेंथ होगी, तो होता है। लेकिन एक मेरे साथ भी वाकया हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ी वेब सीरीज की
1: जी,
0: जिसमें मुझे कोर टीम का सदस्य बनाया गया और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ रखा गया, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन नहीं थे।
1: हाँ,
0: तो
1: आप मुख्य कलाकारों में तो हैं
0: बिल्कुल,
1: मगर इतने ऐसे सीन नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, काम नहीं है और कोई उस रोल का अपना अलग महत्व नहीं,
0: महत्व नहीं।
1: ओह,
0: तो वो बड़ा ही मुझे खलता रहा कि यार मैं, एक लिमिटेड टाइम होता है हर एक के पास।
1: हाँ, हाँ।
0: आज मेरे पास में इस उम्र के यही है 10 साल
1: जी,
0: उसके बाद शायद मैं दूसरे जोन में जाऊंगा। शायद वो सीनियर सिटीजन वाला मैं करूंगा, 15 साल बाद कुछ और सीन रहेगा।
1: हाँ,
0: तो मैं इस दौरान जितनी चीजें करना चाहता हूँ करना चाहता हूँ कि उसको मैं न्याय दे सकूं। तो दूसरी बार जब उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया तो मैंने कहा भाई मुझे 50 दिन मत बुलाओ, मुझे आप एक ही दिन बुलाओ, बट वो एक दिन में एक सीन ऐसा मेरा होना चाहिए कि जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूँ,
1: लगे कि मैंने काम,
0: लगे कि विपुल देशपांडे ने कुछ काम किया है, कुछ योगदान दिया है।
1: जी जी जी।
0: तो
1: जी,
0: मेरा सीधा सीधा मानना है कि अगर मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाए लोग,
1: ओहो,
0: और अगर मैं खाक हूं तो खाक तो उड़ा देनी चाहिए।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: तो बस यही एक चीज थी जो मैं ऐड करना चाह रहा था।
1: क्या बात, क्या बात?
0: बाकी संघर्ष की बात हो रही थी, उसमें दंगल का एक टाइटल ट्रैक है, वो गाना है कि माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। तो संघर्ष की शुरुआत माँ के पेट से होती है और वो मरघट तक होती है।
1: क्या बहुत ही खूबसूरत गाना है, आइए सुनते हैं
0: जी।

0: तो जितनी आपकी भविष्य की योजनाएं हैं उनके लिए जो आप करना चाहते हैं आगे, जितने आपके सपने हैं जो अभी पूरे होने बाकी है, उनके लिए हम विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती का, आपकी पूरी टीम का, कि मुझ जैसे नाचीज को भी आपने यहाँ पे आने का मौका दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैंने आने के बाद वॉल ऑफ फेम आपका और
0: जी
1: लॉबी ऑफ फेम भी देखा, यहाँ पे कौन
0: हाँ
1: नहीं आया है।
0: जी जी
1: मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि मैं इसी जगह पे आके बैठा हूँ और एक प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

चाहते हैं बसना धड़कते दिल के हर राग में, चाहते हैं छुपना सांसों की झनकार में, झुक जाएंगे दिल की जानिब तुम पुकारो तो सही।

देखते ही देखते कर देना घायल, अजी ये तो पहली ही मुलाकात है, बातों ही बातों में दिल चुराने का हुनर, वाह इस हुनर की क्या बात है।

लेकिन वहाँ कोई और थी, इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी, और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

इनको भी है मेरा खुमार, इनको भी है इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाथ देखिए साहिबो, वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

हम दोस्तों रुसवा हुए हम दोस्तों इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

0: पर यकीन अब कम सही मैं सादा दिल मुजरिम सही इनके लिए ऐ मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए सारी को वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी मैं इन पे मरता हूँ। देखिए सारी को वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी मैं इन पे मरता हूँ।
1: मंजिल तय हुई हम सफर भी बन गए पता न चला ये दो दिल कब एक हुए हमें पता न चला मगर फिर भी हमारी उल्फत का चर्चा हर जुबां पे है।

देख लो, सोच लो, अब तो संभलना होगा। मिलना है कल तो आज की रात चलना होगा।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने

कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, शुभ संध्या। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए अलका याग्निक की आवाज में। गीतकार हैं समीर, संगीत है अनु मलिक का, फिल्म का नाम है सोल्जर।

लीजिए सुनिए अगला गीत किशोर कुमार की आवाज में। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार हैं बप्पी लहरी, फिल्म का नाम है शराबी।

0: लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव।
1: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
0: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आनंद बख्शी का लिखा गीत है शोभा जोशी और मोहम्मद अजीज की आवाजों में, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है हम।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं उषा मंगेशकर, आशा भोसले और महेश कुमार की आवाजों में। गुलशन बावरा ने गीत लिखा है, धुन है कल्याण जी आनंद जी की।

यही विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। शाम के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही लम्हों बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

हम बोल रहे हैं विद्वार्थी नागपुर केंद्र से। कुछ पल में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से 6:05 पर प्रादेशिक मराठी समाचार। समाचारों के लिए थोड़ी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन और व्यापार जारी रखने का आह्वान किया है।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: आज नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया और जो कुछ हुआ है उसकी कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है और कई भारतीय गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
1: जो दो जहाज जिसपे कल रात हमला हुई है, आज सवेरे हमला हुआ, तो इन दोनों जहाज में 30 हमारे भारतीय नाविक थे। एक जहाज में जिसमें 12 लोग थे उसमें एक नाविक की मौत हुई है और दूसरे जहाज जिसमें 18 भारतीय नागरिक और या नाविक थे उसमें से 9 लोगों को घोर चोट पहुंचा है उनको, उसमें से 2 काफी गंभीर रूप से घायल भी है। तो ये था ब्यौरा जो कल का या आज सवेरे का जब भी समय में जब हमला हुआ। इसके अलावा कई एक जाने हमारे लोग गई है और मैं कह सकता हूं कि जितने भी देश हैं दुनिया में उसे सबसे ज्यादा जो कमर्शियल शिपिंग पे जो भी हमला हुआ वो सबसे ज्यादा नाविकों की, हमारे देश की लोगों की जान गई है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन दुर्व्यवहारों और कुकर्मों के लिए पाकिस्तान को पूरी तरह से जवाबदेह ठहराएगा। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलडमरू मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI युवाओं के कौशल को प्रभावी ढंग से बढ़ा सकती है। हैदराबाद में ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम शिखर सम्मेलन में उन्होंने सरकार की अनेक सामाजिक सुरक्षा पहलों पर बल दिया और स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख किया। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि यह अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है। कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता रामचंद्र गौड़ा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उन्हें कर्नाटक में भाजपा का एक मजबूत स्तंभ बताया। उन्होंने पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ताओं की कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इंग्लैंड ने भारत के साथ 3 मैचों

जयमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पहला गीत हरिहरन और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं पीके मिश्रा, संगीतकार हैं ए आर रहमान। फिल्म का नाम है रोजा।

0: लीजिए सुनिए भारतीय सेना गीत, गीतकार संगीतकार और गायक कलाकार हैं कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: अभी आप सुन रहे थे भारतीय सेना गीत। गीतकार, संगीतकार और गायक कलाकार थे कैलाश खेर।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य एक स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: अनपढ़ इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है राजा मेहंदी अली खान, संगीतकार है मदन मोहन।

0: पर।
1: अनपढ़ इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है राजा मेहंदी अली खान, संगीतकार है मदन मोहन।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपकी परछाइयां, इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं राजा मेहंदी अली।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप।

0: तेरा रास्ता अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार कैफी आजमी के बोलों को संगीत से सवारा है मदन मोहन ने। फिल्म का नाम है मेरा साया।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है मदन मोहन, फिल्म का नाम है चराग।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: साथियों जयमाला कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल पर जाने का। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती।

अंतराल के बाद एक बार फिर से जयमाला कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, संगीत रचना है मदन मोहन की और फिल्म का नाम है नींद हमारी ख्वाब तुम्हारी।

0: अगला गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, नगमा दिगार है साहिर लुधियानवी, संगीतकार है मदन मोहन और फिल्म का नाम है लैला मजनू।
1: अब अगर हमसे

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत है रोशन का, फिल्म का नाम है मल्हार।

0: भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: राष्ट्रीय सेवा विविध भारती से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय माला।

ये विविध भारती है राष्ट्रीय सेवा, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम इंद्रधनुष के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पॉप एक्सप्रेस में कुछ पॉप गीत। तो पहला गीत यूफोरिया एल्बम से पलाश सेन की आवाज में सुनिए।

0: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव।
1: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग एक स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
0: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: पॉप एक्सप्रेस में अगला पॉप गीत है राहुल जैन और जुबिन नौटियाल की आवाजों में। गीत संगीत है राहुल जैन का,

0: अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज में एल्बम दिल को मैंने दी कसम। इस एल्बम से गीत को लिखा था कुमार ने और संगीत था अमाल मलिक का। इंद्रधनुष के अंतर्गत आज पॉप एक्सप्रेस में आपने सुने कुछ पॉप गीत।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
0: बाज आए ऐसे फैशन से, हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको

0: शेयरिंग बॉक्स, ये रहा जिंदगी शमा की। अरे रेजर तो इसमें है ही नहीं, फिर दाढ़ी कैसे बनाऊंगा? रेहाना, अरे ओ भाई रेहाना, ओफो न जाने इस घर को क्या होता जा रहा है। अभी तक तो सिर्फ रेजर गायब था और अब बेगम भी गुम हो गई।
1: तौबा है, अच्छी खासी मैं घर में हूँ, फिर भी यूं चीख रहे हैं जैसे कि मैं लंदन में हूँ। क्या बात है, क्यों सदा लगाई थी?
0: इसमें वो रेजर नहीं है।
1: उसे तो मैंने फेंक दिया।
0: फेंक दिया? लेकिन क्यों?
1: वो भी कोई रेजर था, बिल्कुल पुराने फैशन का।
0: क्या मतलब?
1: अजीब, वैसा रेजर तो बाबा आदम के जमाने के लोग इस्तेमाल करते थे।
0: ये तुम क्या कह रही हो? अरे भाई मैं कल ही तो खरीद कर लाया था और आज तुमने फेंक दिया।
1: जनाब आज का जमाना तरक्की का है, दुनिया की हर शय बदल रही है।
0: जी
1: जी हाँ, लोग पुराने को छोड़कर नए को अपना रहे हैं, लेकिन एक आप हैं कि वही कदर के वक्त के फैशन से चिपके हुए हैं।
0: तकरीर तो काबिले तारीफ है आपकी, लेकिन ये बताइए मेरी दाढ़ी का अब क्या होगा?
1: वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये लो, बिल्कुल नए किस्म का शानदार रेजर। मेरे भाईजान इसी तरह का रेजर इस्तेमाल करते हैं, तुम भी करो ना, तब तक मैं चाय बना कर लाती हूँ।
0: नए किस्म का मेरे भाईजान इस्तेमाल करते हैं। चल भाई राशिद, अब इसी से दाढ़ी खुरच डाल, वरना कहीं बेगम साहिबा ने इसे भी पुराने फैशन का करार दे दिया तो फिर बिना दाढ़ी बनाए ही ऑफिस जाना पड़ेगा।
2: आत्मी है दुआ बन के तमन्ना।
0: चाय तैयार हो गई हो तो ले आओ।
1: कहो कैसा था रेजर, शेप ठीक से बनी कि नहीं?
0: हाँ ठीक बनी। अरे कंबख्त ने गाल को जगह जगह से काट कर पानीपत का मैदान बना दिया। ये देखो
1: नया था ना, इसलिए धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो फिर देखने से कमाल। ये लो
0: लो
1: चाय पी लो।
0: अरे ये कब कहाँ से आ गया?
1: कल नया स्टील का सेट खरीदा है, अच्छा है ना?
0: लेकिन
1: बिल्कुल ऐसा ही मैंने फूफी जान के घर में देखा था, बहुत खूबसूरत लगा तो मैंने भी ले लिया।
0: लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, वो चीनी मिट्टी वाला सेट तो अभी ठीक ठाक था।
1: अच्छा छोड़िए भी, वो जमाने गए जब लोग मिट्टी के बर्तनों में खाते पीते थे।
0: अब तुमसे तो वो बहस करे जिसके पास फालतू दिमाग हो।
1: इसमें बहस कैसी, वो मिट्टी के कप निगोड़े हुड़क चिल्लू जैसे मुझे एक आंख भी ना भाते थे। जुमे को खाला जाना ही थी, मैंने उन्हें उसी कप में चाय दी तो वो हंसकर बोली, क्यों रेहाना ये टी सेट क्या मोहन जोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में निकला था? उफ क्या बताएं, मारी शर्म की मैं तो पानी पानी हो गई।
0: और इसीलिए तुमने उन्हें फौरन नादान में फेंक दिया।
1: तो और क्या करती, एक बार तो ना कट गई, अब क्या दूसरे मेहमानों के आगे भी अपनी बची खुची नाक कटवाऊं?
0: जी नहीं, कतई नहीं, मैं कुतुब मीनार की तरह अपनी नाक ऊंची रखी है, भले मैं कंगाल हो जाऊं। हां
1: तुम तो नाहक परेशान हो रहे हो, ये सेट मैंने पैसों से थोड़े ही खरीदा है।
0: तो फिर क्या आसमान से टपका है या आपकी वो खालाजान खरीद के दे गई है?
1: हटो भी, अल्लाह ना करे हम लोग किसी के भरोसे जिंदगी गुजारे। ये सेट तो मैंने अपनी चार पुरानी फैशन की साड़ियों और वो तुम्हारी दो पैंटे थी ना उनके बदले में लिया है।
0: क्या मतलब? जहाँ तक मुझे याद है ना तो तुम्हारे पास कोई पुराने फैशन की फालतू साड़ी थी और ना मेरे पास पैंट, फिर तुमने किन कपड़ों के बदले में ये सेट खरीद डाला?
1: तौबा तौबा, वो चारों साड़ियाँ कहीं पहनने लायक भी नहीं रह गई थी।
0: क्यों, क्या हो गया था उनमें?
1: अरे चारों साड़ियों के प्रिंट आउट ऑफ डेट हो चुके थे।
0: ओफो।
1: उस दिन पार्टी में चाचा जान की लड़की नजमा को देखा था ना?
0: हाँ देखा था।
1: कितनी खूबसूरत डिजाइन थी उसकी साड़ी की, उसके आगे तो मेरी साड़ी ऐसे लग रही थी जैसे
0: मखमल के आगे टाट। क्यों?
1: हाय तुम कितने अच्छे हो, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली।
0: लेकिन मेरी अच्छी बेगम, मेरी अच्छी बेगम, भाई मेरी पैंटों ने क्या कसूर किया था जो तुमने उन्हें टी सेट पर भेंट चढ़ा दिया?
1: अरे वो 24 इंच की मोरी वाली पतलूने थी कि गरारा, अब तो कोई बेल बॉटम भी नहीं पहनता। मैं तो कब से मौके की तलाश में थी कि कब मौका आए और उन्हें कब घर से बाहर निकालूं।
0: बहुत खूब, भाई खाला जान ने टी सेट का मजाक उड़ाया और तुम्हें मौका मिल गया पतलूनों को घर से निकाल फेंकने का। भाई बहुत अच्छे, कल आपके कोई चचीजान मेरा मजाक उड़ाए तो मुझे भी पुराना कहकर घर से निकाल देना और कोई नया

0: बन रहा ना घर में।
1: क्या उल्टी सीधी बातें मुंह से निकाल रहे हो? जरा सोचो, इन बेकार और पुराने फैशन के कपड़ों से कम एक काम की चीज तो घर में आ गई।
0: काम की चीज? वाह, जितनी कीमत की बुलबुल नहीं, उससे ज्यादा की उसकी उड़वाई।
1: ओफो, एक तो इतनी किफायत से मैं घर चला रही हूँ, उस पर तारीफें करने के बजाय खामखा नाराज होते हैं।
0: वाह वाह वाह, क्या कहने हैं किफायत शुवारी के। देखो रियाना, तुम्हारी ये किफायत किसी दिन मेरे हाथ में कटोरा थमा देगी। हाँ
1: ओफो, खुदा जाने तुम कब समझोगे।
0: मैं सब समझता हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ, पैंट तो तुमने उस बर्तन बेचने वाले को पहना दी, अब मैं ऑफिस पहन करके आ जाऊँ, तुम्हारी साड़ी या तुम्हारा पेटीकोट?
1: नहीं नहीं, अभी इसका फैशन मर्दों तक नहीं पहुँचा है। वैसे आने वाले दिनों में हो सकता है कि मर्द साड़ी बांधने लगे। फिलहाल ये लो, इसे पहन कर जाओ ऑफिस।
0: ये?
1: हाँ
0: ये पहन कर जाऊँ?
1: हाँ पहन कर देखो, मजा आ जाएगा।
0: ये सूती पैर पहन कर ऑफिस जाऊँ?
1: ये सूती नहीं है, इसे कहते हैं अमेरिकन जीन्स।
0: इसे घोड़े की जीन भी कहते हो तो अपनी बला से। मैं यह जीन नहीं पहनूंगा।
1: क्यों नहीं पहनोगे? पता है मार्केट में से कितनी शॉर्टेज चल रही है, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाई हूँ। मेरे भाई जान तो इसके चक्कर में पड़ोसी देश तक जाते हैं।
0: और वो इसके चक्कर में पड़ोसी देश जाते हैं चांद पर, तो मुझे क्या? तुम उन्हीं को यह तारंगे का गुलाब पहनाना, समझी?
1: आखिर इसमें बुराई क्या है?
0: एक हो तो बताऊं, भला ये भी कोई पैंट है? चिपकी चिपकी चूड़ीदार पजामे जैसी, सिलाई तो यूं लगी है जैसे चीटियां देख रही हो, और तो और जगह जगह से रंग भी उतर चुका है।
1: जवाब नहीं तुम्हारा अजी, यही तो इन पैंटों की खासियत है।
0: यानी रंग उतरना?
1: जी हाँ, इसे ही तो कहते हैं फेडेड जीन्स। जैसे जैसे इसका रंग उतरता है, वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ती है।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
1: और कहीं अगर ये मोहरी के पास से फटकर झालर की तरह हो जाए तो समझो इसकी कीमत दुगनी।
0: हद खत्म हो गई पागलपन की, नया फैशन की बवाले जान।
1: बस ज्यादा सोचो नहीं, अब फटाफट तैयार हो जाओ।

0: स्मार्ट लग रहे हो, क्या फिटिंग है आज तो ऑफिस में तुम ही तुम नजर आओगे।
1: बस बस रहने दो, इस मार क्या खाक लग रहा हूँ। अरे सारस लग रहा हूँ सारस, वो कमबख्त टांगों से जो कितने चिपकी हुई है, हवा तक पास होने का नाम नहीं।
0: अब ज्यादा दरकनूसी बातें मत करो, लो लंच बॉक्स लो।
1: लंच और इस बालिश भर के डिब्बे में?
0: हाँ आज से इसी में लंच ले जाओगे तुम।
1: क्यों, मेरा वो चार कटोरों वाला बड़ा सा कटोरदान क्या हुआ?
0: कुछ तो अगर से काम लो, भला इस पैंट के साथ वो घंटा घर मार का कटोरदान मैच करेगा?
1: और लीजिए, अब साला ये फैशन खाने पीने में भी शामिल हो गया। लगता है तुम्हारा ये नया फैशन मुझे भूखा मार डालेगा। भला इस डिब्बे में कितना खाना आया होगा?
0: अच्छा खासा खाना आता है इसमें, मेरे मायके में सारे लोग इसी में खाना ले जाते हैं, और फिर दोपहर में वैसे भी खाना कम खाना चाहिए।
1: क्यों?
0: तो निकल आती है, स्मार्टनेस खत्म हो जाती है और आदमी बेडॉल हो जाता है।
1: बस बस बोर मत करो, मेरे जूते कहाँ हैं?
0: ये रहे।
1: ये क्या है?
0: जूते हैं और क्या है।
1: लेकिन मुझे तो ये उगलदार नजर आ रहे हैं, मेरे वो अपने पुराने जूते क्या हुए?
0: अजी मिट्टी डालो उन पुराने मेजर पुमा जूतों पर, इन्हें पहनो, इन्हें कहते हैं लॉन्ग बूट।
1: लॉन्ग बूट?
0: जींस पर यही पहने जाते हैं।
1: सुनो रेहाना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई सड़क पर तारकोल फैलाने नहीं जा रहा जिसमें मुझे इन घुटनों तक ऊंचे ऊंचे जूतों की जरूरत पड़ेगी, समझी? मेरे तो वही पुराने जूते लाओ।
0: उफ, वही पुराने पुराने की रेट, 100 दफा कहा है कि नए फैशन के लिहाज से रहा।
1: अच्छा बस बस, नया फैशन नया फैशन, ला घर जूते। साले नए फैशन की तो ऐसी की तैसी, या खुदा इस नए फैशन की बला से अरे दुश्मन को।
0: उठो उठो उठो उठो, कोई बात नहीं, पहनोगे आदत पड़ जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा।
1: अरे आदत क्या बन जाएगी?
0: हाँ।
1: पैर टूट गया।
0: प्लीज उठो उठो।

0: मुझे बुलाया डियर।
1: यस डार्लिंग, कम ऑन। हाँ हाँ आ जाओ, देखो ये है तुम्हारा घर।
0: हाउ स्वीट।
2: क्या कहा? किसका घर? कैसा घर? आखिर ये चुड़ैल है कौन?
0: शट अप, मैं चुड़ैल नहीं, मेरा नाम लैला है। क्यों डियर?
2: अरे चल हट कल मुही, बड़ी आइडिया और डार्लिंग वाली।
0: ओ डियर, तुम तो कहते थे मुझे यहाँ बड़ा आराम मिलेगा, मैं रानी बनकर रहूंगी। ओ माय गॉड, लेकिन यहाँ तो, यहाँ से चलो डियर, यहाँ मेरा दम घुटता है।

0: अरे मैं तेरी जान ले लूंगी कमीनी, शर्म नहीं आती तुझे? पराए मत को डियर कहते। ए जी, तुम बोलते क्यों नहीं? ये रिकॉर्डिंग कौन है?
1: अरे भाई, ये लैला है। लैला,
0: तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है?
1: मेरा ताल्लुक? मैं, मेरा ताल्लुक तो वही है जो शीरी का फरहाद से और सोनी का महमाल से था। मैं इसका मजनू हूँ।
2: क्या आ गया समझ में? इतनी देर से ऐसे डांट रही थी जैसे घर की नौकरानी ना होकर मालकिन हो।
0: क्या कहा? मैं नौकरानी हूँ? चल चल मुझे, मैं अभी तुझे मजा चखाती हूँ।
1: अरे अरे अरे, क्या कर रही हो रहना? बस बहुत हो चुका, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाई लैला मेरी बीवी है और तुम उस पर हाथ उठा रही हो।
0: क्या कहा? ये तुम्हारी बीवी है?
1: जी हाँ, ये मेरी नई शरीके हयात है।
0: या खुदा, ये सब सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती?
1: लो, अब इसमें होने की क्या बात है? भाई तुम तो खुश होना चाहिए कि मैंने अपनी सभी पुरानी चीजों को अपने से अलग कर दिया है।
0: ये तुम क्या कह रहे हो?
1: ठीक कह रहा हूँ। और आपके आज क्या

0: से डांट रही थी जैसे घर की नौकरानी ना होकर मालकिन हो।
1: क्या कहा? मैं नौकरानी हूँ? छेड़ तुम मुझे, मैं अभी तुझे मजा सिखाती हूँ।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रही हो रियाना? बस बहुत हो चुका, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाई लैला मेरी बीवी है और तुम उस पर हाथ उठा रही हो।
1: क्या कहा? ये तुम्हारी बीवी है?
2: जी हाँ, ये मेरी नई शरीक हयात है।
1: या खुदा, ये सब सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती?
2: लो, अब इसमें होने की क्या बात है? भाई तुम तो खुश होना चाहिए कि मैंने अपने सभी पुरानी चीजों को अपने से अलग कर दिया है।
1: ये तुम क्या कह रहे हो?
2: ठीक कह रहा हूँ, और आपके आज का जमाना तरक्की का है, लोग बदल रहे हैं, पुरानी चीजों को छोड़कर नए को अपना रहे हैं। इसीलिए मैं भी नया फैशन टीवी भी ले आया।
1: जहन्नुम में जाए नया और पुराना, मैं क्या जानती थी कि नए के चक्कर में मेरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। देखो जी, इसे फौरन घर के बाहर करो, वरना मैं
2: वरना क्या
1: मैं जान दे दूंगी, खुदकुशी कर लूंगी।
2: ओके, लेकिन खुदकुशी भी नए फैशन की होनी चाहिए।
1: ठीक है, तो तुम राज प्रकृति के साथ, मैं जा रही हूँ।
2: हाँ हाँ, जाओ शौक से जाओ।
1: क्या मतलब?
0: मतलब मैं समझाती हूँ, ये रही मेरी नकली बालों की विग और ये मैंने उतारा चश्मा।
1: लगा तुम शैतान कहेंगी।
0: हाँ भाभी, मैं
1: कमबख्त ने ऐसा रूप धरा कि मैं पहचान भी ना पाई। खामखा मुझे रुला दिया।
2: खामखा नहीं रहा ना, इस पल भर की रुलाई ने तुम्हें जिंदगी भर के रोने से बचा लिया। अगर हम लोग ये नाटक ना खेलते तो तुम्हारे सिर से नए फैशन का भूत उतरना मुश्किल था।
1: चलो हटो, तुम बड़े बहू।
0: अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ।
1: कहाँ चलती हो? बैठो ना, चाय लेकर आती हूँ।
2: चाय?
1: हाँ चाय, आपको कोई एतराज है?
2: एतराज बिल्कुल है।
1: अच्छा, मैं भी तो सुनो, आखिर क्या?
2: वो ये कि हम लोग चाय पुराने फैशन के टी शर्ट में पियेंगे।
1: हाँ बाबा, वही पुराना टी शर्ट लाऊंगी, मुझे नहीं रखनी कोई नए फैशन की चीज घर में।

बाज आए ऐसे फैशन से। नाज़रीन का लिखा ये प्रहसन अभी आपने सुना। निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: नागपूर महानगरपालिकेकडून प्रॉपर्टी टॅक्स वर खास सवलत. 31 जुलै 2026 पूर्वी चालू आर्थिक वर्ष 2026-27 चा मालमत्ता कर ऑनलाईन भरा आणि मिळवा 15% सूट. तसेच वसुली केंद्रावर ऑफलाईन भरल्यास 10% सूट उपलब्ध. घरी बसून ऑनलाईन सुविधेचा लाभ घ्या, वेळ इंधन आणि त्रास वाचवा.
1: अधिक माहितीसाठी नागपूर महानगरपालिकेच्या वेबसाईटला भेट द्या. जनहितार्थ प्रसारित.
2: अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए.
3: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
4: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
5: मैं और मेरी तन्हाई,
4: सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन. कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में.

विविध भारती से प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए आशा भोसले, सुरेश वाडकर और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं गुलजार, संगीत है विशाल भारद्वाज का और फिल्म का नाम है सत्या।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में अगला गीत सुदेश भोसले, सोनू निगम, जसपिंदर नरूला और साथियों की आवाजों में। गीतकार संगीतकार हैं आनंद राज आनंद। फिल्म का नाम है मेजर साहब।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अगला गीत, दलेर मेहंदी और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं दिलीप सेन, समीर सेन और फिल्म का नाम है अर्जुन पंडित।

0: लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव।
1: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
0: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
3: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
2: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
5: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची है, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
6: और आ गया।
5: एक और आ गया।
7: कहाँ चल दिए बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
8: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
9: सुनिए
10: चित्रलोक कार्यक्रम की अगली पेशकश आपको सुनवाते हैं सोनू निगम, जसपिंदर नरूला और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं अनु मलिक, फिल्म का नाम है सोल्जर।

0: हम बोल रहे हैं विद्वर्धि के नागपुर केंद्र से एफएम बैंड 100.6 MHz पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: भारती है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन

0: का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों देखिए लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौते के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता

0: भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
2: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
0: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
3: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरुण।

0: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
1: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint and institutional.
0: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़क कर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसल कर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96 रुपए और 20 पैसे के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सास में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार हैं राजा मेहंदी अली खां, संगीतकार हैं मदन मोहन। फिल्म का नाम